आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: ठंडा ठंडा मौसम में राव रेडियो दोस्त दीपाली रोज की तरह हाजिर बाड़ी प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल लेके। दोस्तों, सवेरे सवेरे जब ले हम रउआ से ना मिली तब ले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा, त श्रोता लोग सवेर ता हो गइल बा। हमरा पता बा कि रउआ सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगावले बानी आज के घरेलू नुस्खा सुने खातिर। ता अब हम अपना कार्यक्रम के शुरू करी, उससे पहले रउआ सब की दीपाली की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चमकत त्वचा खातिर कुछ पौष्टिक पेय के बारे में। दोस्तों, अपना डाइट में शामिल करी जूस और पानी। पेय पदार्थ के हमनी के डाइट में एगो अलग ही भूमिका होला, फिर भले ही वो पेय पदार्थ पानी हो के या जूस। एके नियमित सेवन से हमनी के त्वचा में निखार आवे के साथ ही शरीर के भी भरपूर ऊर्जा मिलेला। फ्रूट जूस जहां आयरन और विटामिन से भरपूर होला, उन्हें वेजिटेबल जूस यानी सब्जी के जूस शरीर खातिर उपयोगी पोषक तत्व से युक्त होला। तरह के जूस के सेवन शरीर खातिर फायदेमंद होला। यदि रउआ बेहतर स्वास्थ्य पावे के इच्छा रखतनी

0: रउआ आज ही से अपना डाइट में जूस और पानी के उचित मात्रा के शामिल करे के होई। पानी पिए से हमनी के शरीर में पानी की कमी हो जाला, जेके प्रभाव शरीर के साथ ही त्वचा पर भी देखल जा सकेला। त्वचा के चमक के बरकरार रखे खातिर रुआ हर दिन भरपूर मात्रा में पानी के सेवन करे के चाही। पानी हमनी के त्वचा के कोशिका के भी प्रमुख तत्व होला। हमनी के त्वचा के बाहरी नमी के बरकरार रखे खातिर ओई पर मॉइस्चराइजर लगावे निसन, ओई प्रकार से त्वचा के अंदरूनी नमी व पोषण प्रदान करे खातिर हमनी के पानी के अधिक से अधिक सेवन करे के चाही। प्रतिशत फल या सब्जी से बनावल गयल जूस हमनी के शरीर में विटामिन के पूर्ति करे के साथ ही त्वचा के भी पोषण प्रदान करेला। स्वाद में लाजवाब होके के साथ ही जूस त्वचा के गहराई से सफाई कर विषैला पदार्थ के बाहर निकालेला। रिसर्च के अनुसार गहरा रंग के फल के जूस शरीर खातिर अधिक गुणकारी होला। अनार और ब्लूबेरी के जूस में हमनी के शरीर व त्वचा के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर मात्रा होला। चुकंदर के रस भी स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होला। ओलोंग टी के ब्लैक ड्रैगन टी के नाम से भी जानल जाला। चाय के ई विशेष प्रकार रोज चाइनीज रेस्टोरेंट में देखे के मिली। ई चाय में भरपूर मात्रा में पॉलीफिनोल्स होला, जौन की एक्जिमा और झुरी जैसन समस्या से त्वचा की सुरक्षा करेला। काला घेरा चेहरा पर झुरी जैसन बढ़त उम्र के लक्षण के कम करे व वजन के नियंत्रित करे में ओलोंग टी बड़ा ही कारगर होला। त्वचा के लालीपन व खुजली के खत्म करे के साथ ही एलोवेरा के जूस त्वचा संबंधी अन्य समस्या जैसे एक्जिमा सोरियोसिस में भी औषधि के तरह काम करेला। शुद्धि पाचन क्रिया के बढ़ावल ऑर्थराइटिस में कारगर व शारीरिक क्षमता के बढ़ावे के साथ ही एलोवेरा जूस के अनगिनत फायदा होला। रोजाना एक कप एलोवेरा जूस के सेवन हमने के स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी कई गो समस्या के निदान में कारगर है। उबालल हरा पत्ती से बनावल जाला। यह वजह है कि ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पॉलीफिनोल्स होला। जौन एगो आइसन केमिकल कंपाउंड है जौन के पिगमेंट एंटी एजिंग के तौर पर कार्य करके त्वचा में झुरी के कम कर कोई के फोटो प्रोटेक्शन देवेला। विशेषता ओई के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होला। बाल खातिर भी ग्रीन टी बेहतर है। यदि हम शुद्धता की बात करी तो चाय में शुद्धता के मामला में ग्रीन टी से बेहतर कौनो नहीं खे। ग्रीन टी के समान पत्ती से ही बनावल जाला। स्वीट स्पाइसी चॉकलेट आदि ब्लैक टी के अलग अलग फ्लेवर्स होला। विटामिन ई और सी के साथ ही ब्लैक टी में मौजूद स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण के कम करेला। ब्लैक टी ऐसा एस्ट्रिजेंट के तौर पर काम करेला जैसे चेहरा बेदाग व चमकदार बनेला। ब्लैक टी के बेहतर परिणाम खातिर एके बिना दूध के पी, काहे कि दूध एके एंटीऑक्सीडेंट गुण के घटावेला। कॉफी के सेवन ना करी, कॉफी में कैफीन व शुगर के अधिक मात्रा होखे के कारण इस त्वचा पर कील मुहासा के कारण बनेला। कॉफी में मौजूद टैनिन त्वचा के शुष्क बनावेला। अल्कोहल त्वचा के नमी के सोख त्वचा में ढीलापन लावेला। बहुत सारा कॉकटेल डाइग्यूर्स और मार्गरीटा में शुगर के बहुत अधिक मात्रा होला जौन त्वचा के नुकसान पहुंचावेला। मौजूद शुगर व अन्य सामग्री हमनी के स्वास्थ्य खातिर नुकसानदेह होला। सोडा के अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर के कम कर देवेला। शरीर व बेहतर स्वास्थ्य खातिर जहाँ तक संभव हो के हमनी के सोडा पिए से बचे के चाहिए। दोस्त लोग अब हम ले आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम से जाए के अनुमति। ता खुशी खुशी आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आरुआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। फिर होई हमार भेंट काल, तब तक खातिर नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: क्या है ना, जैसे हर आज कल कल हो जाता है, वैसे ही हर कल आज आज बन के खुद को दोहराता है। असल में घटनाएं वही होती हैं, बस उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनको देखने वाली नजरें बदल जाती हैं, पर मैं नहीं बदलता। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है अपलक। मैं आकाश हूं। महाभारत वो घटना जो आज भी मेरे दिल में छपी हुई है, जिसमें पूरी इंसानियत हार गई। चौसर का वो खेल दुर्योधन के जीतने के लिए ही खेला गया था। हारते हुए भी खेलते जाने के युधिष्ठिर के अपने तर्क हो सकते थे। अब लॉजिक अपनी जगह है, पर सबसे बड़ा सच ये है कि जब औरत दांव पर लगती है तो समाज टहने लगता है। ढहेगा ही, क्योंकि औरत ही है शायद जो उसको संभाल कर रखती है।
7: मुझे आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए देवव्रत भीष्म, क्योंकि आप पितामह हैं, कुरुवंश के संरक्षक हैं। ये संसार आपको धर्म के रक्षक के रूप में जानता है। क्या आपका धर्म ये कहता है कि एक स्त्री की लाज जा रही हो और आप देखते रहे? क्या आपके धर्म में किसी स्त्री की मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं? क्या स्त्री के मान सम्मान पर ऐसे निरंकुश दुराचारी कभी भी घात कर सकते हैं और आपका धर्म मौन रहेगा?
8: भैया आदेश दें, आपके अपमान के लिए मैं इस पांचाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आदेश दे बस।
9: मूर्ख भांजे दुशासन, इसे जीवित नहीं छोड़ेगा तो अपमान क्या मेरा करेगा? दुर्योधन, समझाओ आपने इस मूर्ख अनुज को।
10: अरे बोलने दो दुशासन को मामा, बोलने दो, जी भर के बोल लेने दो। इसे बहुत पुरानी आग लगी है इसके सीने में भी।
7: उत्तर दीजिए पितामह। स्वयं को कुरुवंश का उत्तराधिकारी मानने वाले दुर्योधन ने अपने नीच भाई को मुझे बालों से पकड़कर इस सभा में घसीटते हुए ले आने का आदेश दिया और आपने उसे रोकना तो दूर, सर उठाकर देखा तक नहीं। क्यों पितामह, ये कौन सा धर्म है आपका? और ये लोग मेरे पति हैं, जिन्होंने मुझे वचन दिया था कि मुझे महारानी बनाकर रखेंगे। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर, जुए में खुद को हार जाने के बाद तो आप दास हो चुके थे, फिर दुर्योधन के दास ने मुझे कैसे दांव पर लगा दिया?
9: जो स्वयं दास बन गया हो उसे कोई अधिकार नहीं कि वो कोई दांव खेल सके। ये दुर्भाग्य है भरत वंश का।
7: सुन रहे हैं ज्येष्ठ, आपने जो भूल की है इतिहास उसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या हुआ, अब सच सुनने की शक्ति नहीं है आप में? पर तब पांचाली को दांव पर लगाने की शक्ति थी।
11: मैं द्यूत खेलना नहीं चाहता था पांचाली, सच मानो मैं नहीं खेलना चाहता था द्यूत।
10: अच्छा, द्यूत नहीं खेलना चाहते थे तो पासे क्यों उठाए, दांव क्यों लगाया?
7: तुम्हारे कारण दुर्योधन, दो भाइयों के बीच के खेल में तुमने छल से शकुनी को शामिल किया।
12: प्रलाप बंद कर दासी, हमें धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाती है। एक दासी के मुख से ऐसी ज्ञान की बात है। इसे रोकिए भैया, वरना मैं इसका इसी क्षण वध कर दूंगा। रोकिए इसे।
10: शांत रहो दुशासन, शांत रहो। ये क्या करने जा रहे हो तुम? पांचाली बिचारी दासी है तो क्या हुआ? अरे भाई, दासी की पीड़ा भी सुनना राजधर्म है अनुज। तू बोल पांचाली, बोल, जितना चाहे उतना बोल, क्योंकि ना जाने फिर तू कभी बोल भी सकेगी या नहीं।
13: अब भी मैं चुप रहा हूं भैया, अब भी सहन करता रहूं। तुमने कितना निरीह बना दिया है मुझे कि मैं अपनी पत्नी का अपमान करने वाले के सामने बोल भी नहीं सकता। सहदेव जाओ, अग्नि लेकर आओ। जिस हाथ से बड़े भाई ने पंचाली को दांव पर हारा है, आज मैं उस हाथ को ही जला दूंगा।
14: भीम, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ ऐसा व्यवहार?
13: ज्येष्ठ भ्राता सुन सुनकर मेरी सहन शक्ति चुक गई है अर्जुन। ये तो इनका सौभाग्य है कि मैं इन्हें जीते जी चिता में नहीं झोंक रहा।
14: मैं भी छटपटा रहा हूँ भीम, मैं भी छटपटा रहा हूँ। मैं भी पांचाली को इस हाल में कभी नहीं देख सकता, पर आज अगर भाई भाई बिखर गए तो ना हम बचेंगे और ना ही हमारा धर्म।
13: भ्राता अर्जुन, सभा समाप्त हो चुकी है,
15: अब धर्म की बातें करके आप अपने बंधुओं को दुखी ना करें। मैं अभी तक शांत था, पर सभा के हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। भ्राता दुर्योधन और दुशासन ने जो किया है उसके लिए ईश्वर इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।
8: मेरे भाई होकर तुम
15: नहीं भ्राता दुर्योधन, भले ही आप मेरा सर काट डाले, पर मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। पांचाली का एक एक वचन सत्य है। इस सभा में कुरुवंश के महानायक से लेकर कुलगुरु तक बैठे हैं, किंतु किसी ने दुर्योधन के भय से अपना मुंह नहीं खोला, सभी मौन साधे रहे। महाबली भीम अभी इतना कुछ बोल रहे हैं, पर उस समय चुप क्यों थे? सभी अधर्म देखते रहे, और अब जब अधर्म का परिणाम सामने आ रहा है तो क्रोध में जल रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? आप भी चुप रहे पितामह, और आपने तो कुछ बोला ही नहीं महाराज, एक शब्द भी नहीं। सच बोलने का साहस किसी ने क्यों नहीं किया? पितामह, क्या आप बता सकते हैं कि अपने भाइयों से पूछे बिना ज्येष्ठ पांडव ने पांचाली को कैसे दाव पर लगा दिया? क्या पांचाली केवल उनकी पत्नी है? यदि वो दाव पर नहीं लगाई जा सकती तो ये खेल ही गलत था, और पांचाली अभी भी स्वतंत्र है।
16: विकर्ण, तर्कहीन बातें सुनाने से अच्छा है कि जो हो रहा है चुपचाप उसे देखते रहो। तुम ऐसे महान चिंतक या विचारक नहीं कि पूरी सभा तुम्हारी बातें सुने। जब इस सभा में पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तक ने मान लिया है कि द्रौपदी अब दासी है, तो वो दासी है। जिस पांचाली को तुम इतना सम्मान दे रहे हो वो एक साधारण दासी है, एक निर्लज दासी। इतने महान लोगों के बीच एक वस्त्र में खड़ी इस नारी में अब कौन सी लज्जा बची है? अगर तुमसे ये सब नहीं देखा जा रहा है तो सभा मंडप से चले जाओ, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम शायद सहन नहीं कर पाओगे। दुशासन, इन पांचों पांडव के वस्त्र उतार दो। दास हो गए हैं परंतु अभी भी राजसी वस्त्र पहनकर खड़े हैं, और इस दासी के वस्त्र भी उतार कर इसके स्वामी दुर्योधन के चरणों में फेंक दो।
15: निर्लज तुम हो अंगराज, निर्लज। इस सभा में बैठे सभी निर्लज हैं, इसलिए मैं इस सभा में एक क्षण नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूं।
8: जाओ विकर्ण, जाओ। अच्छा है तुम यहां से चले ही जाओ, यहां वैसे भी तुम्हारे जैसे मूर्ख की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ।
17: भ्राता दुर्योधन, पांडव अपने वस्त्र उतार चुके हैं, परंतु ये पांचाली अभी भी वैसे ही खड़ी है।
8: तो जो कार्य वो स्वयं नहीं करती उसे तुम क्यों नहीं पूरा कर देते दुशासन? क्यों नहीं अपने इन्हीं हाथों से उस पांचाली को निर्वस्त्र कर देते?
7: ठहरो दुशासन, वहीं रुक जाओ। रक्षा करे धर्मराज, इस वक्त भी यदि आप चुप बैठे तो पाप से ये धरती फट जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नीच। देख रहे हैं महाबली भी, आपके सामने मेरी ये दुर्दशा। किस दिन के लिए बचा कर रखी है आपने ये शक्ति? लज्जा नहीं आती आपको? आपके सामने आपकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है। अपना गांधी उठाओ पार्थ, मेरी लाज रखो। ईश्वर, क्या इस सभा में कोई पुरुष नहीं है जो एक स्त्री की लाज की रक्षा कर सके? क्या सभी पुरुष हीन हो गए?
8: पांचाली, आ मेरी जांघ पर बैठ। सोच क्या रही है? मैं वचन देता हूं, मैं रक्षा करूंगा तेरी, बच जाएगी तू।
15: दुर्योधन सुन ले, दुर्योधन इन शब्दों के लिए तू जीवन भर पछताएगा। मैं पांडु पुत्र भीम प्रण करता हूं
14: कि जो जंगा तूने पांचाली को दिखाई है, यदि मैं उसे चूर चूर ना कर दूं, तो मैं स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र नहीं।
13: और सुनो दुर्योधन, ये कर्ण तो तुम्हारा बहुत प्रिय है ना, जिसे अपने प्राणों से पढ़कर भी चाहते हो तुम, तो याद रखना, मैं पांडु पुत्र अर्जुन अपने गांडीव को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका वध करूंगा मैं।
16: दुशासन, किसी के भय में मत आओ, निर्वस्त्र कर दो इस कलंकिनी को, मैं देखता हूं कौन आता है इसे बचाने।
14: हाँ दुशासन, आगे।
12: मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भ्राता।
7: मेरी लाज रखिए, मेरी लाज रखिए यदुनंदन, आइए आकर मुझे बचा लीजिए मेरे नंदलाल, मेरी लाज रखिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मधुसूदन, रक्षा कीजिए गोविंद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।

0: कृष्ण।
1: ये अचानक सूर्य का सा प्रकाश कहाँ से आया?
0: हरे कृष्ण,
1: कहीं ये सचमुच उस झलिया कृष्ण की ही तो कोई माया नहीं है?
2: इसके वस्त्र का अंत नहीं होता भ्राता, जितना खींचता हूँ बढ़ता जाता है, वस्त्र का ढेर लग गया है। ईश्वर, कैसी माया है ये?
0: धन्य हो केशव, तुम धन्य हो इस संसार में। इस संसार में यदि मेरा कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी पांचाली का प्रणाम है तुम्हें।
3: मैं पांचाल की अस्मिता द्रौपदी धरती आकाश और पूरे ब्रह्मांड को और उन सभी को जो मेरी विवशता को मूक बने देखते रहे साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने केश दुशासन के रक्त से धो नहीं लेती मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी।
4: मैं सत्यव्रत भीष्म सभी को आदेश देता हूं कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, अन्यथा अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाएं। मेरे हर एक शब्द को ये सभा आदेश समझे और क्रूरता का यह खेल अभी इसी क्षण बंद हो, ये भीष्म का आदेश है।
1: पर पितामह।
4: दुर्योधन, तुम्हें जो कहना था कह चुके, तुम्हें जो करना था कर चुके, अब जो कहूंगा मैं कहूंगा, अब जो करूंगा मैं करूंगा, शांतनु पुत्र भीष्म करेगा।
5: भीष्म गर्जे, तरुण की आवाज के साथ सारी सभा थम गई। पिन ड्रॉप साइलेंस, समझते ना पिंडी गिरी तो ठन ठन। पर सवाल यह है कि जब उन्हें गरजना चाहिए था तब वो क्यों नहीं गरजे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब भैया हम उनसे कौन से अलग हैं? हमारे कैंडल मार्च भी तो सब कुछ हो जाने के बाद ही निकलते हैं। हम चले जाते हैं और मोमबत्ती पिघलती रह जाती है। क्यों? चलिए सोचिए,

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88869।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल।

0: हाल चाल विस्तार से। ठंड के मौसम में देर रात रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की दिशा में गोपालगंज पुलिस ने एक बेहतर पहल की शुरुआत की है। गोपालगंज पुलिस की तरफ से अब गोपालगंज बस स्टैंड, गोपालगंज रेलवे स्टेशन, थावे रेलवे स्टेशन और मीरगंज रेलवे स्टेशन से रात्रि बस सेवा निःशुल्क रूप से आज से शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज के मौनिया चौक से हरी झंडी कर बस को रवाना किया। यह बस रात्रि में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बस को हरी झंडी दिखाने के बाद गोपालगंज वासियों से अपील करते हुए कहा,
1: क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग सितम्बर माह के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और अक्टूबर से हल्की हल्की अंधेरा पहले होने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है, तो ऐसे समय जो भी लोग रात में यात्रा करना चाहते हैं उनको थोड़ा असुविधा होती है कि बस स्टैंड पर आए, रेलवे स्टेशन पर आए और अपने घर तक जाएं, तो ऐसे समय रेलवे पुलिस भी अलर्ट रहती है। जहर खुरानी जैसे मामले भी होते हैं कि नशा खिला करके कुछ सामान ले लिया, क्योंकि लोग आते हैं स्टेशन पर और उन्हें अपने घर जाना होता है। दिन में तो उतनी समस्या नहीं होती है, तो रात्रि के लिए पुलिस की जो लाइन की बस उपलब्ध है उस बस में पेट्रोलिंग पार्टी को बिठाल करके पुलिस की मौजूदगी में एक बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है आज से ही। और ये बस जो है गोपालगंज बस स्टैंड से होते हुए थावे पुलिस, गोपालगंज रेलवे स्टेशन, फिर थावे रेलवे स्टेशन और मीरगंज रेलवे स्टेशन, पूरी रात्रि ये संचालित रहेगी। ट्रेन की जो टाइम है और बसों का जो समय है आवागमन का, उसको देख लिया गया है, उसी अनुसार इसकी प्लानिंग की गई है, ताकि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, बच्चियां, स्टूडेंट, कोई सिंगल लड़कियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, जो भी रात्रि के समय में बस स्टैंड के थ्रू या स्टेशन के थ्रू अपनी यात्रा को करना चाह रहे हैं और अंधेरा है और ठंड का मौसम धीरे धीरे आने वाला है, त्योहारों का भी मौसम है, तो उन्हें ये खतरा रहता है खुद की सुरक्षा को लेकर के, तो वो गोपालगंज पुलिस की जो पुलिस लाइन की बस है उस व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। ये यात्रियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें पहले से मौजूद रहेंगे पुलिस के अधिकारी भी और पुलिस कर्मी भी, जो इनकी यात्रा को सुगम बनाएंगे। लेकिन इसका रूट है पूरा, एक एक व्यक्ति के हिसाब से तो ये नहीं चल पाएगी, इसलिए रूट इसका बनाया गया है कि गोपालगंज बस स्टैंड से चालू होकर के गोपालगंज रेलवे स्टेशन, फिर थावे रेलवे स्टेशन और मीरगंज रेलवे स्टेशन, आस पास की ये चार मुख्य जो जगह हैं उसको चिन्हित करके उसको कवर करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। सभी लोगों की जानकारी में ये बात रहेगी तो अधिक से अधिक यात्री इसका उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू।
0: आगामी दुर्गा पूजा और अन्य पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ भाड़ और व्यावसायिक गतिविधियों के मद्देनजर गोपालगंज पुलिस ने आम जन की सुरक्षा, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब विशेष गश्ती और चेकिंग अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत 5 गश्ती दल का गठन हुआ है और उन्हें निर्धारित रूट के अनुसार लगातार भ्रमण, निगरानी और चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। इस गश्ती दल में अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में पुलिसकर्मी लगातार भ्रमण करते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों, स्वर्ण आभूषण की दुकानों, बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों तथा अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास विशेष सतत निगरानी बरतेंगे। साथ ही संबंधित दुकानदार, प्रतिष्ठान संचालकों से संपर्क स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी लेते रहेंगे। नवोदय विद्यालय समिति और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 और 11 में पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की तिथि 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है, यानी आवेदन शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक ही आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। नवोदय विद्यालय समिति के संयुक्त आयुक्त नयन किशोर पटेल द्वारा जिला कार्यालय को भेजे गए पत्र में परीक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया, ताकि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के भी पात्र विद्यार्थी समय पर आवेदन कर सके। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय की कार्यप्रणाली, कर्मियों की उपस्थिति और आम जन को दी जा रही सेवाओं की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए कर्मियों के एक दिन के वेतन कटौती का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फील्ड में कार्यरत कर्मियों को छोड़कर सभी पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय अवधि में नियमित रूप से उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। डीएम स्वयं काउंटर पर पहुंचे और अस्थायी

0: वाहन पंजीकरण के लिए आए नागरिक की समस्या का तत्काल समाधान कराया। उन्होंने निर्देश दिया कि आमजन को देय सभी सेवाओं का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करें। बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिला स्थित पंचायत संसाधन केंद्र में पंचायत समिति की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और कार्यों की समयबद्ध पूर्णता तथा योजनाओं के नियमानुसार समापन और अभिलेखीय बंदोबस्ती को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों कार्यपालक सहायक ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायत समिति के माध्यम से संचालित योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारना तथा पूर्ण योजनाओं की प्रक्रिया के अनुरूप समापन एवं योजना बंद करने का भी कार्य सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। कटिहार थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी छांगुर कुमार उर्फ छांगुर खटिक है। यह विद्या साहू का पुत्र है और कोइसा खुर्द का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे आज गिरफ्तार कर लिया। इस पर पहले से आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की भी मासिक समीक्षा बैठक की थी। इसमें जिले के अस्पतालों में सर्जरी, मरीजों के रेफरल, आशा चयन सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा हुई। इस दौरान लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने और अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर किए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए जवाबदेही तय करने की बात कही। प्रगति रिपोर्ट में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सर्जरी की स्थिति की समीक्षा पर अगस्त महीने में 110 सर्जरी दर्ज की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पतालों की सुविधा और सर्जरी की भी समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि इसमें जिन अस्पतालों में सर्जरी की स्थिति कम हुई है और जहां रेफर सबसे ज्यादा हुए हैं, ऐसे अस्पतालों को उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अनुशासनहीनता के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए रंजीत कुमार यादव, राजस्व कर्मचारी ग्राम पंचायत जमसड़ अंचल कार्यालय उचका गांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत जमसड़ में आयोजित सहयोग शिविर में निरीक्षण के दौरान रंजीत कुमार यादव द्वारा वरीय पदाधिकारी के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया था। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि उनके द्वारा आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग करते हुए बहस और धमकी दी गई थी, जिससे सरकारी कार्य के निष्पादन और सहयोग शिविर में पर्यवेक्षण में व्यवधान तथा असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी में जांच पड़ताल करते हुए इन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद रंजीत कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एटीएम बदल कर पैसे निकालने वाले एक आरोपी को सूचना पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने एटीएम के पास छापेमारी की, आरोपी को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी से पूछताछ में पता चला कि यह चंदन कुमार मुजफ्फरपुर जिला के पानापुर ओपी क्षेत्र के डुमरिया गांव के उमेश सहनी का पुत्र है। इसका एक साथी भी फरार हो गया है। पूछताछ करने पर पुलिस ने उसकी भी पहचान की, वह रवि कुमार बताया जा रहा है। वह भी मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला है। इन आरोपियों के पास से डेबिट कार्ड और मोबाइल इत्यादि पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि चंदन कुमार को गिरफ्तार कर अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने जनता से अपील किया है कि एटीएम का उपयोग करते समय किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड, पिन अथवा अन्य बैंकिंग संबंधित जानकारी साझा न करें। संदिग्ध स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना दें। बताया जा रहा है कि यह आरोपी मोहम्मदपुर में ही एक एटीएम में जाकर एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को बदल कर पैसे निकालने की फिराक में था, तभी इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हथुआ थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मी से पिस्टल का भय दिखाकर लूट की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूटी गई राशि में से 22,800 रुपए नगद बरामद भी किए गए हैं। 4 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में हथुआ के SDPO से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया
1: 15

0: कटिया पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त तो भूटेली शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह रामजी शर्मा का पुत्र है और मानिक छापर थाना कटिया का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही कटिया पुलिस ने एक और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी अरमान अली को भी गिरफ्तार कर लिया। यह कटिया के लोहरी गांव के हैदर अली का पुत्र है। इस पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने के प्रयास करने का मामला दर्ज है और इसी मामले में आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया। जदयू पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर गोपालगंज में पार्टी का विस्तार किया है। इसमें नए पदाधिकारियों की सूची जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने जारी की। इस दौरान चौथी बार आनंद बिहारी श्रीवास्तव को गोपालगंज जिला सचिव बनाया गया है, जिससे उन्होंने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। पार्टी ने उन पर विश्वास किया है, इसके लिए पार्टी नेतृत्व को उन्होंने धन्यवाद दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। यात्रियों की सुरक्षा में निःशुल्क पुलिस बस का संचालन हुआ शुरू। त्योहारों में विशेष गश्ती और चेकिंग का पुलिस अधीक्षक ने दिया निर्देश। परिवहन कार्यालय में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। जेएनवी में दाखिला को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने को लेकर समिति सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।

0: देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए ये है हमारी पुकार।
1: जब हर गली हो स्वच्छ, हर द्वार पहुँचे नल से जल, तभी गांव हमारा बने स्वच्छ और सुजल।
0: सच कहती हो, स्वच्छता और साफ पानी से ही होगी सबकी भलाई।
1: तन रहेगा स्वच्छ और निर्मल, तभी आएंगे मन में विचार उज्जवल।
0: आप चिंता ना करें, इन्हीं सब बातों के लिए हम लेकर आ गए हैं यह कार्यक्रम।
1: बताओ तो हमारी श्रोताओं को इसका नाम।
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।
1: हर एपिसोड में हम दोनों होंगे आपके साथ, मैं स्वच्छिका
0: और मैं सुजल कुमार। आप सबको हम दोनों का नमस्कार।
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। क्या होगा इस कार्यक्रम में, ये भी तो बता दो सुजल कुमार।
0: स्वच्छ सुजल गांव कैसा होता है क्या आप जानते हैं दोस्तों? स्वच्छ सुजल गांव का मतलब है एक ऐसा गांव जहां ना कोई खुले में शौच करता हो और ना ही ऐसा होते हुए दिखता हो। साथ ही साथ गांव के हर घर, पंचायत भवन या सरकारी भवनों में नल से जल आ रहा हो और शौचालय की उपलब्धता हो। उस गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो और जो प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखे, मतलब एक ऐसा गांव जो हर घर जल प्रमाणित हो और ODF प्लस मॉडल गांव सत्यापित हो।
1: जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की और 2019 में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वहीं जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जिसका मकसद था हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
0: आपको तो पता ही है, हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिस तरह होता रहता है, हर दिन मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातों का होता है प्रसारण, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी हम लेकर आएंगे स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ।
1: तो रेडियो को सुनने वाले सभी दीदी भैया, बाबा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हैं, सब जुड़ जाएं हमारे साथ और स्वच्छता के साथ। और आपको मेरे यानी स्वच्छिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे स्वच्छता यानी साफ सफाई और निर्मलता का महत्व।
0: और हर घर नल योजना साथ ही स्वच्छ जल पहुंचा रहा है हर घर हर द्वार।
1: आप सबकी कड़ी मेहनत से गांव को स्वच्छ बनाने में सफलता मिली है। आप लोग ग्रामवासी हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं या स्कूल के बच्चे और गुरुजी से लेकर हमारे गांव के सारे कर्ता धरता हो, आप सबके साझा प्रयास से ही सफलता मिली है अपने अपने गांव को स्वच्छ करने की।
0: लेकिन यह तो अभी स्वच्छ सुजल गांव के सपनों की शुरुआत है, अभी हमें आराम नहीं करना है और भी बहुत कुछ करना है। शुरुआती कामयाबी की खुशियों से प्रेरणा लेकर दोगुने जोश से जुटना है और देश के 100% गांवों को स्वच्छ सुजल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है।
1: स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त गांव के बनने के बाद जब देश के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति आ चुकी है और नल से जल कार्यक्रम ने तो देश की लाखों महिलाओं की सर पर पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त कर दिया है। ODF प्लस बनने के साथ गांव में सूखा कचरा, गीला कचरा का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही आपका गांव दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए। जब इतना अच्छा चल ही रहा है तो फिर इस कार्यक्रम की जरूरत की, ऐसा ही ना सोच रहे हैं आप? तो इस बारे में चलिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों के संदेश सुनवाते हैं।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।
3: नमस्कार, मैं CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। आज मैं आपसे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है हर घर जल हर गांव स्वच्छ। इस सपनों को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से गांव-गांव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। महिला है अब पानी के लिए दूर नहीं जाती, बच्चे स्कूलों में साफ पानी पीते हैं और गांव में भी बीमारियां कम हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनाया और अब हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ बने। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, यह जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव में जल स्रोत टिकाऊ हो, हर घर में पानी की गुणवत्ता बनी रहे, हर घर में शौचालय का सही उपयोग हो। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और सुजल गांव के इस संकल्प को और मजबूत करें। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़े, रेडियो कार्यक्रम सुने, अपनी कहानियां साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। स्वच्छ सुजल गांव प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 140 करोड़ देशवासियों द्वारा एक साथ बढ़ाया गया हर एक कदम देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो जानकारी प्रदान की, उनके अनुसार स्वच्छता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस देश का हर गांव और हर घर सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खुले में ना शौच करे, सूखा कचरा और गीला कचरा का सही निष्पादन करे, गोबर का सही इस्तेमाल करे, इसके साथ नल से जल का सदुपयोग करे।
0: सही कहा, पूरे ग्रामवासी जब तक पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बने संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक हमारी जीत अधूरी है। अगर साथ रहें, मिलकर काम करें तो ऐसा संभव है। आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ से परे स्वच्छ और सुजल गांव अभियान की टूर हाथ में धरे जीतेंगे हम।

0: अरे रे, ये कौन है?
1: इस तरह से हंस रही है जैसे हमारी बातों से उसको कुछ परेशानी हो रही हो।
0: ये तो बड़ी भयानक हंसी है, पता नहीं कौन है। चलो चलकर पूछते हैं।
1: कौन है आप?
2: मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रदूषिका, तुम मुझे पॉल्यूशनिका भी कह सकते हो।
0: प्रदूषिका, पॉल्यूशनिका,
1: यह कैसा नाम हुआ? ऐसा तो कोई नाम नहीं होता है।
0: बिल्कुल, कहीं कोई ऐसा नाम रखता है।
1: वैसे कहाँ से आई हो तुम? रहती कहाँ हो तुम? तुम करती क्या हो? जरा अपने बारे में बताओ तो, क्या काम है तुम्हारा?
2: मैं कौन हूँ ये समझना बड़ा कठिन है भैया। कहाँ से आई हूँ ये तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ। घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में।
1: बाप रे बाप, लगता है तुम कोई मायावी हो। इंसान तो इस तरह नहीं रहते।
2: मैं हूँ पॉल्यूशनिका यानी प्रदूषिका। ना मैं माया, ना मायावी, ना कोई छाया, फिर भी हर जगह मेरा साया। मैं रहती हूँ कूड़े के ढेर में, गंदी नालियों में, धुओं के बादलों में और गंदे पानी की बूंदों में। मैं बिगाड़ देती हूँ हवा, मिट्टी, पानी। पानी बीमारियाँ फैलाना है मेरा काम। हाँ, मैं हूँ पॉल्यूशनिका यानी प्रदूषिका।
0: प्रदूषण फैलाना? अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ।
1: हम लोग यहाँ स्वच्छ वातावरण, साफ जल की बात करते हैं, प्रदूषण की नहीं। हमें प्रदूषण दूर करना है।
2: अरे मूर्ख, प्रदूषण इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि उसे हटाना तो दूर, उसे हटाने की बात करना बेवकूफी है।
1: चुप रहो, हम स्वच्छता अभियान के दूत है।
0: जहाँ जमी है गंदगी प्रदूषण, हम उन सबको निपटाने वाले हैं।
1: कोई अड़चन हमें रोक नहीं पाएगी।
0: जब हमने यह निश्चय कर लिया है तो तुम एक क्या हजार प्रदूषिका भी आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
2: अच्छा अच्छा, इतना घमंड? अरे बड़े प्रदूषण की बात तो छोड़ो, तुम तो एक पिद्दी से गांव की गंदगी से छुटकारा नहीं पा सकते।
1: लगता है तुम्हें कोई भारी कंफ्यूजन है।
0: मोहतरमा, हमारे गांव में सभी लोग साफ सफाई रखने की होड़ में लगे हुए हैं, समझी?
1: गंदगी के नुकसान और स्वच्छता के फायदे लोगों ने जान लिए हैं।
0: एक दो नहीं, सैकड़ों गांव में स्वच्छता का झंडा लहरा रहा है। स्वच्छ गांव का झंडा लहरा रहा है। ओडीएफ विलेज घोषित हो चुके हैं सैकड़ों गांव।
2: बहती नालियां, चप्पे चप्पे पर फैला कचरा, सुबह शाम खुले में शौच जाते लोग, पान गुटखा खाकर यत्र-तत्र सर्वत्र थूकते लोगों की बस्ती से गंदगी कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे गंदगी का साम्राज्य, बताओ?
0: कान खोलकर सुन लो, देश में हर गांव हो रहा है स्वच्छ सुजल गांव। यही नहीं, जिस भी गांव में ऐसा हो रहा है वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं।
1: स्वच्छ और सुजल का संदेश गांव-गांव में फैल रहा है। देखना, बहुत जल्दी हम प्रदूषण के नामो निशान को मिटा देंगे।
0: हमको स्वच्छ होना है, ये बात अच्छी तरह मान लो।
1: कहीं कहीं गंदगी बहुत फैल गई है, यह बात हम जानते हैं, लेकिन हमको स्वच्छ होना है, यह बात हम लोगों ने गांठ बांध ली है।
0: और इसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तुम आजमा सकती हो अपने हथकंडे।
1: प्रदूषिका, तुम्हें जो षड्यंत्र रचना है रच लो, हमारे गांव के लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले।
2: यह तो समय ही बताएगा कि कितनी लंबी दौड़ है तुम लोगों की। अरे मेरे वार से कोई नहीं बचा है आज तक, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो।
0: बहुत ठोकरे खा चुके हैं, अब नहीं झुकेंगे हम।
1: मुश्किलें कितनी भी आए, अब ना रुकेंगे हम।
2: ख्वाब है तुम्हारा कि हो जाओगे स्वच्छ और मिलेगा तुमको स्वच्छ पानी। अरे मर जाओगे कचरा और प्रदूषण से, छीन लूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी।
1: अब चुप कर, अगर कहीं कहीं पर हम नहीं सफल हो पाए एक बार, लेकिन तुमको हराना ही है इस बार।
0: क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, बचाना ही है हमको अपने गांव और अपने घर द्वार।
1: इस बार हमारा संकल्प बिल्कुल अटल है, हर गांव बनेगा देश का सुजल स्वच्छ गांव।
0: और सुनेगी तू हर गांव की कहानी।
2: देखूंगी मैं, जरूर देखेगी संकल्प। बड़ा मजा आएगा जब मैं और मेरे साथी मेरे कहे पर अपना काम शुरू करेंगे, फैलाएंगे गंदगी, कचरा और मचाएंगे बीमारियों का अत्याचार। देखूंगी मैं, जरूर देखूंगी जब मचेगा हाहाकार। जा रही हूँ मैं, पर याद रखना, आऊंगी मैं जरूर।
0: उफ, गई है आफत प्रदूषिका, सुजल भी कहीं चला गया। चलिए हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण आपको सुनवाते हैं।
3: ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ।
4: नमस्कार, मुझे इस विशेष पहल के माध्यम से आप सभी से जुड़कर और एक ऐसा संदेश साझा करके खुशी हो रही है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय सामुदायिक रेडियो संघ के सहयोग से एक अनूठी पहल स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी शुरू की है। इस अभियान के माध्यम से देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्वच्छता और स्वास्थ्य वॉश का संदेश सीधे हमारे गांवों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे लोगों की आवाज और भाषाओं में। ये स्टेशन 10 विशेष रूप से डिजाइन किए गए एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं, जो स्वच्छ सुजल गांव के वास्तविक अर्थ को उजागर करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की भावना को एक साथ लाते हैं। प्रत्येक एपिसोड में स्थानीय लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, विशेषज्ञ साक्षात्कार और सामुदायिक कहानियों का मिश्रण होता है, ताकि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, मासिक धर्म, स्वच्छता और हाथ धोने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस पहल को विशेष बनाने वाला इसका समुदाय प्रथम दृष्टिकोण है। लोगों की भाषा में बोलकर यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर नागरिक स्वच्छ आदतों को समझ सके और अपना सके। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षित जल तक पहुंच सुजल और स्वस्थ भारत की नींव है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन दोनों को मजबूत करती है और हमें ऐसे गांवों की ओर ले जाती है जो न केवल स्वच्छ हो बल्कि जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर भी हो। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रोजाना हाथ धोने वाले स्कूली बच्चों से लेकर जल और स्वच्छता पर चर्चाओं का नेतृत्व करने वाली महिला समूहों तक और समुदाय का मार्गदर्शन करने वाले हमारे सरपंचों तक कि एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाएं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी को एक सच्चा जन आंदोलन बनाएं, जहां रेडियो की हर आवाज सभी के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
3: धन्यवाद गुरु। जय हिंद, जय भारत।

0: ओ सुचल, कहाँ खो गए? चली गई प्रदूषिका, अब तो जागो।
1: सो नहीं रहा हूँ मैं, कुछ सोच विचार कर रहा हूँ।
2: किस सोच में हो भाई?
1: यह प्रदूषिका के बारे में, कौन थी, यहाँ क्यों आई थी?
2: कोई भी रही हो, पर एक बात है जरूरी कि हम ऐसे अभियान से जुड़े हैं जहाँ थोड़ा सा भी ध्यान चूकना माने असफलता।
1: सही कह रहे हो, बहुत संवेदनशील होता है, बरगलाने वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर।
2: पर प्रदूषिका ने आकर एक बात तो समझा दी हमें।
1: क्या?
2: खतरे का अलार्म बजा कर गई है कि काम अभी अधूरा है, या यूं कहें बहुत सारा काम करना बाकी है।
1: और बस यही बात हमारे हर श्रोता साथी को, हर ग्रामवासी को समझना है कि स्वच्छता और सुजलता का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन यानी बंधन है। सोचिए, क्या हो, बाथरूम बना हो पर पानी ना आ रहा हो, सोचिए नल हो पर जल ना आ रहा हो, और ये भी सोचिए कि हाथ धोना जरूरी है पर पानी उपलब्ध ना हो। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए आपस में एक साथ मिलकर चलना जरूरी है, जो आप सबके बिना असंभव है।
2: सही कहते हो, यह संकेत है कि अच्छे कार्य के मार्ग में ढेरों बाधाएं आती हैं, पर विजयी वही होता है जो इनसे डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता है।
1: और साथियों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश के हर गाँव को स्वच्छ सुजल बनाना।
2: प्रदूषिका के आने से ये ना समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ उपलब्धियाँ मिल चुकी हैं।
1: चलिए कुछ गांव वालों के बातचीत को सुनते हैं, वह क्या कहते हैं कि उनका गांव कितना स्वच्छ है और किस किस के घर में नल लग चुका है, गांव की महिलाओं को कोसों दूर से चलकर पानी लाने की कितनी जरूरत पड़ रही है।
3: नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। 2020 तक मेरे गांव की जो हालत थी, खासकर पीने के पानी की अगर हम बात करें, तो किसी भी चप्पा हैंडपाइप का जो पानी था वो पीने के लायक नहीं था। इस बीच सरकार की एक योजना ये आई, जल नल योजना, और इस योजना के बाद मेरे गांव के लगभग 350 परिवारों में आज शुद्ध पेयजल मिल रहा है। किसी भी महिला को, खास करके उस दौर में जब वो प्रेग्नेंट महिलाएं होती थी, चप्पा कल चलाना पड़ता था, अब उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलती है, चप्पा कल नहीं चलाना पड़ता है। बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, नल खोल के और शुद्ध पेयजल का जो है वो लाभ उठाते हैं। और मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी सराहना करता हूँ इस योजना के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मुमकिन नहीं थी वो भी अब मुमकिन हो गई हैं, और दूर दूर तक गाँव में भी अब हर महिला जो है वो सक्षम है, बच्चा बच्चा अब शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करता है।

सबसे पहले तो रेडियो रिमझिम के बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब हमने के गांव में आने और लोग से राय जाने की कोशिश करतने। हम बता दें हमार घर फतहा जौन गोपालगंज जिला में पड़ेला और हमरा गांव में लगभग हर घर में नल जल योजना के लोग लाभ उठा रहल बा। ओकर एगो टाइमिंग बा, सुबह 2-3 घंटा, शाम में 2-3 घंटा पानी आवेला, स्वच्छ पानी बा, अच्छा बा, जैसे पूरा गांव के लोग फायदा उठावता। बाकी हमनी के गांव में कोनो भी महिला या जेंट्स लोग दूर से पानी ना लियावेला, दूर जाके पानी ना लियावेला। हाँ, कुछ लोग ऐसा बा जे बिजलेरी के पानी पिएला और बाकी सारा लोग तो नल जल योजना के पानी पिएला। तो एक खातिर रउलोग हमनी के गांव में आने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा और हमनी के गांव काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ बा, सुरक्षित बा हर तरीके से। और स्वच्छ और सुरक्षित रखे में रेडियो रिमझिम के भी काफ़ी बड़ा योगदान बा। ऐसे कि गांव के मतलब आधा से ज़्यादा लोग रेडियो सुनेला और अगर औरत लोग के बात कही जाए तो महिला लोग मतलब बहुत ज़्यादा रेडियो रिमझिम के पसंद करेला, हर प्रोग्राम के सुनेला। तो समय समय पर वह लोग हमनी के जानकारी देत रहे निशान कि कैसे साफ सफाई बना के रखे के बा, बाकी हर तरीका के जागरूकता भरा प्रोग्राम हमनी के मनोरंजन खातिर चलावल जाला। एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा।

नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूं और हमारे ज़िले में नल जल योजना लागू है। हमारे गांव में भी नल जल योजना लागू है और लमसम सभी घरों में नल जल का लाभ दिया जा रहा है। हमें अब पानी के लिए कम से कम मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। पहले लोग चापाकल का उपयोग ज़्यादा करते थे और जब कभी पानी का लेवल नीचे चला जाया करता था तो हमें वैसे पानी जो ज़्यादा स्वच्छ नहीं थे या थोड़े गंदे सोर्स से आते थे उनसे ही अपना काम चलाना पड़ता था, जिससे कि विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता था। और स्वच्छता की बात करें तो अब हमारा ज़िला और गांव पहले से बहुत स्वच्छ है और साफ़ सुथरा भी है। थोड़ा बहुत कूड़ा करकट जब कभी जमा हो जाता है तो हम सारे गाँव वासी मिलकर सामूहिक सफाई भी कर लेते हैं और नल जल योजना से काफ़ी लाभ हुआ है हमें।

0: वाह, हमारे अंचल में आसपास के गांव में इतनी स्वच्छता और हर घर में नल पहुंच चुका है, यह जानकर तो प्रदूषिका बेहद दुखी हो रही होगी।
1: कहते हैं पानी बचाओ तो आने वाली 7 पुश्तें बचेंगी, यही तो कह रहे थे हमारे गांव वाले।
0: गांव वालों से बात करने के बाद हमको ये तो पता चल ही गया कि हमें पूर्ण सफलता बहुत जल्द मिल जाने वाली है।
1: हम इसी तरह हर हफ्ते आएंगे आपके पास कुछ और बातें बताने के लिए, कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए।
0: और स्वच्छता के लिए वो लोग हर अच्छे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। साथ में आप लोगों का भी योगदान, सहयोग और भागीदारी रहनी है इस कार्यक्रम में।
1: कैसे, यह भी तो बताओ।
0: हमारे ज्ञान और ईमान वाले सेगमेंट के बारे में बताने के पहले हम आपको जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का संदेश सुनवाते हैं।

नमस्कार, मैं अशोक कुमार मीना, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय से बोल रहा हूँ। आपसे इस कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के जरिए जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं स्वच्छ सुजल गांव, तो इसका मतलब है ऐसा गांव जहां हर घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचता हो, हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की सुविधा हो और लोग सम्मान और सुख से जीवन जीते हों। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जरिए ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, जब स्वच्छता और सुरक्षित पानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। यही है जनभागीदारी का असली अर्थ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सुने, इन कहानियों से सीखें और छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकते हैं। आइए मिलकर अपने गांवों को सचमुच स्वच्छ और सुजल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।

0: संदेश के बाद हमारे ज्ञान और ईमान वाले सेगमेंट के बारे में बताने का वादा पूरा करते हैं। हम हर बार आपको कुछ प्रश्न देंगे, कभी क्विज, कभी कोई प्रतियोगिता, और अगले अंक में सही जवाब देने वाले के नाम भी प्रसारित किए जाएंगे और पूरी सीरीज के बाद इनाम भी दिए जाएंगे और हमारे रेडियो के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: खेल के नियम बिल्कुल आसान है। हम आप से पूछेंगे कुछ सवाल, आपको देने होंगे इन सवालों के सही जवाब। आप भेजिए अपने जवाब को हमारे रेडियो स्टेशन के नंबर पर SMS या WhatsApp के जरिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98527-88291।
0: तो तैयार है, सवाल सुनिए ध्यान से। तो आज के प्रश्न में आपको लिखकर भेजना है सुजल स्वच्छ सुजल गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन, और आपके भेजे हुए स्लोगनों में से 3 सबसे अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत किया जाएगा।
1: तो तैयार हो जाइए और भेजिए जल्दी से हमको अपने अपनी क्रिएटिव से तैयार किया हुआ सिर्फ 1 स्लोगन।
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज आपने स्वच्छ सुजल गांव की कहानी एक परिचय सुना।
1: कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर हम जल्द ही आएंगे और आपको बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के बारे में।
0: आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी सुनने को और जानकारी देने को तैयार रहिए।
1: तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।
0: तो आज के कार्यक्रम में आपको मजा आया, आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी यह कार्यक्रम और चलता रहना चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी भी तो कोई चीज है।
1: चलते चलते हम यही कहेंगे कि रखिए ध्यान सभी बुजुर्ग बच्चों और जवान,
0: तभी रहेगा जीवित हमारा मान जब बहेगी स्वच्छता और पवित्रता की बयार।
1: समझ लो स्वच्छ सुजल गांव योजना का यह गुणगान,
0: रहेगा अपना गांव निर्मल और स्वच्छ,
1: खिलेगी फिर तरक्की की मुस्कान।
0: समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला ना।
1: विषय ही ऐसा है,
0: बट नो प्रॉब्लम, भले ही हमारे रुकने के ढेरों अरमान।
1: समय की पाबंदी का करना होगा सम्मान। इस हफ्ते की बात करते हैं यही खत्म, वादा करके
0: कि तब तक याद रखिएगा हमें, हम फिर आएंगे अगले हफ्ते। मैं स्वक्षिका
1: और मैं सुजल कुमार करते हैं आपको नमस्कार।
0: लगाते हुए ये नारा एक बार, बनेगी भारत की एक और पहचान।
1: यदि स्वच्छ हुआ वातावरण, हर घर में हुआ जल, तो पूरा होगा स्वच्छ सुजल गांव अभियान।
0: और चलते चलते आज का संदेश, स्वच्छ गलियां, नल जल घर घर, कचरा न फेंको, रखो गांव का मन भर, जल है जीवन इसे बचाओ हर बार, स्वच्छ सुजल गांव, आओ बनाए हम सब यार।
1: नमस्कार। चलो, चलो।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-30992 या 97765-65750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आएं कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
6: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।

0: प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है और निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी

0: समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों की फायदों के बारे में बताया है।
3: The government is supporting the sector through technology transfers.
4: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
2: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
4: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
0: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे। This is a Rishi Rich Refix.

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: Hey Christine, you're not wearing this dress. Vicky, where are you?
8: There's an important call.
7: Are you crazy? I can't talk right now.
8: It's editor of Style Magazine.
9: Hi Vaishali, I'm from Style Magazine.
7: Hey. Actually, my show is just about to start. So, can you call me by 10:30?
9: Wait, just a minute.
7: Bye.
9: I just need a small interview.
7: Yeah.
9: I won't take much time.

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान की शुरुआत की। पंचायत स्तर पर सभी छोटे विकास कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ से लगभग 270 करोड़ रुपए की फसल क्षति का प्रारंभिक आकलन। 1,76,000 हेक्टेयर में लगी फसल हुई प्रभावित। और एनडीए के विभिन्न घटक दलों ने राज्य के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन देने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला पटना सहित देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह पटना के पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत स्तर पर सभी छोटे विकास कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पटना में सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं और परिसंपत्तियों को बेहतर और स्वच्छ बनाना तथा नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। उन्होंने विद्यालयों की रंगाई पुताई, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में जरूरी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कायाकल्प पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी की जाएगी। प्रदेश में इस साल आई बाढ़ से लगभग 270 करोड़ रुपए मूल्य की फसल बर्बाद हुई है। कृषि विभाग को बाढ़ प्रभावित 18 जिलों से फसल क्षति की अब तक मिली रिपोर्ट के आधार पर यह प्रारंभिक आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 102 प्रखंडों में 1,76,000 हेक्टेयर खेतों में लगी फसल को नुकसान हुआ है। सबसे अधिक धान, मक्का, सब्जी और केला जैसी फसलों की क्षति हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसल क्षति का वास्तविक आकलन होगा। ऐसे में नुकसान का आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। राज्य में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीए के विभिन्न घटक दलों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन देने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह जानकारी दी। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी एक एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। इधर मुख्यमंत्री राहत कोष में बिहार भाजपा की तरफ से 51 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं एक निजी कंपनी की ओर से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 71 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। दो दिवसीय इस समिट में उद्योग विभाग की ओर से निवेशकों को बिहार में उपलब्ध निवेश के अवसरों और सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं सेमिकॉन इंडिया 2026 में बिहार में निवेश, तकनीकी साझेदारी और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर अमेरिका और जापान के हितधारकों के साथ चर्चा हुई। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने पूर्णिया, वैशाली और किशनगंज जिले में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। परिषद की बैठक में 33 औद्योगिक इकाइयों में 558 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई। पूर्णिया के डगरवा में 177 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से सरिया फैक्ट्री और किशनगंज के ठाकुरगंज में 150 करोड़ रुपए की लागत से बिस्किट निर्माण कंपनी की स्थापना होगी। वहीं वैशाली के कोरोल औद्योगिक क्षेत्र में भी 94 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बिस्किट कारखाना खोला जाएगा। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में 2 अक्टूबर से बाल सहायता डेस्क काम करने लगेंगे। पुलिस मुख्यालय ने बाल आरोपी और बाल पीड़ितों को थानों में सुरक्षित, संवेदनशील और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं बालिकाओं की समस्या सुनने और उसके समाधान के लिए योग्य महिला पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से 5 अक्टूबर तक बाल सहायता डेस्क के गठन की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में वन्य जीव तस्करी की रोकथाम के लिए संवेदनशील मार्गों और स्थलों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग से होने वाली आवाजाही पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। पटना के अरण्य भवन में हुई अंतर एजेंसी बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपनिदेशक सुयोग सुभाष राव पाटिल ने वन्य जीव तस्करी की पूरी श्रृंखला और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच पर भी जोर दिया। प्रदेश में पर्यटन, संग्रहालय, कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार संग्रहालय समिति और बिहार कौशल विकास मिशन के बीच समझौता हुआ है। पटना में हुए 2 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर कौशल विकास मिशन के निदेशक मनीष शंकर और बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत बिहार संग्रहालय समिति को सरकारी प्रशिक्षण संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अवैध शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए मेथनॉल की निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मेथनॉल की खरीद, भंडारण और परिवहन पर निगरानी रखने तथा लाइसेंस और परमिट की नियमित जाँच करने पर जोर दिया। बिहार राज्य महिला आयोग आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना के पापू सभागार में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। पटना के ज्ञान भवन में कल से बिहार सरस मेला शुरू होगा। 29 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में बिहार समेत 15 राज्यों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियां अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगी। मेले में कुल 135 स्टॉल होंगे, जहां हस्तशिल्प, लोक कला, कलाकृतियों और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। प्रदेश के सभी जिलों की महिला उद्यमी भी इसमें शामिल होंगी। वैशाली की महिला बॉल बैडमिंटन टीम ने लगातार 11वीं बार बिहार राज्य चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। मोतिहारी में आयोजित 33वीं बिहार राज्य सीनियर महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में वैशाली ने बेगूसराय को 35-27 और 35-25 से पराजित किया। स्वास्थ्य विभाग ने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने तथा सीसीटीवी फुटेज मिटाने के आरोप में सहरसा सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार आजाद और चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोशन लाल पर कार्रवाई की है। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से पटना में विभागीय मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में फरार वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। हमले में अवर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में 14 नामजद समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा नगर थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी जांच दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगी कराने के मामले में नवादा और शेखपुरा से 2 POS संचालक को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के नटिनिया माई के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य घायल हो गए। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के चकड़ियापुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद की है। रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर मुंगेर के जमालपुर रतनपुर रेलखंड स्थित सुरंग का RPF और NDRF की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने आग, ट्रेन के बेपटरी होने और भूस्खलन जैसी आपात स्थिति में राहत और बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। औरंगाबाद में टीवी

0: संकल्प एवं कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया। पंचायतों में सभी विकास कार्य 30 नवंबर तक। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 डिसमिल जमीन पाने के लिए केवल अंचलाधिकारी कार्यालय में करें आवेदन। प्रभात खबर की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट के जज जाएंगे एनटीए ऑफिस, परीक्षा प्रणाली की करेंगे समीक्षा। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, साइबर क्राइम 6 साल में 54 लाख शिकायतें, FIR सिर्फ 2.4%। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, ममता की पार्टी का नाम ममता टीएमसी, सिंबल फुटबॉल प्लेयर। आज अखबार की सुर्खी है, 29 जिलों में परीक्षा भवन निर्माण के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान की शुरुआत की। पंचायत स्तर पर सभी छोटे विकास कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ से लगभग 270 करोड़ रुपए की फसल क्षति का प्रारंभिक आकलन, 1,76,000 हेक्टेयर में लगी फसल हुई प्रभावित। और एनडीए के विभिन्न घटक दलों ने राज्य के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना

0: चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: गाना सुनवा दीजिए।
2: मैं गाना सुनवाऊंगी आपको, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
1: मैं सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात का नंबर होते हैं, वही गाना है।
2: गाना तो बहुत ही अच्छा है और ये गाना आप मुझे दो लाइन गा के बताएंगे
1: एकदम।

0: जी मैम
1: जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया।
0: उतना अच्छा तो नहीं गाए लेकिन गा दिए।
1: नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया।
0: यही गाना सुनवा दीजिए मैम, सभी श्रोताओं को प्रिय रहेगा।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग हो रहा था ना।
1: सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं।
0: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं आपका शो का इंतजार करते हुए।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: बस कुछ नहीं, कॉल कर रहे थे मैम, फोन भी लग गया। जी फिल्म है दर्शन और गाने के बोल है दिल ने ये कहा है दिल से, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंग लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके सुनील जी, क्या आप ये मुझे दुलाई गा के सुनाएंगे?
1: जी मैम, गाना हम नहीं गा पाते।
0: ओके जी, कोई बात नहीं, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है सर रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम में।
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार।
12: कौन तलाक देगा ये इसके बराबर दर्द है रात की सताए।
11: ओके और आपका नाम?
12: हमारा नाम पड़ेगा ओम साई चटर राघव जी पंजाबी रोड कुछ के सामने गोपाल
11: जी। तो कहते हैं आप
12: बहुत बढ़िया है। आज तो सोचे की आपका कॉल नहीं लगेगा लगातार लगाते लास्ट में लग गया।
11: चलिए कोई बात ना लग गया
12: जी। अभी मैं गोरखपुर में हूँ।
11: अच्छा
12: क्या करें आपका आवाज सबसे सुपर के ऊपर लग रहा है बहुत ऊंचे तक जाएंगे आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं
11: जी।
12: एक आपसे आग्रह है
11: जी
12: कि कोई भी सॉन्ग चलाइए मैम तो थोड़ा फुल चलाइए।
11: ओके ना फुल इसलिए नहीं क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रहता है उसमें सबका बजाना पड़ता है।
12: जी वो तो बस सही है बाकी रह गया कि सॉन्ग पूरा बजता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है।
11: जी जी बात आपकी सही है लेकिन उसी में कॉल भी रहता है आप लोग का बातें भी रहती है उससे गाना भी
12: ठीक है आपका गाना ठीक है तो कम सॉन्ग प्ले कीजिए क्योंकि उसे अच्छा लगता है बात समझ गया।
11: ओके जी।
12: बीच में कट करने से ना थोड़ा मूड अप हो जाता है अच्छा अगर सॉन्ग रहता है ना बीच में कट होता है तो अरे सब बेकार है क्या ऐसे तो सॉन्ग आदमी सुनते करता है बस रह गया कि रेडियो के माध्यम से और ऐसे सुनने के बाद कुछ अलग लगता है।
11: ठीक है कोई बात नहीं
12: करूँगी आपका कृपया संकल्प कर बताएंगे कहीं आप करेंगे
11: जी हाँ
12: हमारा सोच था वो आपसे कह दिए।
11: चलिए कोई बात नहीं है मैं कोशिश करूंगी कि आपका गाना फुल बजे।
12: नहीं हमारा ही नहीं सब कुछ हम कर रहे हैं अपना नहीं कि आप देखिए हम रेडियो बहुत पहले से सुन रहे हैं आप तो नए आए हैं रेडियो स्टार्ट हुआ तभी से हम सुन रहे हैं 9 से रेडियो हम सुन रहे हैं।
11: अच्छा
12: जी तो उसी टाइम से हेलो फार्मेसी का कॉल होता है तभी आपका आवाज तो बहुत अच्छा लगता है रेडियो पे और भी सुन लेके आइए आप लेके आइए।
11: चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: थैंक यू मैम
11: जी वेलकम सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
12: थैंक यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, कहते हैं आप तो क्या हो रहा है?
1: अभी काम कर रहे हैं ड्यूटी में।
0: अच्छा जी,
1: गाना सुना दीजिए। जानवर अंगूरी जानवर अंगूरी अंगूरी।
0: अच्छा, अंगूरी अंगूरी जी। अरे गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: हाँ, सुनील है, रंजीत है, सूरज है,
0: सुनील जी। तो मैं आपका गाना प्ले करती हूँ जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी
1: दम दम के अंगूरी बदन।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ।
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90-765-65-750।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर। अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजैट पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ।
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना।
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम। जी नमस्ते, नाम बता दीजिए। जी कैसी हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे क्या नाम बताई है अपना?
12: अनन्या।
11: अनन्या जी क्या कर रही थी आप?
12: अनन्या,
11: ओके जी सॉरी। तो क्या है फरमाइश आपकी? आज आप कौन सा गाना सुनिएगा?
6: बर्बादी
11: गाना किसी को सुनाना भी
6: चाहते?
11: तमन्ना जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं
6: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्ते। जी हाल चाल तो बढ़िया बा, अपन बताई रहुआ कैसन बानी?
0: हम बढ़िया बानी, विकास कुमार।
1: अच्छा जी, और बताई खाना में हो गई बा?
0: खाना उना हो गई बटे, ड्यूटी में आधा
1: घंटा।
0: और सब मैडम कैसन आप बानी बताई?
1: जी हम तो ठीक बानी, रहुआ ठीक ठाक बानी ना?
0: बस आप लोग का आशीर्वाद बढ़िया बात है, हमने के काम भी सब सही चल रहा है।
1: जी जी भगवान रहने वालों के काम में तरक्की हो तो ठीक से रहो और घर परिवार में सबको भी ठीक रहो हमेशा।
0: बस इससे अच्छा और क्या चाहिए।
1: जी घर का
0: आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगे ना।
1: जी तो हमू बता दी की रुआ सब से बात करके हम के भी बहुत निमन लगे।
0: एगो हमारे साला हुए पहले की बात करी ले रहे जी जी, हम को थोड़ी ना बात करी ले, हम गाना सुने बात करिए गाना गोरबल हो जला। जब घर फोन करिए हमारे घर, अपने दीदी से बता दिए कि देखो कि हम गाना सुने खतरा बतियाई ले अपने सिस्टर से।
1: जी जी तो बता दी आज की फरमाई।
0: गाना आज की फरमाई से सैया मेरी तो बदला नहीं है, यही वाली मैडम।
1: जी हरी गाना क्योंकि सुनवाई के लिए चाहते नहीं,
0: सबसे पहले आपके सुनवा चाहता
1: हूँ। थैंक यू।
0: आज जितना रेडियो में सुनने वाला है सबके सुनवा चाहता है। और एक मेरा नोएडा का दोस्त है वो गुरदीप
1: जी,
0: वो इटवा मैनपुरी का है।
1: अच्छा।
0: वही बोलन कि मर्दवा तू गाना यही फरमाइश करी हो। हम कहने की ठीक हो भाई, ये गाना फरमाइश कर।
1: जी जी तो चले प्ले करते हैं गाना ये।
0: अच्छा ठीक है मैडम, ओके।
1: जी सुनत नहीं सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0975।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello.
16: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM।
18: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
17: जी नमस्कार, हाल चाल तो ठीक बा, अपन बताएंगे?
18: ठीक है, बताए। बढ़िया से नाश्ता पानी खाते है कि नहीं?
17: हाँ जी, नाश्ता होता भाई, अपन बताएंगे।
18: नाश्ता कर ले बनी अपने के पीछे पहुँचने के अपने के कॉल लेके 1 से 1.5 बजे ले अपने कॉल रहे हैं, तो नाश्ता करके मजबूत बन के आज जरूरी।
17: जी जी,
18: गाना बता जानी हम तो इतना बर्बाद ही है, भोले बाबा हमारा है, बेनू रहा हमारा।
17: ये गाना भोजपुरी है ना?
18: हाँ ये।
17: जी जी,
18: गनवा के हम के इतना बरवादी, भोले बाबा हमारा रहस्य नूरा हमा।
17: वो गाना भी गावे नहीं आज हमको पता चला?
18: गाना ना गाइए लेकिन थोड़ा सा गुनगुना दे हमारा।
17: ना ना, लेकिन अच्छा लगा।
18: अच्छा लगे के चाहिए तो गाना सबको आज डेडिकेट करते हैं, साथ में अपने के आभासी जी के सोनू भाई बारोन, तमाम सुनने वाला जितना श्रोता है, ऑनलाइन सुनता है, सुन लोग उनका रहते। अच्छा, आज के जो प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग होता है, आज तो आज के दिन में कहा ना चले लगी हम कितने दिन से देख ले जाएंगे।
17: अरे पिछला कॉल अभी बाकी रहे ना तो के पहले बजाओ जरूरी बना पीछे
18: आज आज वाला था आज बाजी ना कॉल बाजी
17: हाँ कॉल बाजी
18: वही से हम नोटिस कहले बने ऐसे कौन है कहा से हम चलता नहीं हम मनोरमा जी से पूछा था नहीं कहा कि हम बेसब्री से प्रोग्राम सुन ले शाम के 5 बजे से जानिए तो हम कहें आज के रिकॉर्डिंग में बाजत नहीं किया बुध के या रिकॉर्डिंग बाजत है की शुक्रवार के लगाता है की आज से बाजी ना फिर माँ और बुध के ही पहुंचा
17: ना कहा है ना कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई ना बाजे रहे तो जन बाकी बता आज बाजी
18: अच्छा बाकी रहा वो दिन भी रिकॉर्डिंग करें तो हम प्रतीक्षा करते रहे हम कौन की तो चलो था रिकॉर्डिंग चलो पाया था शुक्रवार वाला चलत नहीं थे गुरुवार वाला चलो पाया
17: ना ना आज चली बाकी बाटे अभी
18: अभी बाकी रहा ठीक बात है और से लाइन में बात है ना
17: जी आप नामो बता दी
18: नामो बताइए यहीं के पड़ी तो हम दिल्ली ग्राम दिल्ली से क्या बता दे रहे क्या जी
17: ना
18: ना वैसे लगा था कि बता दे रहे कौन है फिर नामो बता दी
17: ना ना पूछो जरूरी बात है ताकि अगला लोग भी तो पता चले
18: मैं तो अपना ही तो कह लेंगे अपने के आवाज से सब कोई जाने ला लेकिन ना बताओ जरूरी रहे ठीक बात है और कही बात है लाइन में लागल
17: जी जी
18: सर अपना से नमस्कार सर कोई नमस्कार एक बार और
17: तो चलिए राहुल गाना प्ले करते हैं सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंजिन 90.4 FM
18: नमस्कार
17: नमस्कार

0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM में।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: प्रणाम।
0: प्रणाम, क्या हाल चल रहा?
1: ठीक है, तो जल्दी लग गई।
0: हाँ,
1: तीसरे बार में लग गई।
0: अच्छा, चलो ऐसे की बात पर लग गई। था
1: क्या होता?
0: क्या हुई? बस लगा तब ऐसी बातें होता।
1: और सर, भारती जी का हाल?
0: भारती जी की भी हाल चल ठीक ठाक।
1: आप सुनाइए। और
0: जी, हमारे सब तो बढ़िया। आप बताए, नाश्ता सब हो गया?
1: अभी क्या, अभी कॉल हुई करा दादे, नाश्ता पानी हुई।
0: अच्छा,
1: तो
0: इससे पहले क्या होता रहा?
1: कुछ ना हुई तो लेट के मोबाइल।
0: सही,
1: क्या करो जी।
0: तो क्या बात की फरमाइश?
1: आज फरमाइश बा, अमित उपाध्याय के ही रही, गैरों के आपन बनावे लिया किया।
0: जी, एक बार और बता दी।
1: गैरों के आपन बनावे लिया किया।
0: सर, वही गा के हम बता सकते नहीं?
1: ना, आज नहीं गा।
0: अरे, दो लाइन ही गाए की बा।
1: गैरों के आपन बनावे लिया किया, ऐसा ही है
0: जी। और सुनवाए की भी चाहते नहीं?
1: हाँ, गौरा के और भारती जी के। आज कल पता न सोनू जी कहाँ रहते हैं। चलिए, फिर सुना दिया पहले का, तभी ना चलो।
0: ना ना, उकाना की कॉल अभी बाकी है, तो आज बाजू।
1: अच्छा, हो गई बात, तैयारी हो गई बात?
0: ना, कुछ बाकी ना।
1: अच्छा, चलिए, रोड परेशानी में मैंने क्या करे, मैं अकेले क्या क्या करे। चलिए, आप सब टीम कोई समझा?
0: ओके, ठीक बा,
1: ठीक है, काम बा। चलिए, फिर सुना दे।
0: इतना तो बात हो गई, लेकिन हम ना बताइए।
1: रमेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
0: जी, ठीक बा, तो चलिए, गाना प्ले करता नहीं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए।
8: जी हम भी अच्छे हैं, आज बहुत लेट हो गया हमको।
7: जी जी कोई बात नहीं, लेट से किए हैं तो सही है, क्योंकि जो लेट से करता है उन्हीं का पहले बसता है।
8: वो तो बात के बात है, मैं सबसे पहले तो आपसे शिकायत है।
7: जी जी हम समझ रहे हैं आपकी शिकायत को बिना बताए।
8: जी तो बता दीजिए शिकायत हमारा।
7: शिकायत यही है कि आपने रिकॉर्डिंग कराया और रिकॉर्डिंग नहीं चलाई है ना।
8: हाँ, 3 दिन हो गया ना आज फ्राइडे वाला।
7: जी जी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से कॉल नहीं बजा।
8: जी मैम, और आपको मानना पड़ेगा, मतलब बताने से पहले बता दी।
7: जी जी हम समझ गए आप क्या बताना चाहते
8: थे, इसके लिए धन्यवाद समझने के लिए आपको। और आज आप हमारा नाम बताइए।
7: जी आप सैफरोज जी बोल रहे हैं।
8: जी मैम, थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं ना।
7: जी जी कोशिश कर रहे हैं पूरा पहचान।
8: जी बहुत खुशी होगी मैम।
7: जी जी
8: जी मैम, तो आज 11:05 कॉल लगाते लगाते देखिए 11:30 हो गया।

0: उस दिन भी नहीं बजा तो बजेगा।
1: हाँ वो आज बजेगा।
0: तो आज भी भोजपुरी गाना सुनना है क्योंकि वो नहीं बजा, इसलिए आज भी सुनना है भोजपुरी जी। गाने का नाम है साकी शराब पी के।
1: अच्छा
0: जी मैम।
1: जी मैं आपको बता दूं कि क्या आप ये मुझे दो लाइन गा के बताएंगे?
0: आपसे बोले मैम ना कि मेरा आवाज अच्छा नहीं है।
1: नहीं ऐसे अपने कहने से थोड़ी होता है, अगला आदमी की जो पसंद है तभी ना बोल रहे हैं। आप दो लाइन गाते तो सही रहता।
0: जी मैम, गाने का बोल तो यही है आप गम के भरी साकी शराब पी के। जी मैम, गाना गाते नहीं इसलिए नहीं गा पाए।
1: कोई बात नहीं।
0: जी मैम, इसी गाने को देख लीजिए, फिलहाल काम में है।
1: ओके जी,
0: नमस्कार, बाय बाय।
1: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो,
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: नमस्ते।
1: में। नमस्ते। हल
0: क्या हाल है?
1: तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: हूँ। नाम नहीं पहचान रही है?
1: पहचान तो रहे हैं लेकिन हमारे लिसनर लोग को भी तो पता चले।
0: दिनेश कुमार पिपरा नाम से।
1: अच्छा जी,
0: उस समय से 11 बजे से कॉल लगा रहे हैं, अभी 12 बजे में 3 मिनट बाकी है तब कॉल लगा है।
1: तो क्या करिएगा, कॉल आता रहता है, कॉल करता है तो गुस्सा आ जाता है।
0: और सब गोपालगंज का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो धूप निकला हुआ है।
0: इधर भी धूप है, थोड़ा छींव हो रहा है, धूप हो रहा है।
1: तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
0: आज की फरमाइश अपना पसंद से सुना दीजिए। रोज तो अपना पसंद से सुनते हैं, आज अपना पसंद से सुना दीजिए।
1: कौन सा गाना सुनिए?
0: कोई भी अपना पसंद से सुना दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगेगा, हिंदी चाहे भोजपुरी।
1: कोई भी तो बता दीजिए आप।
0: नहीं, ये तो मेरा इतना याद नहीं है जी। अपना पसंद से आपको जो अच्छा लगेगा वो बजा दीजिए। तो कोई भी गाना सुना दीजिए, आपको जो अच्छा लगेगा, हिंदी अच्छा लगे तो हिंदी बजा दीजिए, भोजपुरी अच्छा लगे तो भोजपुरी बजा दीजिए।
1: ओके जी, तो फिर चलिए प्ले करते हैं गाना।
0: डेडिकेट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको, भारती दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को, श्रुति दीदी को, अफसर सर को, सोनू सर को, पंकज सर को, डायरेक्टर सर को, और स्पेशल में करिश्मा जी।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्ते जी, नमस्ते, राधे राधे,
11: राधे राधे।
10: कैसन मानी, बताई रहो?
11: जी हम तो ठीक बात रानी बन।
10: जी जी, हम रानी बोल रही हूँ। कहाँ छोड़ के चल जाता निकलती मार के, बता के जाई थोड़ा हमने के।
11: अच्छा जी ना।
10: हाँ
11: जी, तो बताई रहो, ठीक बात।
10: हाँ ठीक वानी, और बताई, नाश्ता हो गया?
11: जी नाश्ता तो हो गया।
10: अच्छा जी, मार्केट करके आये मैं से खाए वाला लिस्टनर लोग के का कहीं सर, जितने ककोर ककोर के बात करे नी सनो।
11: ना ऐसा बात नहीं,
10: ऐसा बात ना, आओ मैं सबसे ज्यादा आम ऐसानी।
11: ना जी बिल्कुल ना, तुम लोग से बात कर।
10: और हमें अम्मी की, अगर हमने की तारीफ तो करे नी तो ना अलग, बाकी अलग भी जे घर परिवार में बात सुने ला तो बड़ा निक लगला रहू रवाज। और खास करके हमारा सिस्टर के बहुत रहू रवाज पसंद बा।
11: जी इसे का नाम बा रहू सिस्टर?
10: जी जी, उनका नाम आरती बा।
11: कभी कौन सुन
10: रही? ना ना, वो केवल छुपके से सुने ली, बाकी आज तक बात नहीं कहले, कभी भी चैनल पर वालों के बात नहीं की, बाकी सुने ली ज्यादा।
11: अच्छा जी, तो कभी कहीं बात करें?
10: जी जी, हम बात कराएं जरूर वैसे, और वैसे तब हमेशा बात होती रही तो बात जरूर कराएं। और एक बात बोलने के बाद ही, उस मूवी से जो गाना चला ले रही, एक दिन दिल लेके यार दिल दिया जाता है, तो मैं उस स्मरण के नाम का आवा और बोल ले रही की रानी जी खूब बात करती है। बाकी ज्यादा बात कर रही नहीं, कहीं बेकार नहीं गेनू लगा लू मैं, कुछ पीछे के पड़ी
11: बात नहीं की, सब सबके पसंद गाना भी अच्छा, अच्छा करें।
10: जी जी, और वहाँ के ज्यादा कुछ तो ना बोला, मजाक कर नहीं रहो से, और जानते बनी हम इतनी बात करे की आदत वहाँ के बोल ले रही, बस इतना सुन ले रही। और जब गाना गावे के बारे वहाँ के हुए तो कहते नहीं की हमारा आवाज अच्छा नहीं है, आवाज तो आवाज हो लू वहाँ के, आवाज बहुत मस्त हुआ है, बात करे बस आवाज अच्छा नहीं है।
11: जी जी, तो आवाज पहुंची
10: ना, वो अपने आवाज के लेके बड़ा कम्पेयर करे नहीं था, बात नहीं की वहाँ के आवाज बहुत अच्छा बा और कहीं जी हमारे फरमाइश बहुत अच्छा होला वहाँ के ये बात बोल रही थी। और एक बात बताया जब रोवा जब से शो में आई बानी अलग एक माहौल बना के रख दिले बानी, सब कोई खाना छोड़ देता कोनो काम छोड़ देता हमारा के बताई हम भाभी के मुड़ी बना छोड़ के बात करते नहीं और के बांध देले बानी वहाँ के स्वागत छुट्टी बांध रही है लास्ट में बाने के बाद बना जाये लागे ना लागे बाकी हमके तो बहुत अच्छा लगे
11: काम करी
10: बाकी एक ही कौशल रह जाला जबकि उसे बात करेला के इंसान तो देखे के बड़ा इच्छा रहेला तो के देखे सपना में आके
11: सपना में आई
10: आ जाए जरूर आये हमके सपना में हमके लोगों के देखे के बाद
11: बिल्कुल।
10: अच्छा अभी बिना देरी की एक सॉन्ग बजा दीदी जी फिल्म के नाम बा सैनी ठीक बा और मैं एगो सॉन्ग भाई मेरी सांसे की मेरी पिया मैं तो तुझसे वचन ले लिया
11: दू लाइन
10: और दू लाइन तो ये गाना ना गाये बाकी अगर हम दूसरा गाना गा सकते नहीं ऐसे का एक गाना की जो लाइन में बड़ा हार्ड बा ना ना भाई ये गाना हम कंपेयर ना करें अगर दूसरा गाना सुने के बाद फिर वो कहीं हम लोग गा दे और बात चारे में बड़ा दिक्कत लगे चाहे नहीं तो रहो जन कहीं तो हम करी वो रहुआ कहती अगर वो दूसरा गाना सुने के बाद हमारा मुँह से तो हम गा दे जौन लू रही तो गा दे बिल्कुल रहुआ कहती गा दे
11: हम बता दे रहे बात करें गाना सुने
10: अच्छा जी एगो पानी वाला गाना गा दे नहीं रहुआ खाती सब कोई खाती दू लाइन गा देता नहीं आज के दिन ठीक हो भोजपुरी में बात भैल तो सोचे बीचे लाइन से हम गा देता नहीं दू तुम गाय हुआ कहती ये एक सॉन्ग तो बा बहुत पानी सॉन्ग बा और खराब नहीं के एक गा देता नहीं जी हम गा देता नहीं रोवा कहती ठीक तू जके पटब ओकर से हम पटब कौन छोकर से
11: गाना
10: बा भोजपुरी में कम प्राइज हो गई
11: जी जी बिल्कुल
10: गाना तो बहुत अच्छा बा भोजपुरी में और काफी पानी बा एक के बीच लाइन हम जबरदस्त में गा देनी रोवा कहती जी और ये गाना हम सब कोई के सुनावे चाहतनी जितना भाभी हुई दीदी बड़की मम्मी और सब बाहरी जितना लोग सुनी रानी के गाना आज सब कोई चीज के एटी को सुबह सर पे बाजी गाना तो सब कोई सवारे बा रानी की तरफ से
11: बिल्कुल
10: जी और कोशिश करें दी आइए आज पॉडिंग आगे चलावे के
11: ठीक बा पूरा को
10: हाँ और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और वालों के ऊपर बा और बाकी थोड़ी सीखा देनी है जैसे चाहे कुछ काम अपने हाथ में होला तो इंसान कर लेला बाकी कुछ अगर दूसरा का हाथ में हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो बा बीच में पानी पियत रही जी और पानी पी और बीच में थोड़ा सा रात लेने के बतिया में तो गाय सबसे ज्यादा रवि इसमें रानी बात करे लीनू।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: हेलो,
1: एफएम
0: मेरा नाम धीमा अंसारी है।
1: और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: बेतिया से।
1: तो कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अपना बताइए।
1: जी, मेरा भी बढ़िया। तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
0: वही जो ये गाना है, हाथ में मेहंदी मांगी सिंदूर हुआ। हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाथ में मेहंदी मांगी सिंदूर हुआ, बर्बादी का जरवा हो गई लेना।
1: क्या मुझे ये आप दो लाइन गा के सुनाएंगे?
0: वही बता नहीं रहे, हाथ में मेहंदी मांगी सिंदूर हुआ, बर्बादी का जरवा हो गई लेना।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, हेलो।
1: हाँ जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है। मैं
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: सॉरी मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज जैट पर।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो मैडम
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: जी नमस्कार।
14: नमस्कार,
13: मनन बोल रहा है कपरपुरा से।
14: जी कैसे हैं आप?
13: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
14: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
13: बातें ही बोल रहे हैं?
14: नहीं,
13: मनोरमा जी।
14: हाँ जी।
13: अच्छा, मनोरमा जी, तो आज गाना सुनवाइए ना।
14: बता दीजिए।
13: जाने हम सड़कों के लोगों से महले वाले क्यों जलते हैं, ये मोहम्मद रफी का गाना है, आका फिल्म का।
14: जी, तो क्या आप ये गाना मुझे दुल्हन गा के बताएंगे?
13: अच्छा, तो इसके लिए माफी हम चाहते हैं, हम गाना गाते नहीं, गाना सुनते हैं।
14: चलिए कोई बात नहीं।
13: क्योंकि हमारा आवाज है मोटा है ना, गाना सुनने में हमको ज्यादा मजा लगता है, गाने में नहीं, है ना।
14: अच्छा,
13: ये आज पहली बार आप बोली हैं गाने के लिए, है ना। इससे पहले कोई सोनी जी है, भारती जी है, कौन कौन लोग आई है, उससे पहले दिव्या जी थी, है ना। तो ये कोई नहीं पूछा था आप गाना गाते हैं।
14: चलिए हम
13: नहीं नहीं नहीं आपको दिए, ये बहुत अच्छा बात, हमको अच्छा लगा ये बात जान के। लेकिन आपको एक बात, मैं रेडियो पे सुनता हूँ ना, आपका स्टाइलिंग जो है बात करने का बहुत अच्छा है। आप गाना गा के सुनाइए, आप रेडियो बराबर सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, है ना। ये आप बात पूछती हो ना, ये बात आज तक ऐसे कोई भी आया था, है ना, कोई भी इससे पहले, आपसे पहले भी, ये बात कोई नहीं रखा था, भाई साहब, आप पहली बार आई हैं तो ये बात लोगों से पूछती हो कि गाना आप गाते हैं, कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्या है, ये बात हमको सुन के बहुत ये मतलब एक मैंने बहुत रोचकता लगता है हमको, इतना अच्छा लगता है कि क्या बात है, कौन सा शब्द में बयान करें, है ना। हाँ, ये आपका शब्द बहुत अच्छा लगा। इन तो दिव्य भारती जी से आपका बात हम बोल दिए कि देखिए मनोरमा जी आई है, कैसे कैसे सवाल लोगों से पूछ रही है, बड़ी अच्छी बात है, आज तक कोई पूछा नहीं था, सोनी जी भी नहीं पूछी थी ये बात।
14: अच्छा जी।
13: हाँ, जब से आप आए हैं, जब से आप ये अटेंड कर रही है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जब भी आपका आवाज में सुनता हूँ तो बहुत मुझे भाता है ये।
14: अच्छा,
13: लोगों से आप बात करती है बहुत बात, तो आप मेरा वाला गाना जो है आज सुनवाइए मैडम, यही गाना।
14: जी जी, तो एक बार और बता दीजिए।
13: जाने हम सड़कों की लोगों से महले वाले क्यों जलते हैं, ये आशा फिल्म का है और रफी का गाना।
14: ठीक है, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
13: डेडिकेट तो इससे पहले शुक्रवार को आपको दिया था उस गाने पे, ए आई वाला वीडियो पे, आज भारती जी को डेडिकेट दे रहे हैं और सोनी जी को भी डेडिकेट कर रहे हैं। ये कहीं हो सकता है कहीं मेरा आवाज सुने गाने में।
14: जी जी।
13: बोलो, सुनते हैं कि नहीं मैडम? नहीं सुनते हैं।
14: बराबर।
13: अच्छा, तो ये दो आदमी के नाम पे डेडिकेट होएगा।
14: ओके जी, तो फिर चलिए करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक है
1: जी। तो नाम बता दीजिए अपना।
0: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
1: ओ मनीषा जी, कैसी हैं आप?
0: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया। वैसे क्या हो रहा था?
0: अभी तो बैठी थी, कॉल लगा रही थी।
1: अरे
0: और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: खाना हो गया?
1: हाँ खाना तो हो गया। और आपका?
0: मेरा भी हो गया है।
1: चलिए।
0: और मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है। धूप तो कड़ा हो रहा है।
0: इधर भी ऐसे हो रहा है। चलिए तो ठीक है
1: जी। तो मनीषा जी, आप कौन सा गाना सुनिएगा?
0: अपने पसंद से सुनवा दीजिए ना।
1: तो मेरे पसंद से तो डेली बजता है। आप कॉल किए तो आप बता देती तो
0: तो सुनवा दीजिए। यारा ओ यारा तेरी अदाऊंगी मारा।
1: क्या मनीषा जी, ये आप मुझे गा के बताएंगे दो लाइन?
0: नहीं याद नहीं है,
1: बस थोड़ा सा ही गाना है आपको।
0: अच्छा, आपके लिए गा दे रही हूँ।
1: बिल्कुल
0: यारा ओ।

0: जी अच्छा कर रही हैं आप।
1: जी मैम।
0: तो मनीषा जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, भारती मैम को, अपनी दीदी को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरती को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम, बाय मैम।
0: बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम,
9: क्या हाल है?
8: हाल चाल तो ठीक बा, आपन बताई?
9: ठीक बा, रोड फोन लगा दो हां दो फोन लगा दी।
8: अच्छा जी,
9: एक घंटा से फोन लगाओ तो रात पहली बार इतना मेहनत पहले बार।
8: हां चली, मेहनत सफल भई लाग गेल।
9: एके लगा दे तो उठाइबे ना करनी
8: है। अरे ना उका ना फोन काम ना कर तो चले कट गेल। अच्छा
9: ठीक बानी ना रोवा?
8: हां हां हम तो ठीक बानी, आपन बताई?
9: ठीक बानी हम।
8: तो और तो बताई, खाना ना भईला कि ना?
9: खाना बनते बा नाश्ता हो गया
10: अभी ठीक बात तो घर परिवार में सब क्यों ठीक बन
9: सब ठीक बात
10: जी हम ये के सब क्यों ठीक बन अभी तो कौन गाना सुने
9: गाना सुना दे गदर सुन देवल के
10: कौन सा
9: कौन सुना दे अच्छे गाना में
10: अच्छा गदर
9: लास्ट फिल्म गाना नहीं सुना
10: कौन सा तनी सब बताई तो ठीक है
9: फोन लगा दो बुलाएगा नहीं कौन गाना कौन
10: अच्छा ज्यादा मेहनत हो
9: गई
10: चली तो गदर फिल्म में कौन गाना बजा दी
9: कौन बजा दे
10: चली ठीक बस सुनवाई के भी चाहते
9: सुने सुनिए बढ़ लेगा नहीं सब कोई सुनिए जितना लोग सुना करेगी सब कोई सुन
10: नाम बताएंगे की ना आपको
9: नाम बताएंगे बताएंगे
10: हम तो जानते नहीं लेकिन बता दीजिए सही रही
9: तो बताए बता दी
10: रेशमा बोल पठान पट्टी से
9: भुला
10: हम के भुला जाए एक दिन खाना खाए भुला जाए लेकिन रुआ के नहीं भुला सको
9: तो पेट पे मारी आदत कौन पहले लाई
10: चलिए
9: मैडम जी मेरे बात हो जाए
10: जी जी चलिए तो प्ले करते
9: बजा दी गाना
10: जी
9: हाँ प्ले कर दी गाना
10: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रेंज 90.4
11: मैं निकला।

0: Now pick your phone up.
1: Hello?
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रूम छीम 94.4 FM पे शो स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें तो आपकी गाने की फरमाइश रोक दी जाएगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम में स्पेशली रात्रि का समय है तो पुराने गाने के लिए कार्यक्रम चलता है, तो यदि पुराने गाने आप पसंद करते हैं, पुराने गाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप फरमा सकते हैं और किसी को सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं या खुद एंजॉय कर सकते हैं गाने के साथ। तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जो हम बातें बोले हैं पुराने गाने, तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। फिलहाल कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आगे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं सर, शाम हाले दिल तुमसे मिलने को जब मैं आती हूं। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप खुद देख ले कि आपकी फरमाइश इस सप्ताह में पूरी हुआ है कि नहीं। आपकी गाने हम सुनाए हैं सो आज नहीं सुनाएंगे, अगले सप्ताह आपकी बारी आएगी। फिलहाल आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए उस मैसेज में दिए गए फरमाए गए गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनो मधुसरिया से राजू कुमार यादव जी का, कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं, सुनाना चाहता हूँ सभी दोस्तों को। तो आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं। और नीतीश जी आप कॉल ना करें, आप कॉल के बजाय मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। डेडिकेट है आपको और ऑल लिस्नर को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शबीना फ्रॉम दुलुलिया से, और डेडिकेट में ऑल दोस्तों को भी नाम दी है, तो नाम तो नहीं है, ऑल दोस्त हैं। आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर गाने के साथ भी कार्यक्रम को एंजॉय किया जाएगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज हाय मैं दीपराज, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, तो आप आगे भी मैसेज करें और गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, सोनू जी से निवेदन है कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाएंगे, लेकिन आप एक ही बार मैसेज करें, आप स्थिरता बनाए रखें, आपकी फरमाइश हम बिल्कुल प्ले करेंगे। यदि आप बार बार मैसेज करेंगे तो आपकी बारी ही नहीं आ पाएगी, तो आप गाने नहीं सुन पाएंगे। आप स्थिर रहे, आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल शबीना खातून की गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि दिल से शुक्रिया सॉन्ग सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमशन सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हम नहीं सुने हैं, सीट खाली हो तो सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे और आगे मैसेज पहुंचाए हुए गाने के साथ अजय मिश्रा जी और गाने की फरमाइश करते हैं, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा की झोंकर से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप सभी से कहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि पुराने गाने के साथ या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे तो फरमाइश आपकी पूरी की जाएगी और नए गाने की फरमाइश नहीं करना है। और भोजपुरी भी सुनना चाहते हैं तो पुराने गाने की ही फरमाइश करेंगे, फिल्मी गाने की फरमाइश करेंगे तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आगे हमारे पास कॉल पहुँच रहे हैं तो कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। कॉल के बजाय मैसेज करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। जितेंद्र कुमार जी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 FM पे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा की झोंके से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे समय हो रहे हैं 9:45। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड, रफ़ी जी, लता जी और इन सारे सिंगर के ज़माने के गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर पाएँ। यहाँ पे एक आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी गाना सुनाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है। अजय कुमार मिश्रा जी आपसे कहते हैं हम हर रोज़ निवेदन पूर्वक कि आप स्थिर रहें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे ही करेंगे और आप थोड़े व्याकुल हो जाते हैं, तो इतना व्याकुल नहीं होना है। आप मैसेज कर दिए हैं तो हम एक एक करके जैसे सबकी फरमाइश पूरी करते हैं, वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। मेरा कार्य है फरमाइशों को पूरा करना, बशर्ते हमारे पास समय होने चाहिए। जितना समय मिला है उतना ही में हम कुछ कर पाते हैं। यदि आप समय से पहुंचा दिए हैं मैसेज तो बिल्कुल पूरा होगी ही आपकी फरमाइश। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी मुझे सॉन्ग सुनना है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, धड़कन मूवी से, तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं मंटू सिंह एडवोकेट गोपालगंज से, तो चलिए आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पे। एक और मैसेज हमारे मैसेज नहीं कॉल आ रहे हैं, तो आप लोग कॉल ना करें, कॉल के बजाय आप मैसेज करें। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम, तीन चीज़ें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर जो अभी आप कॉल किए हैं 72 77 16 65 96 पे। सेंड करेंगे जैसे वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

कमल के सॉन्ग सुन रहे हैं हम सब रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे भी कई मैसेज हमारे पास पहुँच रहे हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना बजा कि नहीं, तो बिल्कुल अभी तक तो नहीं बजा है, अभी बजने वाला है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर प्रणाम, मेरा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अंकुश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शबनम, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं स्नेहा फ्रॉम गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं दीपराज जी की फरमाइश, गाने की फरमाइश करते हैं। याद तेरी आती है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनने आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम है SMS फरमाइश का। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे अभी और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। हेलो, हाय, नमस्कार सर, आई सॉन्ग सुनना है, तुमसे मिलने को दिल करता है, चला दीजिएगा। सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, स्पेशल में आपको ओम साई टेलर राघव जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। यहाँ पे शबनम जी का कॉल आ रहा है, तो आपसे कहना ये है कि आप कॉल ना करें, आप गाने का नाम बताएं। पुराने गाने सुनने हैं तो आप जिस गाने को पसंद करती हैं उस गाने का नाम बताइए, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। और हमारे पास समय भी बहुत कम है, जल्दी बताती हैं तो आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि थैंक यू सर, चलिए आपको भी धन्यवाद है। और दीपराज जी, आप जब भी मैसेज करें तो गाने का मुख्य नाम बताए, आप बीच में से गाने का नाम बताए होते जिसके कारण हमारा 2 मिनट बर्बाद हो चुका। तो आप जब भी मैसेज करें, हर श्रोतागण से निवेदन है कि आप गाने का क्लियर नाम पता कर ले कि कौन से गाने सुनना है, इसका मुख्य नाम क्या है, उस नाम को टाइप करें। और टाइप करते हैं तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी आपकी फरमाइश पूरा करने में, जो भी फरमाइश आपकी होगी उसी को पूरा किया जाएगा। नहीं तो बहुत सारे गाने के ऑप्शन आ जाते हैं और गाने प्ले करने के बाद से पता चलता है कि ये तो गाने नहीं थे, तो अभी आपके द्वारा फरमाए गए गाने हमने चेंज किए। और आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसी घटना ना हो। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इस गाने की फरमाइश करती हैं स्नेहा गोपालगंज से, और गाने की बोल देती हैं हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। तो चलिए, करना कुछ नहीं है, आगे निभाते रहना है और सुखी शांति पूर्वक जीवन निभाना है। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमझेम 90.4 FM पे आपके गाने के साथ। आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

कमाल के शाम संडे हम सब रेडियो MCM 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज, और यह मैसेज पहुँचा हुआ था, लिखा गया है कि आई लव दिस सॉन्ग, और मन मूवी से गाने सुनने थे हम सभी उस गाने के उपरांत। इस मैसेज को किए हैं तृप्ति फ्रॉम नवादा से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि खिसारी का गाना बजा दो, तो बिल्कुल नहीं बज पाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं राघव जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। ओहो, चलिए राघव जी किन से मिलने को दिल करता है ये भी बता दीजिए। फिलहाल आपके गाने तो हम प्ले करेंगे। यहाँ पे के मैसेज और भी पहुँचे हुए, और लिखा गया है कि किसके नाम से सॉन्ग प्ले किए हैं, तो बिल्कुल आप ही के नाम से सॉन्ग प्ले किए हैं। और हम दूसरा

ट्रेडर MCM नेटवर्क 4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और अभी हम सभी राघव जी के गाने सुन रहे थे और तुमसे मिलने को दिल करता है। राघव जी अभी तो बताए नहीं, चलिए आपके गाने हम सभी इंजॉय कर लिए और आगे बढ़ेंगे। आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे और अंतिम गाने हम प्ले करते हैं शबनम जी की फरमाइश।

0: स्वर्ग मूवी से इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। और एक और मैसेज हमारे पास, अंकुश जी जुड़े हुए हैं, और चलिए आपकी गाने के फरमाइश इस सप्ताह हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मंगलवार को मैसेज किए थे, तो मंगलवार के गाने बजे हैं कि नहीं अब तो हमें याद नहीं है, और आपके तरफ से फीडबैक भी नहीं पहुंचा हुआ है कि क्लियर हो पाए। तो अब अगले सप्ताह पूरी करने की कोशिश रहेगी आपकी फरमाइश। और कई मैसेज हमारे पास हैं अभी जो फरमाइश पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी फरमाइश अगले सप्ताह पूरी करने की कोशिश रहेगा, क्योंकि आज समय जो है समाप्ति से कुछ आगे निकल रहे हैं। एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा, तो आप सभी से निवेदन है कि आप नाराज ना हो, अगले सप्ताह बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे मंडे को। आप लोग टाइम से मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम भी टाइम से आपकी फरमाइश को सुना सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो रमझिम 94.4 FM, जो हमें सच कहता है सुना दिल से। नमस्कार।
1: आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे सारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और मूवी नेम है चोरी चोरी चुपके चुपके और गाने की बोल है दीवाना है ये मन। तो चलिए सुनते हैं आप सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी आप सभी हमारे साथ सुन रहे थे एक प्यारा सा सॉन्ग दीवाना है ये मन, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, और मैसेज करने वाले हैं लखन कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँच हुई है, तो आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि सन्यासी रंजन जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम बा भारती जी, हम हूँ आविल वानी, हमरो हाजिरी लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लगाऊंगी लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? हम लोग ठीक है मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल भी ठीक है और हम भी ठीक है। यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो दी, मैं राकेश भारती उपाध्याय बक्सर से, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, सॉन्ग को प्ले करूँगी। और उससे पहले यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: सफर वही तक है जहाँ तक तुम हो, सफर वही तक है जहाँ तक तुम हो, नजर वही तक है जहाँ तक तुम हो, देखा हजारों फूल गुलशन में खिलते हुए, खुशबू वही तक है जहाँ तक तुम हो। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: मैं कमरान नसीब बकरी सुल्तान से, कहती है
0: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, और लिस्नर को सलाम बोलता हूँ।
0: जी जी,
1: हम लोग कैसे हैं? मैं बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ, फिलहाल दिल्ली में हूँ। नाश्ता हो गया आपका?
0: जी मेरा नाश्ता हो गया है
1: जी। और मौसम कैसा था? चलो बहुत धूप है
0: इधर, तो मौसम अभी फिलहाल ठीक ही है, उतना भी खराब नहीं है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: मौसम बढ़िया, बढ़िया
0: जी, सब कोई अच्छे हैं, रेडियो रिमझिम के सारे टीम भी अच्छे हैं।
1: अच्छा रहना चाहिए, सही, आप लोग हम लोग का मनोरंजन करते रहिए लोग।
0: जी जी
1: अच्छा है।
0: बस आप सब की दुआ बनी रहे।
1: वो तो बनी रहे भाई, आप लोग का साथ है भाई, सब बनी रहेगी। मैं सोचा कि आज मैं शुरुआत में कॉल करूं तो आज मैं देखे लग भी लिया।
0: जी जी
1: मेरा है
0: okay.
1: बड़ी है मस्त।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है, दम सुनवाना है। सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले आपको आयशा सदीना सफा सिद्दीकी मोहम्मद अली अख्तरी गुड़िया परमीन और हदीना साजिया आयशा अफरीन गुलाम हुसैन समीर आलम दिलीप राम भापकर बरजू मुकेश उत्तम सोनी देवेंद्र उमर शंकर और जितने लोग सुन रहे हैं हजरा रोशनी कुमारी नित्य कुदवा अनिशा भारती, सभी को सुना दीजिएगा। और अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: और
1: फिर मैं जुड़ूंगा एक हफ्ता बाद।
0: जी जी बिल्कुल, तो चलिए आपके हाँ हाँ रूल्स जिनको मालूम है वो अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है। जी जी नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो डियर भारती जी, सुपर सॉन्ग है और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। जितेंद्र कुमार बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते जी, संजय कुमार प्रजापति पूर्वी चंपारण से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी सुनवाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को पूरी फरमाइश को पूरी की जाएगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि संदीप कुमार, देव भरत, श्री राम विलेज हसनपुरा से जुड़े हैं, हसनपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है इरशाद मास्टर जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि मैडम जी तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त सुपर सॉन्ग से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और काफ़ी खूबसूरत गाना था कमरान जी की तरफ से भी हम लोग सुन रहे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग कब बजेगा, सबसे पीछे क्या, तो नहीं ऐसा नहीं है, आपसे पहले एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी तो पहले उसे प्ले करेंगे, एक दो गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि पूर्वजों के सारे शौक चले गए खानदानी ज़मीन बचाने में, और आजकल के युवा बोल रहा है उठवाए लेम हितवा के दिन में, थाना बावे हमरा जमीने में। बात तो बिल्कुल सही है, और आजकल का माहौल भी ऐसा ही हो ही रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, हम हूँ आ गए नहीं, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, सूर्यभान सिंह विश्वधरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं दिल पे तेरा प्यार का पैगाम लिख दूं गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। पर उससे पहले जो कि मेरे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी जो कि लिख रहे थे कि नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवार हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और मैडम जी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा एक तेरा जिक्र था, जो मेरी सदाओं में रहा, कितने लोगों से मेरे गहरे रिश्ते थे, मगर तेरा चेहरा ही सिर्फ मेरी दुआओं में रहा। और इनकी तरफ से एक खूबसूरत सी लाइन पहुंची हुई है, लिख रहे हैं भारती जी मेरा गाना प्ले कर दीजिए, तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे। और प्रेम प्रतिज्ञा मूवी का गाना है, और गाने की बोल है प्यार कभी कम नहीं करना, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रबजिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे प्रेम प्रतिज्ञा मूवी का गाना प्यार कभी कम नहीं करना, और काफ़ी बढ़िया गाना था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं मुकेश जी की, भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं वाह बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं मैम प्लीज़ मेरा जल्दी से गाना बजा दीजिए प्लीज़ मैम, और मैसेज करने वाली हैं अफरीन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने आपके गाने को गुरुवार को प्ले किया था इसीलिए मैं आज आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती, फिर अगले गुरुवार को प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्ते, मैं भी आपके शो से जुड़ गया हूँ, और कैसी हैं आप कभी आप भी याद कर लीजिए। जी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, और मुझे ज़रूर बताइए आप कौन हैं और कहाँ से हैं, और आपको भी मेरा नमस्ते। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं सुनील यादव दुबई से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं अंदाज फिल्म का, और गाने की बोल है अखियां मिला के अखियों से और गाना सुनवा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:48 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, सुन रहा हूं। और मुझे भी गाना सुनवा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। पर उससे पहले एक दो गाने हमारे पास पहुंचे हुए हैं, उसे प्ले करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, मैं डॉक्टर संतोष जैसल बस्तरा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर से, और मेरे हॉस्पिटल का नाम माँ पूजावंती हॉस्पिटल बस्तरा राजा से, और एक गाना सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है सुनील यादव जी की तरफ से, और काफ़ी खूबसूरत गाना हम लोगों ने सुना इनके तरफ से, और लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सूर्यभान सिंह विशुंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और लिख रहे हैं अंदाज फिल्म का बहुत सुंदर गीत, बहुत अच्छा लगा, और लिख रहे हैं मेरा गाना कब बजेगा। तो जी, आपके भी गाने की फरमाइश पूरी करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी, और लिख रहे हैं कि मोहब्बत करने वालों की तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है। और क्या बात है, काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सुजीत कुमार, प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर से और उत्तर प्रदेश के से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहा है कि आपका शुभ चिंतक प्रोफाइल चेक कर लीजिए, थोड़ी सी अलग है। तो इतना तो मुझे याद नहीं कि आप कौन हैं और यहाँ किस किस की प्रोफाइल चेक कर रही हूँ, और आप खुद ही बता दे तो अच्छा रहेगा कि आप कौन हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, संजय कुमार प्रजापति पूर्वी चंपारण से, और गाना सुनना है और गाने की बोल है ए हवा मेरे संग संग चल, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। और लिख रहे हैं दोस्तों के साथ सुनना है तरवेज़ आलम और शमशेर खान के साथ, रिमझिम परिवार के भी सांस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, ए हवा मेरे संग संग चल। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच गया है संजय कुमार प्रजापति जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद जी। और जो कि हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी चौवन से जुड़ गए हैं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैम आज रिकॉर्डिंग भेजू क्या, तो आपके गाने को मैंने वेनेसडे को प्ले किया था, तो आप वेनेसडे को ही भेजिए। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि संदीप कुमार जुड़े हुए हैं, देव भरत श्री राम, और गाना सुनना चाहते हैं विलेज हसनपुर से जुड़े हुए हैं लो, और गाने की बोल है सैयारा सॉन्ग, और मुझे सैयारा सॉन्ग सुनना है, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करूँगी रेडियो रुमझिम 90.4 FM में। इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए

छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सूर्यभान सिंह जी की, ऐ हवा मेरे संग संग चल, बहुत सुंदर गीत, दिल को बहुत भाया। और लिख रहे हैं कि मैम, मैं यह कार्यक्रम बेंगलोर से सुन रहा हूँ और मैं वहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी हूँ। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गोविंद कुमार जी मैसेज करने वाले हैं, लिख रहे हैं कि सजाकर माथे पर बिंदिया और मुझे पागल ना कीजिए, हम पहले ही होश गवा बैठे हैं, आप अपनी आंखों में काजल लगाया ना कीजिए। क्या बात है, और क्या बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहा है कि हेलो भारती जी, गुड आफ्टरनून, का हाल बा, थोड़ा सा लेट हो गई हा, माफ़ी मांगत चाहत है नहीं आपसे। और हमारा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और का हाल बादी ज़रूर बताएं। तो जी मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, जिसको जब टाइम मिल रहा है तब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कोई है जिसकी इस दिल को इंतज़ार है, ख्यालों में बस उसी का ख्याल है, खुशियाँ मैं सारी उस पर लुटा दूँ, चाहत में उसकी मैं खुद को मिटा दूँ, कब आएगा वो जिसका इस दिल को इंतज़ार है। ओहो क्या बात है, और क्या लाइन है। और मैसेज करने वाले हैं भारती जी, गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, आई एम प्रेजेंट दिलीप राम, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ था मुकिंदर कुमार कुशवाहा, जो कि बंजारी के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं, शीशा चाहे टूट भी जाए लेकिन दिल ना किसी का टूट ना पाए, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इस गाने को एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:14, 1:15 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को एक बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहा है कि नैन रिचार्ज पॉइंट शिवराजपुर से मुझे भी गाना सुनना है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, मैं मनीष कुमार घर

0: मैं मनीष कुमार घर के पास से आज जरा खुशी गणेश जी से पूछी गणेश जी से कि किसको ख्यालों में डूबे हैं कि टाइम नहीं मिला।
1: ओहो,
0: तो आपकी मैसेज को गणेश जी ने सुन लिया है, ज़रूर जवाब देंगे आपको। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हाय नमस्ते मैम, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से जुड़ा हूँ और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार कहिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं पाजी यूपी चौवन से जुड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है। लिख रहे हैं कि बिन बात के ही रूठने की आदत है, बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहें, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे टूटने की आदत है। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, हम भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं साबिर अंसारी जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि चिंटू तू पागल है क्या, मिंटू क्यों क्या हुआ, चिंटू ये तूने मेरी कैसी फ़ोटो खींच दी, लड़की वालों को भेजनी थी इसमें पीछे कुत्ता आ गया, मिंटू हाँ तो भाई बता दियो उन्हें कि तू आगे वाला है। और काफ़ी मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी दिल्ली से। दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, शुरू से सुन रहा हूँ, टाइम की कमी के कारण मैसेज नहीं कर पा रहा था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कोई बात नहीं, टाइम की कमी कभी कभी हो ही जाती है और काम भी तो होते हैं अपने। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गणेश जी लिख रहे हैं, फरमाइश भेज सकते हैं क्या, बताइए भारती जी कि एक हफ्ता मेरा कम्प्लीट हो गया क्या। तो जी नहीं, आपकी एक हफ्ते का भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुरभान सिंह विसुंदरी घुरवाल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि गीत सुनना चाहते हैं। लिख रहे हैं, मेरा गीत है दिल पर तेरा प्यार का पैगाम लिख दूं। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश आई हुई है और काफ़ी बढ़िया गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे सूर्यभान सिंह जी की तरफ से एक गाना, और गाने के बोलते दिल पे तेरा प्यार का पैगाम लिख दो, और काफी खूबसूरत सा गाना था। और इसी के साथ यहाँ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, मनीष जी के साथ मैं

नवंबर में शादी है भारती जी, 2 महीने पहले बता रहे हैं आपको, तो किसकी शादी है ज़रूर बताइएगा और कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा है हमारे पास, लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हजरा सूरत से, और मेरी भी हाजिर लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे इनकी तरफ से लाइन पहुँची हुई है, लिख रही हैं कि शादी क्या है, शादी क्या है, बिजली के 2 तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश और गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। और बात तो बिल्कुल आपकी एकदम 100% सही है। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि राकेश भारती उपाध्याय बक्सर से जुड़े हुए हैं और काफ़ी खफा है हमसे, लिख रहे हैं नहीं अब नहीं, 14 साल पुराना रिश्ता आप लोग तोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके भी गाने को प्ले करेंगे, आपका मैसेज मेरे से ही खो गया था कुछ देर पहले। और अभी चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करूंगी। और इनकी तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा गाना आया हुआ है और दिल का रिश्ता मूवी का गाना है और गाने की बोल है दैया दैया दैया रे, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, तो आपके लिए इस गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा। यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-72291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो 72776-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच चुका है, जो कि अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे दैया दैया दैया रे, और उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं भारती मैम गीत सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, और मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा जी आप आएँ तो बाहर आएँ, नमस्कार करते हैं आपको। और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा जी, तो आपको भी नमस्ते। और बहुत ही मज़ेदार लाइन सेंड किए हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, मज़ेदार जोक्स, भगवान क्या चाहिए तुझे, भक्त एक नौकरी, पैसे से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा, भगवान तथा अस्तु। बेचारा भक्त बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी कार्ड है, बेचारा भक्त अब बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और वह एसी में सोता रहता है। बहुत ही मज़ेदार लाइन थी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा जी क्या हाल है, तो बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, और एक और मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से, और इन्होंने मैसेज किया है कि क्या गाना है मैम, मैम हूँ तो मैं इस ज़माने का ही लड़का, पर गाना ना जाने क्यों 80 के ही अच्छे लगता है, मुझे ऐसा क्यों।

तो मैं आपको बता दूं कि 80 और 90s के गाने में मीनिंग होते थे, और अभी के गाने में तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बस म्यूजिक के सहारे ही लोग सुनते हैं। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी, फालतू का घमंड मत पालना। अंग्रेजों को भी अपने कपड़ों का बहुत घमंड था। फालतू का घमंड मत पालना, अंग्रेजों को भी अपने कपड़ों का बहुत घमंड था। और आज उनके कपड़े बैंड बजाने वाले पहनते हैं। तो सही बात है। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं पिंटू भाई मीना बाजार से, और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने के बोल है देहिया बा अनमोल, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग गाना सुन रहे थे लोग टुट्टू जी की तरफ से। और अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचे हुआ जो कि लिख रहे हैं, मैसेज पहुँचे हुआ जो कि दिख रहे हैं, हाय भारती दीदी, मैं करिश्मा कुमारी पीपर नारायण से, का हाल बा दीदी? तो हाल तो ठीक बा, अपन बताएं कि रहुआ कैसन बानी। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचे हुआ जो कि लिख रहे हैं, दो बात आपसे की तो दिल का दर्द खो गया, दो बात आपसे की तो दिल का दर्द खो गया, लोगों ने हमसे पूछा तुमको क्या हो गया, हम तो बस यूं ही मुस्कुरा कर रह गए, हम तो बस यूं ही मुस्कुरा कर रह गए, अब कैसे कहें हमें भी किसी से प्यार हो गया। मनोरमा जी, आप आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था। और मैसेज करने वाला है धनेश कुमार मिश्रा जी, और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? तो जी मैं भी बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं।

और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नया रिचार्ज पॉइंट शिवराजपुर से, मुझे भी गाना सुनना है। गाने का बोल है तू निंदो की रानी, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए प्ले करते हैं आपके गाने को और इंजॉय करते हैं 90.4 FM पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा गाना लगा, और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार पांडे लंदन से।

साथ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दुनिया वालों का भी अजीब दस्तूर है, दुनिया वालों का अजीब दस्तूर है, बेवफा मोहब्बत

बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखे हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं, दुनिया वालों का भी अजीब दस्तूर है, बेवफाई महबूब से मिलती है और बेवफा मोहब्बत बन जाती है। बहुत ही अच्छा लाइन था। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा मैडम जी आपके शो से जुड़ गया हूँ और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपका आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, हुलिया इतना ख़राब है मित्र, 10 फोटो लेने के बाद उसी वक्त आर डिलीट कर देता हूँ और 2 बाद में कर देता हूँ। बहुत ही काफ़ी मज़ेदार लाइन थी

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
0: कैसे हैं मैम?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी सब कोई बढ़िया है। तो आज कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: मैम गाना आपको सुना दीजिए, खुशियों का दिन आया है, बिन मांगे सब कुछ पाया है, बेटा डर से माता ने बुलाया।
1: एक बार और बता दीजिए।
0: खुशियों का दिन आया है, बिन मांगे सब कुछ पाया है, बेटा प्लीज का गाना है।
1: और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: और उमा शंकर भाई हैं, रानी जी हैं, बहन सत्यम जी बहन हैं, और बहुत ऐसे सारे हैं जो सभी सुनेंगे और आप भी सुनिएगा। और सन्यासी बाबा रंजन सर चाहते थे थोड़ा एक अच्छा सा शहर बना कर थोड़ा भेजिए मैसेज में।
1: जी जी जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: जी, एंजॉय करिए अपने गाने को।

अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाओ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, खुशियों का दिन आया है, बेहद लाजवाब झकास सॉन्ग।

और मैसेज करने वाला है राघव जी, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखे हुए जो कि लिख रहे हैं, एहसास बहुत होगा जब छोड़ के जाएंगे, एहसास बहुत होगा जब छोड़ के जाएंगे, रोएंगे बहुत मगर आंसू नहीं आएंगे, जब साथ कोई ना दे तो आवाज़ हमें देना, जब साथ कोई ना दे तो आवाज़ हमें देना, आसमान पर होंगे भी तो लौट कर आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था।

और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है मनोरमा मैम, नमस्ते। अंग्रेजों के कपड़े जो बैंड बैंड वाले पहनते हैं, यह बात जिसने बताई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बात बहुत अच्छी लगी। और मैसेज करने वाले हैं सूर्यभान सिंह व सुंदरी धरोवल सुंदरबद उत्तर प्रदेश से। तो ये मैसेज पहुंचा हुआ था सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और उन्हीं की तरफ से मैसेज पहुंचा

मज़ेदार जोक्स हैं और भेजने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इन्होंने लिखा है कि मज़ेदार जोक्स, अफसर आप नौसेना में भर्ती होने आए हैं और आपको तैरना नहीं आता। पप्पू, तो क्या हुआ सर, जो आयु सेना में जाते हैं उन्हें उड़ना थोड़ी आता है। अफसर का अंतिम संस्कार चल रहा है।

बहुत ही मजेदार लाइन थी। और मैसेज करने वाले थे धनिश कुमार मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार लाइन थी जो कि अच्छा लगा। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, शक्ल के हिसाब से डीपी लगाया करो कन्याओं, शक्ल के हिसाब से डीपी लगाया करो कन्याओं, धोखा हो जाता है। डीपी रवीना टंटन का और शक्ल रानी मुखर्जी का। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो आपका भी बहुत ही मज़ेदार लाइन थी। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिए मनोरमा दीदी। और मैसेज करने वाले हैं मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी, तो बिना देरी के चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय कीजिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ

0: नवीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिपझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रही हैं करिश्मा जी, आपको गाना कैसा लगा मनोरमा दी बताइएगा जरूर, और सुपर स्ट्रॉन्ग मनोरमा जी और भारती जी, जी आपकी गाने तो काफ़ी खूबसूरत थी। और यहाँ पे सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि करिश्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत बजाया है अपने, मेरा और ये मेरा फेवरेट गीत है। और यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान बचाए इन तीनों से, डॉक्टर, पुलिस और वकील से, और ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, मस्त शो चल रहा है जी मैम, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और इसी के साथ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून मैम, आई एम टुनटुन यादव फ्रॉम सूरत गुजरात, रेडियो रिमझिम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इन रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, और मैसेज करने वाले हैं रेहान खान, और इनकी तरफ से एक प्यारी सी लाइन पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि जिसकी खामोशी में भी शोर वो आवाज़ हो तुम, जिसके प्रयास में भी स्वर्णिम सफलता हो वो नाज हो तुम, क्योंकि गुमनामी के सफ़र को तय करने वाले नहीं, भीड़ में भी अलग दिखने वाले अंदाज हो तुम। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है रेहान जी की तरफ से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है नील कमल जी का, और गाने की बोल है मांगी प्यार राजा जी, और मैसेज करने वाले हैं राजू जी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले न्यूज़ की तरफ, और हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर न्यूज़ के बाद। और यहाँ पे जो कि हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और सभी के मैसेज शामिल करूँगी न्यूज़ के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए इस गाने को राजू जी की तरफ से।

0: members iconic singer-composer Zubeen Garg on his death anniversary and 28th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
3: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
6: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
7: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
7: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
12: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
15: भरोसे वाले से लेंगे।
14: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
15: और कीमत भी।
14: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
16: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
17: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
18: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
19: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
18: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
20: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
18: कॉल करें 85070-32042 पे।
21: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

0: तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है राघव जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि आंखों की बेनूरी अच्छी नहीं होती, दोस्तों की दूरी अच्छी नहीं होती, कभी कभी मिल भी लिया करो यार, हम हर समय एसएमएस से मस्ती पूरी नहीं होती। और बात तो बिल्कुल आपकी सही है और काफ़ी बढ़िया लाइन पहुंची हुई है राघव जी की तरफ से। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं का हो उत्तम भाई का हाल चाल वाह हो। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ हमारे पास लिख रहे हैं कि वेलकम बैक। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप जी, दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हमारे पास लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, प्रमोद कुमार साहू न्यायपारा विरई से, और लीला साहू विमलेश्वरी साहू कोपेडी ही से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं दोपहर न्यूज के बाद फिर से हाजिरी हो जाए, हाजिर हो गए हैं और दोपहर न्यूज के बाद फिर से हाजिर हो गए हैं। अब दोपहर न्यूज के बाद झकास झकास गाना बजाइए। और कल जैसे करिश्मा के गाना था वह सही गाना बजाइए दोपहर न्यूज के बाद। तो जी अगर वैसे गाने यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश आएंगी तो जरूर प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास लिख रहे हैं मुन्ना खान जुड़े हुए हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, लिख तो नहीं रहे हैं इनके तरफ से, वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं सत्यनारायण पटेल बनारस के सजोई गांव का रहने वाला हूँ, मुझे भी एक गाना सुनना है और मेरे सभी मित्रगण गाना सुनना चाहते हैं, प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। गाने के बोल है कहवा गई लड़कियाँ तनी हमके बता दें,

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, कहवा गई लड़कैया हो तनी हमके बताओ, और काफ़ी बढ़िया गाना है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ मैडम जी, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और कोटा से कपिल विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। पर उससे पहले जो कि एक दो गाने पहुँचे हुए हैं हमारे पास, फरमाइश उसे प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, उमा शंकर भैया नमस्ते, एकदम मस्त हूँ। और साहब आप कैसे हैं, आपका कॉल नहीं लग रहा है भैया, थोड़ा चेक कीजिएगा। और उमा शंकर जी के लिए उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुझे एक गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके भी गाने को पूरा करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, फरमाइश करने वाले को बहुत बहुत ही धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। और फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, और चलिए इनके फीडबैक मैसेज को, मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, तो इनके फीडबैक मैसेज को शामिल करते हैं।
1: मैडम गीत सुन के मज़ा आ गया, मेरा नाम अलजीत सिंह है, मैं देवभूमि। मैम जी गीत सुन के मज़ा आ गया, मेरा नाम अंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
0: और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ में फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा सुन के आप सभी के मैसेज को। यहाँ पे मेरे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और काफ़ी मज़ेदार जोक पहुंची हुई है एक और, और लिख रहे हैं कि कल मैंने अपनी साली से कहा 150 रुपये की ज़रूरत है, भेज दोगी। साली ने 170 रुपए भेजे और बोले गिलास और चखना भी तो चाहिए होगा, भगवान ऐसी साली सबको दे। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी आपका? तो मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए सानिया सैफी जी कैसी हैं? और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लो जी आ गई फिर से एक गणेश जी, सुन लीजिएगा भोजपुरी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और आप बोल रहे थे कि मुझे भी सुनना है इस समय अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश, तो चलिए पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनते हैं, राजा जी के दिलवा टूट गए। तो इन्जॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम।

0: ना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84-710-30-992 या 90-765-65-750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और यहाँ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:07 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सलीम अंसारी तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्कार आप सभी को, और मैं सोनू कुमार दुबई से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी एक गाना सुनना है भोजपुरी में, और गाने के नाम पहुँचे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करूँगी, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी एक गाना प्ले कर दीजिएगा मनोरमा जी, भारती मैम और आप दोनों को आदाब। और नौशाद लालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, तो आपके भी गाने को प्ले करूंगी।

उत्तम भाई, फोन तो ठीक बाहो, 4 बजे फोन करूंगा। गाय को चारा लगा देने के बाद बकरिया भी घूमती रहेगी और हम लोग बात भी करते रहेंगे। बिरजू भाई को भी आज फोन लगाना है। उमा शंकर सिंह जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है उत्तम सोनी जी के लिए। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कपिल विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है आंख है भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे मूवी तुमसे अच्छा कौन है का गाना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाना बजाने के लिए। और मैसेज पहुँचा हुआ है कपिल विश्वकर्मा जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि संजय यादव दुबई से जुड़े हैं, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मैम जी, गाना तो बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं दिल को छू जाने वाला सॉन्ग है, बेहद खूबसूरत, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार जी, आप सभी को आज की शुरुआत बहुत अच्छे गाने के साथ हुई थी और उसी का असर कि अभी तक जितने भी गाने की फरमाइश आई है वह बहुत ही अच्छी है। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अच्छे से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। आज के प्रोग्राम में श्रोताओं ने कुछ ऐसे गाने की फरमाइश किए हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, और उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और लिख रहे हैं कि प्यार में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आज जिससे प्यार करते हैं वह आपके सामने बैठा हो, आप उसी से बात करते रहे हो और फिर भी आपके दिल को सुकून ना हो और दिल ही दिल में उसके जाने का गम आपको सता रहा हो, तो समझ जाना चाहिए कि आपने उसे बहुत शिद्दत से प्यार किया है। तो जी आपकी तो बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि जिक्र एक बेवफा और सित मगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर किया। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सोनू सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि राघव जी की तरफ से यहाँ समोसा पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं आइए खाने। तो जी बिल्कुल आप खाइए और हम ऐसे ही

आपने पूछ लिया तो मैंने भी खा लिया, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हेलो गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैसेज करने वाली हैं शाहजहाँ विलेज मुगल बरीचा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी, लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार सभी को, मैं सोनू कुमार और मुझे भी एक गाना सुनना है। और इनकी तरफ से एक चुटकुला पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि पति ऊँचे स्ट्रॉल पर चढ़कर सफाई करते हुए ज़ोर ज़ोर से गार पत्नी ऊंचे स्टॉल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। पति की पीठ पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से। और काफ़ी मज़ेदार जो पहुंची हुई है, और इनकी तरफ से गाने की जो कि फरमाइश पहुंची हुई है, खेसारी लाल जी का गाना है और सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है केस तेरी रानी लड़ेगी, और खेसारी लाल यादव का गाना है। और चलिए बिना देरी के इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 90.4 FM।

0: अब करे के बाद
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझम 90.4 FM में, और समय हो गया हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:25 और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और मैसेज पहुंचा हुआ है सोनू कुमार जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं, और यहां पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही हैं मैं शाहजहान विलेज मोगल बरीचा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि धनेश जी की तरफ से है, मज़ेदार जोक, और लिख रहे हैं कि गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। मैंने भी जवाब दिया तो हम भी माता पिता बन जाए, तो ब्लॉक कर दिया और चुड़ैल। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश जी, और यहाँ पे हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, लिख रहे हैं भारती मैम, आपके पढ़ने की स्पीड से लगता है कि किसी दिन मुझे लिटिल हार्ट अटैक ना आ जाए। कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि शायद मैंने ही गलत लिख दिया है होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक को थोड़ा धीरे पढ़िए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सऊदी अरब से। तो जी, आपका तो रिक्वेस्ट, आपका फीडबैक, आपका मैसेज इतना बड़ा था कि मुझे इसे जल्दी जल्दी शामिल करना पड़ा, और आपके मैसेज को पढ़ने में ही पूरा टाइम निकल जाता और किसी के गाने को प्ले करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसीलिए सोचे कि जल्दी से शामिल कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, आपके लिए अपना स्पीड थोड़ा कम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और मैसेज करने वाले हैं सलीम अंसारी, तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, और गाना सुनना चाहते हैं हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए सभी के साथ इस गाने को एंजॉय करते हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना और दर्द भरा गीत भी है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि विक्रम चौहान नवादा बिहार से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि उमा शंकर जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और फीडबैक मैसेज उमा शंकर जी की तरफ से था। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन बाबा नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं बाबा? यहाँ आपका मिसाइल का थोड़ा कमी महसूस हो रहा है, किस ख्यालों में डूबे हुए हैं? तो अगर सन्यासी रंजन जी सुन रहे होंगे तो ज़रूर आपकी बातों का जवाब देंगे। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पे मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसी हैं? मैं भी जुड़ गया हूँ और गाना सुना दीजिएगा, और गाने की बोल पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी, प्रेम मधेसिया पर रौनक कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और भारती जी वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप? टाइम नहीं मिल रहा है मैसेज करूं, टाइम से लेट हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी के साथ साथ अपना काम भी ज़रूरी है। और जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि नौसाद लालगंज से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है तोहरा जैसन हैंडसम हीरो, खेसारी लाल जी का गाना है और ब्यूटी पांडे का। तो चलिए गाना प्ले करते हैं आप सभी के लिए और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ पे कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, छपरा सलखुआ से बोल रहे हैं।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: जी बढ़िया है, हमको एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: राजन का घर फिल्म का नाम है।
0: और गाने के बोल?
1: गाने का बोल साजन का घर में कोई भी सुना दीजिएगा तो बढ़िया होगा।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: जी पहले आपको, हम तो पहला आपका सोचा है।
0: जी थैंक यू।
1: पहले पहले आपके पास हम कॉल किया है।
0: अच्छा जी।
1: जी आप मनोरमा जी है ना?
0: हाँ जी।
1: आप मनोरमा जी है?
0: जी जी
1: जी। देखिए आपको, आपका प्रोग्राम हम बहुत सुनते हैं, डेली सुनते हैं मोबाइल से।
0: चलिए इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको।
1: जी जी, आपको भी धन्यवाद। गाना मैंने कॉल में लगा कि आज
0: आज ही बजेगा।
1: कितने बजे से?
0: अभी जस्ट
1: बजा दीजिए एकदम दीदी।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी प्ले कर दीजिए
0: जी। एंजॉय करिए अपने गाने को। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के।

अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे, मिलेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और यहाँ पर मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, शादी विवाह एक जुआ की तरह है, अगर दाव सही लग गए, शादी विवाह एक जुआ की तरह है, अगर दाव सही लग गया तो जीवन स्वर्ग, यदि दाव गलत लग गया तो नरक के सारे द्वार खुल जाते हैं। अच्छा तो ये बात है। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, मज़ा आ गया। और मैसेज करने वाले हैं कपिल विश्वकर्मा जी। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाव नाइस सॉन्ग। और हमारे तरफ और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, अभी अभी मेरे फ्रेंड जुड़े हैं आपसे अनिल जोधपुर को, हमारे तरफ से नमस्कार बोल दीजिएगा। जी तो बिल्कुल। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर सिंह जी। और इन्होंने मैसेज किया है, कहा हो सन्यासी रंजन बाबा, जय माता की, रउआ कहाँ बानी जी, कुछ पता नहीं थे चल रहा बा। उमा शंकर सिंह, उत्तम सोनी, देवेंद्र सिंह और कमरान, और इनकी तरफ फीडबैक पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, कैसे हैं,

और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी और लिख रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार बोल दीजिएगा। और इनके गाने के बोल हैं, गाना सुनना चाहते हैं कहाँ जाइबा राजा नजरिया लड़ाई के, भोजपुरी मूवी का। तो फिर चलिए प्ले करते हैं आपके गाने, बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिंगिंग 90.4 FM पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पर मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मनोरमा जी। मनोरमा जी हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं बता दूँ आपको कि हम दोनों ही मिलकर शो चला रहे हैं आप लोगों के साथ। और एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, अनिल जी का लाजवाब फरमाइश सुनाने को मिला, दिल खुश हो गया। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है उमा शंकर जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है बहुत ही अच्छा लगा गीत भोजपुरी में। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय राज मोबाइल सर्विस बिशनपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो जनाब कैसे हैं आप, मैं शाहजहाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम मुझे भी गाना सुनना है गोर बदन पर या कुर्ती कसी कसी। और मैसेज करने वाले हैं विक्रम चौहान नवादा बिहार से, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करिए अपने गाने को 90.4 FM पे।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना गोरे बदन पे यार और सुल्तान मूवी का गाना है और इसी के साथ यहाँ गाना सुन रहे थे हम लोग विक्रम चौहान जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया हमारे पास जो कि लिख रहा है कि आप दोनों से अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, बाय बाय। और अनिल जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, लिख रहा है बड़े ही अजीब हैं ये ज़िंदगी के रास्ते, बड़े ही अजीब हैं ये ज़िंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। और इसी के साथ बाय बाय, तो आपको भी बाय बाय और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ है बाय बाय। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी और साबिर अंसारी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर जी की, शाहजहाँ जी को नमस्कार है, आपका भी कुछ पता नहीं चल रहा है और आप तो कार्यक्रम के समाप्त होने पर हवा में उड़ते उड़ते पहुंच रही हैं, क्या आधी तो नहीं ना आया था। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ राघव जी की तरफ से भी बाय बाय का मैसेज पहुँच गया है। तो चलिए बिना देरी किए शो को समाप्त करेंगे। तो श्रोताओं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। और यहाँ पे अभी भी मैसेज पहुँच रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज के लिए बाय बाय मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं सुनील यादव दुबई से, और सानिया सैफी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रही हैं बाय बाय, और लिख रही हैं कि किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसे शख्स ढूँढना जो समर्पण का हकदार हो। और काफ़ी बढ़िया लाइन है और मीनिंगफुल लाइन है। और इसी के साथ यहाँ विनोद कुमार चौहान लिख रहे हैं बाय बाय मैडम फिर मिलेंगे और गुड बाय। तो जी आपको भी बाय बाय, और उमा शंकर जी की तरफ से भी बाय बाय का मैसेज पहुँच गया है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना खेसारी लाल जी का और शिल्पी राज जी का प्ले करते हुए आप सभी से लूंगी विदा। आप सभी इंजॉय कीजिए ये प्यारे से गाने को, और गाने की बोल है पागले पगले बना दे लूं।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास।

0: सबसे भरोसेमंद नाम, स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88869।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-648-652।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0975-6575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-7-14-86-165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: मैम धन्यवाद। आई 2 मिनट लेट हो गया मैम, इतना 3 मिनट।
1: हाँ हाँ, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया,
2: बात करते हुए 2 मिनट लेट हो गया हमको भी। चलिए पास लग गया।
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया, मतलब बताइए भी हुई तो? एक नंबर में लग गया मेरा और भाषण से बात हो गया।
1: एक नंबर में लगाते तो है लेकिन कॉल आपका।
2: ये शिकायत हम करने वाले थे लेकिन अभी आप ही बता दी।
1: पीछे चला जाता है वो कंप्यूटर में एडिट करने के लिए जब डालते हैं उनको।
2: लेकिन मैम हम आपको एक बात बता दें, एक दिन मनोरमा मैम कोशिश करके बजाई थी एक नंबर में। हम आप बोले थे उस दिन भी कि मैम कोशिश कीजिएगा, इतना खुशी मिलता है, जितना खुशी मिलता है ना, आप एक बार श्रोता बनकर मतलब कॉल कीजिएगा तो पता चलेगा मिलता है जब एक नंबर में बजता है।
1: बहुत खुशी मिलता है, ये तो बात है। श्रोता बन के कॉल या मैसेज करें तो इसके लिए तो मुझे सोनू जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही हम आप लोगों के बीच जुड़ पाएंगे।
2: जी मैम, उनका तो रात में शो चलता है ना। ऐसे शर्मा जी जो मतलब है रेडियो रंजन का, उसका ये शो का उसे नहीं लिखा है।
1: एसएस शर्मा इसका नहीं लिखा है,
2: उसका लिखा है हेलो माय चॉइस का, नहीं लिखा है।
1: हेलो माय चॉइस का नंबर नहीं लिखा है,
2: नंबर या कुछ भी नहीं लिखा है, उसे टाइमिंग कुछ भी नहीं लिखा है।
1: ठीक है, इसको देख के ध्यान से ठीक कर दिया जाएगा,
2: क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं तो जानते हैं कब का कौन शो है। हमको रेडियो सुनते हुए 6 साल हो गया,
1: बढ़िया,
2: और जुड़ते हुए यही 2-3 साल हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, ना इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम बोलते हैं जो इसे लगाव है
1: वो कहीं नहीं।
2: हाँ, और इसमें सुनने का मजा ही कुछ और है।
1: ये तो है,
2: नेट के द्वारा तो 1 मिनट में सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग मंगा करके।
1: जी जी, वो तो,
2: लेकिन रेडियो पर सुनने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैम आज हमें 11 सा गाना सुनाइए और कोशिश कीजिएगा 1 नंबर बजे, और कोशिश कीजिएगा कि मेरा खुशी दुगुना हो जाए।
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार मेरा कॉल जो है ये कल बजेगा।
2: हाँ वो तो हमको मालूम है, मनोरमा जी का कॉल बाकी है।
1: जी
2: मैम, तो कोशिश कीजिएगा फुल।
1: जी जी,
2: नहीं तो फिर से शिकायत रहेगी सोमवार को आपसे।
1: जी बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि आपकी फर्स्ट कॉल ही बजे।
2: जी मैम, तो आज मुझे 11 सा गाना जिगर मूवी सुनाइए।
1: ओके, गाने की बोल बता दीजिए।
2: जी, गाने का बोल है तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया।
1: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सुनवाने वाली तो थी लेकिन अभी है नहीं, तो सभी दोस्तों को सुनवाएंगे और आपको सभी आरजे को।
1: चलिए बढ़िया है।
2: और कोई भी सॉन्ग है इसमें दिल को मतलब दिल पे लेके नहीं सुनते हैं, बस एंजॉय के लिए सुनते हैं।
1: जी, आपके द्वारा गाना फरमाइश किया जो रहता है वो काफी अच्छा आता है।
2: हमको बहुत ज्यादा मतलब मूवी से ज्यादा गाना से लगाव है, और रेडियो रिंगटोन का सभी शो मतलब सुनते हैं।
1: बढ़िया है,
2: इतना लगाव है उतना किसी को इंसान तो नहीं होगा, उतना तो रेडियो से लगाव है। चलिए कोशिश कीजिएगा मैम, इसके लिए एडवांस धन्यवाद।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
2: ओके मैम, बाय बाय
1: बाय।

0: नमस्कार कृष्ण बानी जी
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम 90.4 एफएम में
0: जी। हम तो गाने का जैसे लगावत लगावत जाके अब राम जी की सारे बड़े सारे के सारे जा रहे
1: हैं।
0: हम कौन है केवरा? हाँ अब मैंने बात वहाँ से पड़े के रहते हैं। तो लास्ट से कॉल चला था जी।
1: हाँ हाँ लास्ट से कॉल चला था।
0: और क्या हाल चल रहा
1: जी? बानी
0: खाना पीना बढ़िया से कॉफी आदमी जाने।
1: हाँ खाना पीना तो खा पी के आवे एकदम।
0: हाँ एक बात प्रोग्राम करे थे प्रोग्राम ऐसे लेट हो जाते थे ना।
1: हाँ ऐसे लेट हो जाता।
0: मनोरमा जी नीचे
1: के बानी
0: तो घर परिवार को चलिए वो गाना बारे मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको बाहों से जुदा होना चाहिए
1: जी। और गाना की
0: सबसे पहले तो अपने के मनोरमा जी के सोनू भाई धरन, सजीर भाई धरन, कमरान भाई धरन, जाटा भाई धरन, सुमित राजन कुशवाहा जी धरन,
1: चलिए फिर ठीक बात। अब और गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक बात है तो नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार।
1: रेडियो रूम जिम में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम तक पूछिए ना कोई नहीं।
1: दिलीप
0: जी, दिलीप राम
1: जी
0: नमस्कार।
2: मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, इतना गुजारिश है तुमसे सोने से पहले मुझे याद रखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: मैं भी अच्छा हूँ। बोला की आज लगाऊँ कॉल, रिकॉर्डेड होगा, जल्दी लग गया मेरा।
13: जी जी
12: डॉक्टर हो गया।
13: हाँ हाँ नाश्ता करके आते हैं।
12: हाँ मैं नाश्ता तो कर जाना ही करेगा। मेरा भी नाश्ता तो हो गया है, छत पे आए हैं, धूप है, हल्का हल्का हवा चल रहा है। अच्छा
13: हाँ, वैसे ही मौसम है।
12: हाँ उधर बारिश हो रही तो नहीं हो रहा था, बोला था बाहर से फोन किया था, बोला बारिश नहीं हो रहा था। देखो समझिए अक्टूबर का कुछ गर्मी पड़ेगा।
13: अभी तो शीत जैसा मौसम बन रहा है, शीत वगैरह सुबह में है।
12: जी जी जी समझिए कि नवंबर से तो ठंडा चालू हो जाता है, अक्टूबर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो आप बहुत त्योहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ।
13: जी जी अब तो दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद दिवाली, छठ पर भी लगातार आने ही वाले हैं।
12: जी जी एकदम लगातार है। दिवाली में तो बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाली में सामान खरीदने जाए छुट्टी मिलता है,
13: ये तो है।
12: धनतेरस में सबसे बड़ी बात है टाइम। अगर इंसान अगर काम करने लगा तो बस टाइम का बहुत मायने रखा। सबसे बड़ी बात है कि टाइम रहता तो कहीं कोई आएगा कुछ करेगा, और ऐसे और कोई काम नहीं करो टाइम में टाइम है तो कोई बात ही नहीं है। और सब सुनाइए बढ़िया है
13: जी? और सब बढ़िया है,
12: घर परिवार
13: जी? सब घर परिवार में भी सही है।
12: तो ये बताइए ये चल रहा है उसमें कॉल वाला सिस्टम नहीं रखे आपके? हटा दिए क्या?
13: नहीं है, कॉल तो कॉल आ रहा था।
12: मैंने कॉल किया था तो रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत कॉल किया, हमको लगा सर हट गया था कॉल वाला,
13: तो
12: हो रहा था
13: नहीं।
12: ये अंताक्षरी शुरू करिए ना, तो आप आइए नहीं है दो आज है आपका सोचना है संडे को।
13: इसके लिए तो हम लोग नहीं कर सकते वो सर,
12: बोलना पड़ेगा। अच्छा संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है ना?
13: हाँ संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है 2 बजे से 5 बजे तक।
12: हाँ हाँ वही ना सोचा, बताइए कितना लंबा दिन के प्रोग्राम 12 बजे से लेकर टाइम बढ़ गया ना? 3 तक का टाइम से का।
13: हाँ इसका टाइमिंग है 12 से 4
12: हो गया ना? बताइए लंबा गिफ्टी न्यूज चलता है तो आप लोग खाना वाला खाते होंगे?
13: हाँ।
12: तो अच्छा लगा आपसे बात करके, गाना हमको सुना दीजिए। गाना नहीं आज कवाली सुना,
13: कवाली बता दीजिए कौन सा?
12: अपने ही रंग में रंग में शादी कवाली है
13: जी जी। और कवाली सुनवाना भी है
12: जी जी जी। सबसे पहले आपको और आयशा सबनम सिद्दीकी सदीना सब्बा सिद्दीकी अख्तरी अहमद अली दुर्गा परमी अनिमा साजिया आयशा अफरी भास्कर वर्जी ईश्वर सोनी मुकेश उमर शंकर दिवेंद्र दिलीप राम शाहजहाँ रुखसार सजदा अंसारी कुमारी निशा सुखनवा निशा भारती और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा, फिर मंडे को मिलेंगे।
13: नमस्कार। नमस्कार रेडियो रिमिशन में कॉल किए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बोलिए क्या हुआ
2: जी? अभी तो बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
1: बोल रही हूँ, गाना सुनना है।
2: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
2: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है
1: आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाली सभी श्रोता को?
3: मैम आप मनोरमा मैम बोल रही हैं?
2: नहीं,
3: तो सोमवार को रिकॉर्डिंग मनोरमा मैम की थी। नहीं,
2: इसी सोमवार को।
3: हाँ, इसी पिछले बार सोमवार को।
2: हाँ, मनोरमा जी रिकॉर्ड की थी।
3: तो मेरी भतीजी कॉल की थी और छोटी वाली तो बोल रही थी कि मेरा गाना मैम नहीं बजाई है, तो पढ़ने चली गई है। बोल रही थी कि कमेंट कर दीजिएगा बुआ।
2: अच्छा जी, सोमवार को जो गाना उनका रिकॉर्ड की थी कॉल, वो मैसेज जो बाकी कॉल है वो आज बजेगा, तो हो सकता है उसी में हो।
3: वही बोल रही थी, हम लोग उससे रिगा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा गाना मैम नहीं बजाई है, तो रो रही थी। तो बोल रही थी कि हम गोपालगंज जाएंगे ना तो मैम को मारेंगे, दूंगे तुम चिंती हो। बोल रही थी।
2: नहीं, वो कॉल है उसमें बच जाएगा, सोमवार का जो कॉल है कुछ इनके पास बचा हुआ है।
3: ठीक है, खाना खा लिए हैं?
2: हाँ, हम तो खाना खा लिए हैं।
3: ठीक है, बजा दीजिएगा गाना।
2: बिल्कुल, तो गाना सही करते हैं।
3: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है सर, बताइए।
5: जी हम सब से ठीक है। दूसरा बता दीजिए।
6: बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
5: और गाने की बोल
6: अपना पसंद से बजा दिए पवन सिंह की आवाज में।
5: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाएंगे? जी
6: हमारा
5: प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमशिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक बने रहो, बताए रहो
0: ठीक बने।
1: सबका हाल चल
0: रहा ठीक है?
1: हम लोग ठीक
0: बात चल मिल कर
1: ना तो एकदम फैमिली चालू से ही है।
0: अच्छा, तो हम जब से लगा तो लागत का है ना?
1: लागत ऐसे नहीं है कि कॉल एकदम लगातार आज बिल्कुल आ रहा हुआ है। अभी तक टाइम पे ऊपर जाता हुए।
0: हाँ, हम कने कहीं लेट चालू भाई आप कड़ाई कोई लगा था ना तो मैं लाग गई।
1: अबे बंद करे जात रहा नहीं है रिकॉर्डिंग। चले आगे भरोसे उस वेला
0: चलो लिखर लग मैंने बात हो जाना। गलती नहीं उठा ना बेटा।
1: ना ना जल्दी से बता दी कौन सा गाना प्ले करे।
0: गाना है बजा दी प्यार के लिए चार पल कम नहीं है।
1: गाना क्योंकि सुनवाऊं के बाद
0: और सुने सबके सुनी जितना ऑलरेडी सुनता
1: चली रहा। और गाना प्ले कर सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: मेरा नाम राव गुनाथ है।
6: जी क्या हाल चाल है आपका?
7: बहुत बढ़िया मैम, वो गाना चाहिए मैं, मेरा महबूब आया है, बारो फूल बरसाओ।
6: हाँ हाँ ओके, तो आपका ले सकते हैं।

0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: मुझे एक गाना सुनना है।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: सड़क पिक्चर का।
1: हेलो
0: जी सर,
1: कौन सा गाना सुनना है उसमें का? सड़क मूवी का बता दो।
0: जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सबसे पहले आपको और जितने सुनने वाले हैं।
1: ओके जी, तो आपका ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो, तुम सुनना।
0: ठीक, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
7: हेलो, क्रिसमस बोलता हूँ।
6: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
7: ठीक है बाबू।
6: अच्छा, ठीक बना?
7: घर ठीक बनो?
6: हाँ हाँ, हमने के सबके ठीक बानी।
7: ठीक है,
6: बता दीजिए कौन सा
7: कव्वाली सुना दो।
6: कव्वाली कौन सा कव्वाली सुना दी?
7: निकाह फिल्म सुना दी।
6: अच्छा, निकाह मूवी के गाना क्यों के सुना हूँ के
7: बाद सुनते
6: जी जी, तो चले फिर ठीक बात और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
7: खुश रहो।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। बिल्कुल बता दीजिए कौन सा सॉन्ग और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सभी दोस्तों को।
1: वैसे आपका नाम?
0: राजू कुमार मधु शर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: जी नमस्ते मैडम।
9: नमस्ते,
8: विकास कुमार बोल रहे हैं उनका फिर से।
9: क्या हाल चल रहा?
8: बढ़िया।
9: क्या होता अभी?
8: आप कैसन बनी मैडम?
9: हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसन बनी?
8: हमने को बढ़िया बनी सर।
9: तब भोजपुरी बोले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
8: नहीं दिक्कत नहीं के, हमने की आदत हट जाए हिंदी बोले के, घर पर भी जाये ले तो कबू काल हिंदी बोल दीजिए। तो घर के गाँव का लैको फेको हुआ सन तो कहे सन की चले तू हिंदी बोल रहा है, दिल्ली रहता है तो।
9: नाश्ता पानी हो गया?
8: हाँ नाश्ता पानी हो गया मैडम।
9: हाथ कैसे बा? हाथ में चोट लगा रहे है ना?
8: हाँ सही हो, सही है मैडम।
9: चलिए बढ़िया,
8: विश्वकर्मा जी के कृपा से सही हो गई। बढ़िया, और बताइए? और बताइए मैडम,
9: और सब तो ठीक बा?
8: और वो मोनार्मा जी
9: ठीक बानी?
8: अच्छा चलिए बढ़िया है, काम बटे।
9: तो बता दे आज कौन सा गाना सुने?
8: आज गाना सुनेंगे वो निरहुआ का नहीं है, सिनुरमा कैसे जाई बने, वो ऐसे कुछ गाना है वो, लेकिन याद नहीं है ना मैडम। वो जो बम्बई वाली एक नहीं रहती, वो घर जाती है, वो उसके लिए उसके ट्रैक्टर पर बैठा करके निरहुआ, वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा करके ले जाता है उसको छोड़ने के लिए।
9: देखना तो पड़ेगा, याद मुझे भी नहीं आ रहा है।
8: याद नहीं आ रहा है?
9: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: ये आपको आपको सुनवाना है, और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको, ये भोजपुरी वाले तो आप लोग को भी सुनवाएंगे, और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको, और सोनी मैडम को भी सुनवाएंगे, और सब मैडम आप, आपके घर में मम्मी पापा आपके सब सही है ना?
9: जी मेरे घर में तो सब सही है।
8: अच्छा सब कोई है अभी
9: मेरे घर में?
8: दादी उदी दादा उदा सब है?
9: हाँ सब कोई है।
8: चलिए बढ़िया है, सब कोई सही है ना?
9: हाँ सब कोई सही है।
8: चलिए सही है, सही होना चाहिए। भगवान करे बढ़िया से रहे, एकदम बढ़िया तरक्की करे, एकदम आप लोग का प्रोग्राम चलते रहे, चाहिए हम लोग बात ही करते रहे, इससे अच्छा और क्या है।
9: हाँ, ये बात सही है।
8: दुनिया से क्या ले जाना है मैडम?
9: जी
8: बस थोड़ी सी बात हो जाता है, एंजॉय हो जाता है, गाना वाना भी फरमाइश कर लेते हैं। तो मेरे घर में जानते हैं रेडियो का जगह पर वो होम थिएटर है, बड़ी वाली 6-7 हजार का है वो होम थिएटर। जब मैं घर गया था रक्षाबंधन में तो मेरे पापा जी नहीं रहते थे, तो हम जब बजाते थे जब पापा जी घर में आ जाते थे तो नहीं बजाते थे,
9: पापा जी से डर लगता है
8: वो गुस्सा कर लेते थे, बोलते थे कि बहुत पिटाई होगा तो ये सब बजाओगे, तो हम बोले कि चल चलिए ठीक है नहीं बजाएंगे, अब बोलते हैं तो नहीं बजाएंगे। जब कहीं चले जाते थे तो थोड़ा बेफाई सॉन्ग वोंग लगा करके सुनते थे। चलिए बढ़िया है। तो कल विश्वकर्मा पूजा था जानते हैं?
9: विश्वकर्मा पूजा था, सबके यहाँ पूजा हुआ।
8: कल पूजा हो जाए, कल पूजा हो जाए करवाए, मंदिर है अपने कंपनी में, केला वोला से वो लाए थे, लड्डू वड्डू वही पूजा पाठ सुबह में करवाए थे, पूजा वूजा करवा करके उसके बाद फिर अपने ड्यूटी में लग गए। घर में भी मेरा आटा वाला मोटर वाली मशीन है, आटा वाटा पीसते हैं पापा जी
9: है।
8: और वो पानी चलाने वाला मशीन भी है, सब बड़ी बाड़ी भी है। हाँ सब ये सब आप लोग का कृपा से, भगवान का कृपा से,
9: ये सब भगवान की कृपा है।
8: कमा उमा करके हम भी कर दिया है कुछ,
9: ये सब होना चाहिए। ये सामान बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है, अपना काम अपना भी काम हो जाता है खुद।
8: हाँ दो पैसा आ भी जाएगा। 800-900 रुपए डेली का आटा पीस करके आ जाता है।
9: तो पापा जी का खाता चल रहा है।
8: हाँ पापा जी पीते हैं डेली का डेली, कभी कभी 700 कभी 800 इससे करके आ जाता है।
9: बढ़िया
8: है, और सब बढ़िया है ना मैडम?
9: जी जी और सब बढ़िया है
8: जी।
9: तो फिर चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
8: जी नमस्ते मैम।
9: नमस्ते।

0: है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, नाम बता सकते हैं?
1: और भाषी जी बोल रहे
0: हैं,
1: वहाँ मौसम कैसा है आपका?
0: मेरे यहाँ का तो हल्का हल्का बस बादल छाया हुआ है और हल्का धूप है।
1: हम तो पहला बार कॉल लगा है, मेरा आपका पास नया है हम।
0: जी, आपका नाम बता सकते हैं?
1: मेरा नाम प्राणनाथ दुबे, तोरा से बोल रहे हैं, हमारा सानी गांव है।
0: तो क्या हाल चाल?
1: बस हम आपका रेगुलर सुनने वाला है, रेगुलर सुनते हैं आपका। एक्चुअली में हम रहते हैं कलकत्ता में, हम कलकत्ता में ही आपको प्रोग्राम सुनते हैं दिन रात। जब मौका मिलता है तब आपका हम रेडियो इंजन सुनते
0: हैं। सब तो बढ़िया है।
1: और यहाँ मौसम है बारिश मौसम है, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो बता।
0: आपके यहाँ बारिश हो रही है अभी?
1: हाँ, यहाँ पर कलकत्ता में अभी बारिश हो रही है।
0: अभी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अभी हमको वही सुना दीजिए, इससे बरसा पानी बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो हिसाब से गाना। और हमारे जितने श्रोता है उनको हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे। और मेरे घर के मेरे लोग है, रिश्ता है, मैं है, मेरी मम्मी है, सबको सुनाना चाहेंगे, मेरी बहन लोग है।
0: आपको गाना
1: ओके मैडम, ओके, थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
8: कैसे मिचा?
7: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
8: हमारे ठीक है, खाना खा लिए?
7: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए?
8: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
7: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
8: हाँ, जुमा है।
7: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
8: गाना अपना पसंद से सुनना है।
7: अपने से कोई भी?
8: हिंदी
7: गाना आज आप नहीं बताइएगा,
8: अपना पसंद से सुना दीजिए।
7: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
8: मेरा भाई बता रहा है
7: तो बता दीजिए।
9: दिल जले का गाना।
7: और दिल जले का कौन सा गाना?
9: शाम है दूंगा।
7: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
9: आपको और बहन हेलो सभी को।
7: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
9: ठीक है।
7: वैसे आपका नाम?
9: अरमान आलम।
7: जी, तो
9: कब तक सुनाइएगा मैम?
7: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
9: ठीक।
7: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो जी,
1: हेलो, नमस्ते
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
1: मैम,
0: एफएम
1: कैसी हैं आप?
0: में। नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसी
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है? हेलो,
0: हैं? हेलो, हाँ,
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल, बताइए। अच्छा
1: मनीषा कुमारी प्रयास सुंदर से।
0: जी, हाँ,
1: अभी
0: क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: शांति है ना, ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनेगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की गोजा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
1: मैम गाना मालूम चल गया ना
0: हाँ, चुप हो जा, हुआ से हुआ।
1: जी मैम?
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दीजिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आप बता दीजिए।
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: हम एक लाइन में आधा आधा जा दे रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा ली है ना? चलिए
0: हम खा के आते हैं।
1: तभी है,
0: ओके, तो
1: आप
0: गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनवाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल,
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दोस्तों को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अरे वाह इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
8: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 9.4 FM में।
10: नमस्कार दीदी।
11: नमस्कार।
10: दिन भी मेरा गला रिकॉर्ड हुआ है, नहीं सुनाई गए दीदी।
11: जी जी, आपका एक कॉल बचा हुआ है उसको सुना दिया जाएगा।
10: जी जी जी, तो सुना दीजिएगा। आज दिल वाले फिल्म का जीता था जिसके लिए मरता था।
11: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
10: हाँ, हिमेश कुमार, ऋतिराज कुमार, पंकज कुमार, रेणु देवी, सपना कुमारी।
11: ओके, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 92.4 एफएम में।
1: जी मैं मन्ना बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो ठीक है, पर मेरा गाना आप ही नहीं बजाए।
0: आपका गाना बजा है?
1: बजा है
0: हाँ, कल ही तो बजा।
1: कल बजा है मेरा गाना? नहीं बजा है।
0: कल भी बजा है?
1: मैं परसों दिन भी सुने, कल भी सुने, आज भी,
0: कल ही
1: आज भी सुन रहे थे, तो उसमें कोई गाना ही नहीं आपको मिला ही नहीं।
0: आपका कॉल मैं कल ही बना के बजा दी हूँ।
1: बजा दिए हैं?
0: हाँ
1: चलिए तो ठीक है, तो बजा दिए तो हो सकता है कि हम कोई ख्याल में बिसर गए हो इधर उधर,
0: जी, मैं
1: यही होगा।
0: बजाई भी हूँ और मेरे रिकॉर्ड में भी है। हाँ
1: चलिए, आपको बता रहे हैं तो आपका बात को हमको आना ही पड़ेगा, या हमसे कोई मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हो दूसरी जगह, या रेडियो ऑफ हो गया हो, या जो भी हो प्रॉब्लम कोई आया हो, तो मैं बच गया तो मैडम को कोई बात ही नहीं। आज भी कोई गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तो बता दीजिए आज कौन सा सुनना है? आज कौन सा?
1: संडे का मौसम आ रहा है, ठंडा वाला संडे का मौसम वाला कौन सा गाना रहेगा?
0: ठंडी के मौसम वाला गाना
1: ये तो आप गाना बहुत बजाती हैं।
0: कोशिश तो करते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने को बजाओ।
1: हाँ, ठंडा ठंडा का मौसम आ रहा है तो उसमें कौन गाना बजना चाहिए बताइए, हम तो उसको बताते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, महेंद्र कपूर का गाना है।
0: हाँ, एक और है टाइप गाना, मीठी मीठी सर्दी है ऐसे करके कुछ गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है टाइप।
1: तो बजाइए ना वही, तो ये तो गाना तो बहुत बार सुने आपका संचार वही गाना बजाइए मैडम, आपका चॉइस का मतलब ठंडे वाला तो हो तो अच्छा रहेगा ना। अब देख रहा है कि बहुत शीत गिर रहा है सुबह में,
0: मीठी मीठी सर्दी आ रही है और ये गाना भी वही सेम।
1: हाँ बजाइए मैडम, आपकी तो चॉइस रहेगा तो उसी गानों को आप बजा दीजिए, हम भी उसी में खुश हैं। हम तो वो तो हमको गाना नहीं मिल रहा था तो वो हमको याद आ गया महेंद्र कपूर का, वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए।
0: आपको ये आपको कल और परसों ये दोनों से भी सुनने को मिलेगा क्योंकि आज मनोरमा जी का जो कॉल बचा हुआ है वो बजेगा।
1: हाँ चलिए, आप बोल देते हम तो संतोष हो गया, और बचा हुआ कॉल में वो भी सुनेंगे हम, मेरा गाना वो आया है या नहीं आया है।
0: बिल्कुल सुन लीजिएगा।
1: हाँ आज सुनेंगे, आज तो वो दिल थाम कर सुनेंगे कि मनोरमा जी बजाई है या ना बजाई। सबूत तो खड़ा हो जाएगा ना, तो जब भी मनोरमा जी से बात होगा तो उनको हम बोलेंगे।
0: ओके जी,
1: लेकिन आप भी ख्याल रखती हैं, हर कंज्यूमर का बात को ख्याल रखती हैं भाभी जी।
0: नहीं बजा है तो कोशिश तो करनी ही है, बजानी ही है।
1: हाँ लेकिन हम मैं भी देख रहे हैं ना, एक आदमी पूछ रहा था आपसे कि आप हमको पहचानती हैं, तो आप बताए कि हाँ हम पहचान रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं
0: जी,
1: है ना। तो हाँ, तो इससे हमको पता ये चला कि आप हर कंज्यूमर जो भी कॉल करता है उसको आप पहचानती है कि फलाने जगह का है, फलाने जगह रहता है ना, तो ये आवाज से आप पहचानती हो, इतना तो सही है ना कि आप पहचान जाती है। हम कहाँ कर रहने वाले हैं मैडम?
0: पूरा से।
1: अरे वाह याद कर लिए आप। चलिए मैडम, तो अच्छी बात है, आप बताइए वो गाना।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 92.4 FM।
1: ओके थैंक यू,
0: वेलकम।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: कहाँ हो? अरे मैंने कहा भाई रजनी कहाँ हो?
1: हद हो गई शराफत की। मैं तार सप्तक में अलाप रहा हूँ और यहाँ कोई दाद देने वाला ही नहीं। पता नहीं ये माँ बेटे दोनों कहाँ अंतर्धान हो गए हैं।
0: कहाँ हो तुम जरा बोलो, यहाँ हम याद करते हैं।
2: बस बस अपनी ये बेसुरी अलाप बंद करो, नहीं तो
1: क्या मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। यही कहना चाहती हो ना?
2: जी नहीं।
1: तो फिर
2: आपकी दादी अम्मा,
1: उनको क्या हुआ?
2: उनको तो हुआ कुछ नहीं, मगर कहीं उन्होंने ये सुन लिया कि तुम मेरा नाम लेकर इस तरह जोर जोर से पुकार रहे थे, तो हम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा।
1: मगर दादी अम्मा है कहाँ?
2: पूजा घर में।
1: तब फिर उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। एक तो पूजा का घर यहाँ से कुछ दूर हटकर है और दूसरे वो इतनी जोर जोर से भजन आरती करती हैं कि उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अरे हम लोगों की क्या सुनेंगी?
2: बस बस हम मतलब की बात पर सीधे उतर आओ, चीख चीख कर मेरा नहाना भी दूभर कर दे।
1: I am very sorry। तो जाइए और नहा कर आइए, क्योंकि कहा गया है कि तन की सफाई और सुंदरता दूर से दिख जाती है और मन की।
2: बस उपदेश बन, सिर्फ मतलब की बात बोलो, मतलब की, क्योंकि काम ज्यादा है और समय।
1: बात नंबर एक, ये टीटू कहाँ गया है? सुबह से नहीं दिख रहा। बात नंबर दो, सब्जी में क्या क्या लाना है?
2: बस इतने से बात को महाभारत बना दिया। उत्तर नंबर एक।

0: यही बात तो हमें पसंद है तुम्हारी कि बात ये बात पर हाय हाय मचाना शुरू कर देती हो।
1: अगर ये बात मुझ में आई भी होगी तो इस घर में आने के बाद।
0: अरे डर तो आओ।
1: अरे देखो देखो दादी अम्मा की आरती खत्म हो रही है।
0: अच्छा अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ बाद
2: में। बहू
1: जी दादी अम्मा
3: ले ये प्रसाद
1: लाइए।
3: अरे हाथ और नीचे रख नहीं तो छू जाएगा।
1: मैं नहा धो चुकी हूँ माँ जी।
3: भाजी क्या मुकेश भाजी ले आया है?
1: कहूँ माँ जी सुने भाजी अभी तो वो बाजार गए हैं बाजार।
3: हाय हाय गजब हो गया।
1: क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी?
3: भाजी है जब देखो मुझे परेशान किया करता है। टीटू
1: क्या किया है टीटू ने?
3: अरे इस लड़के ने हमें इतना तंग कर दिया है कि अब घर छोड़कर तीरथ ही जाने का मन करने लगा।
1: हाँ ने दोस्त पाजी को पीट पीट कर उसे सीधा न कर दिया तो कहना। मगर उसने किया क्या है माँ जी इतना तो बता दो।
3: अरे क्या नहीं किया वो मेरी पूरी चाबियों का गुच्छा उठा ले गया है। कहीं उसने बक्से खोल डाले तो।
1: अरे दादी अम्मा वो क्या जाने कि ताला कैसे खुलता है। हाँ आपकी चाबी इधर उधर फेंक दे सो दूसरी बात है।
3: अरे तुम क्या जानो कि चीजें संभाल कर कैसे रखी जाती हैं? एक बित्ता भर का लड़का तो संभाल कर रख नहीं सकती। जब देखो तब कोई ना कोई उपद्रव किया करता है। अब देखो मेरी चाबी का गुच्छा लेकर ही चला गया कहीं।
1: माँ जी कहीं आप पूजा घर में तो नहीं छोड़ रहे?
3: क्या मैं सखिया गई हूँ? अरे मुझे सब याद रहता है। अरे हाँ राम चाबी कहाँ गई?
1: अरे दादी अम्मा ये धोती के खूंट में बांधकर आपने कमर में ये क्या चीज खास रखी है?
3: ये तो सचमुच चाबी है।
1: दादी अम्मा चाबी खोसे कमर में खोजती घूमे शहर में बेकार में हाय हाय मचा कर सारा घर सर पर उठा लिया और उस नादान बच्चे को झूठा इल्जाम लगाया।
3: मैंने पूछा बहू पहले तूने क्यों नहीं बताया कि चाबी कमर में खोस कर मैंने रखी है। मैं खूब जानती हूँ ये सब तूने मुझे परेशान करने के लिए किया।
1: अरे दादी अम्मा कुछ तो भगवान से डरो क्यों झूठा इल्जाम मेरे सर पर मढ़ रही हो।
0: कदम रखा नहीं कि हाय हाय किच किच का मैच चालू। मैं जरा सुनूं कि आप लोगों ने ये सारा घर क्यों सर उठा रखा है?
1: दादी अम्मा का कहना है कि उनकी चाबी टीटू उठा के ले गया जबकि
0: घर में है वो पाजी।
1: नहीं
0: आने दो पाजी को एक एक हड्डी पसली एक एक कर दूंगा।
1: मगर क्यों?
0: क्योंकि उसने दादी अम्मा की चाबी को।
1: मुझे तो तरस आता है दादी अम्मा और उनके पोते जी पर।
0: तरस और मुझ पर?
1: जी हाँ चाबी तो दादी अम्मा ने अपनी आंचल में बांधकर कमर में खोस रखी है।
4: तो तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बतला दी?
1: आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। सब्जी क्या लाए हो?
4: आलू और भंटा।
3: ए मुकेश मैंने लाख बार कहा कि जो कुछ तुझे ऐसा वैसा खाना हो तो घर के बाहर खाया कर भलाई अंडा लाने की घर में क्या जरूरत।
0: दादी अम्मा दादी अम्मा तुम भी बीच बीच में शब्दों को यूं घूट जाया करती हो कि बस मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ भंटा और आप सुनती है अंडा।
3: देख ये फिसफिस अपनी जोरों से किया मुझसे जो भी बात कहनी हो जरा साफ साफ कहा समझा कि नहीं?
0: समझ गया दादी अम्मा अच्छी तरह समझ गया।
3: अच्छा तो सुन मेरे लिए दो धोतियाँ थोड़ी सूजी और मेवा ला दे कुछ लड्डू वड्डू बनाकर रख दूँ रास्ते में खाने के लिए।
0: कौन से रास्ते में?
3: अरे मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ।
0: ठीक है ला दूंगा।
3: और सुन रेल का टिकट भी।
0: और आ जाएगा?
3: अरे कौन आ जाएगा मैं जाऊंगी अकेले।
0: ओ फिर घूंटा समझ गया दादी अम्मा समझ गया। आप भी जाएंगी और वो भी अकेले।
3: अच्छा
0: अकेले
3: बोल बहू कहाँ है? बहू
0: रसोई घर में।
3: मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। जाप देखो बहू इधर उधर उड़ी रहती है बस इसीलिए कि बुढ़िया कहीं कोई काम न बता दे है ना।
0: दादी अम्मा आप तो खाम खा नाराज होने लगते।
3: अरे मेरे तो भागी फूटे है ना यही बात। अरे भाग खोटे ना होते तो बचपन में छोड़कर मेरे बहू बेटे स्वर काहे को सिधार जाते। अरे सब सुनने और देखने को पता था यही इसीलिए तो जी रही हूँ।
1: ये क्या हो दादी अम्मा? अरे ये रोना धोना कैसे?
0: तुम ही आ गई हो अब तुम खुद पूछ लो।
1: क्या हुआ माँ जी?
3: अरे बहू बस अब इस घर में दाना पानी उठाई समझो। मैं कल सुबह ही तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी और वहाँ से गुरु जी के आश्रम को। देख अगर कहीं तीर्थ में या गुरु जी के आश्रम में मेरा शरीर छूट जाए तभी मेरे बक्सों को हाथ लगाना इससे पहले नहीं समझी।
1: अरे नहीं दादी अम्मा नहीं अभी तो आप परसों जिएंगी परसों टीटू की शादी ब्याह तो आप ही के हाथों।
3: अरे हमारा क्या है हम तो पके पत्ते हैं।

0: कौन जाने कब डाल से छूट कर गिर जाए।
1: ये क्या महक रहा है? लगता है रसोई घर में कुछ जल रहा है।
0: बहू इसी तरह घर चलेगा?
1: तुम्हें होश नहीं है कि चूल्हे पर तुम क्या चढ़ा कर आई हो और वो कब से जल रहा है?
2: हे ईश्वर किसी तरह तो रहने दे।
1: क्या कहा? जलने दे? अरे समार और गैस क्या फोकट में आती है?
2: दादी मैंने कब कहा कि जलने दो?
1: अच्छा एक तो मुंहतोड़ जवाब देती है और ऊपर से मुझे वो झूठा बना रही है मैं जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। सुना मुकेश? बस बस बहुत हो चुका, अब किस घर में मेरा बसर नहीं होने का। हाँ
3: दादी अम्मा थैंक यू।
1: अरे फेंक कैसे दो? अरे मैं इसी हाथों से मैंने सब सहेजा है, फेंक दो।
3: फिर घूंटा। वाह वाह वाह वाह दादी अम्मा मजा आ गया।
1: कौन आ गया रे?
3: जी वो दादी अम्मा हमारा दोस्त आ गया है। हाँ। मैं चलूं बाजार, वो आपका सामान लाना है।
1: हाँ ठीक है, बाजार जरूर लाना मेरे लिए।
3: मैडम अब तुम गुप्त हो, मैं तो चला बाजार।

0: लो भाई कुछ चाय में तैयार है।
1: हाँ ये चिट्ठी आई है, तुम पढ़ो मैं चाय ला दूँ।
2: मुकेश जी, श्री गुरु की कृपा बनी रहे। आपकी दादी अम्मा यहाँ आश्रम में जिस दिन से आई हैं, उसी क्षण से यहाँ से शांति चल दी। वो तो जानी थी, बेबात ही आश्रम वासियों पर बिगड़ा करती हैं, पुरानी आदत है। कभी कभी तो इस कदर हाय हुल्ला मचा देती हैं कि लगता है कि हम स्वामी जी के आश्रम में ना होकर किसी सब्जी मंडी में खड़े हैं। आजकल स्वामी जी द्वारिका गए, ये अच्छा हो गया। मैंने उन्हें भी इसी आशय का एक पत्र लिख दिया है। अरे मारे गए, वैसे इस उम्र में आपको उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए था। लेकिन कोई रहना चाहे तब ना। बेटे बेटी की चाह लोग इसीलिए करते हैं। आप मेरे पत्र का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आपका दयागिरी। दादी अम्मा को आश्रम से जाकर ले आऊं, पर नहीं नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा।
1: अरे क्या नहीं लाओगे, जरा हमें भी तो बताओ।
0: दादी अम्मा स्वामी जी के आश्रम में पहुंच गई हैं।
1: अच्छा,
0: किसी दयागिरी जी ने पत्र लिखा है कि दादी अम्मा से सारे आश्रम वासी तंग आ गए हैं और मैं उन्हें जाकर वापस ले आऊं।
1: अरे तो नेक काम में देरी कैसे, मैं चटपट आपका सामान तैयार किए देती हूँ, आप सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए।
0: ना ना ना ना ना ना ना, मैं दादी अम्मा को वापस लाकर तुम्हारी सुख शांति को भंग नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं।
1: ईश्वर की सौगंध, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि दादी अम्मा घर से कहीं बाहर जाए। सच पूछो तो जिस दिन से वो गई है उसी दिन से इस घर की हंसी खुशी चहल पहल सब लुट सी गई है। सभी लोग मुंह लटकाए रहते हैं और मेरा टिटू तो हुड़कता है उनके लिए। फिर मत पूछो, न खेलता है न शरारत करता है, तो बुलाकर आधा रह गया है बेचारा। दादी अम्मा की क्या बात थी, उनके रहने से घर भरा भरा सा लगता था। अरे आप सोच क्या रहे हैं?
2: तुम कहती हो तो न जाने मन अंदर से कैसा कैसा होता है। मैं कल सुबह की बजाय आज रात की ही गाड़ी से।
1: मैं अभी अभी आपका सामान ठीक करके खाना तैयार किए देती हूँ। कौन है? हो सकता है कि दादी अम्मा आई हो।
0: अरे भाई दरवाजा खोलो।
1: अरे आप आ गए, दादी अम्मा कहाँ हैं?
0: अरे वो रिक्शे वाले को दीक्षा दे रही हैं। लो लो ये सामान
1: लाइए।
3: दादी अम्मा, अरे जीती रहो बेटा, स्वाद बना रहे। ये ले प्रसाद की थैली।
1: लाइए अम्मा।
3: अरे हाँ साफ है ना, देख इधर उधर मत रखना। मेरा बेटा टीटू कहाँ चला गया? टीटू
1: स्कूल गया है दादी अम्मा। दादी अम्मा अब आप कभी घर से नहीं जाएंगे।
3: बस बस तू बहुत बोलने लगी है, ज्यादा बोलना बहू बेटी के लिए अच्छा नहीं होता। ये ले तेरे लिए सिल्क की साड़ी लाई है, अच्छी है ना? और टीटू के लिए ये खिलौने, कहाँ है मेरा टीटू?
0: अब नहाना धोना नहीं,
3: खोना नहीं, संभाल कर रखना, मुकेश ठीक कहता है।
0: फिर घूंटा। वाह दादी अम्मा वाह।
3: अरे अरे भाई क्यों रहे हो तुम लोग, मेरा टीटू कहाँ है? टीटू।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास। और
5: 52,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 275 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की सूरत और सीरत बदल रही है। मुख्यमंत्री समेत NDA के विधायक और मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। और राज्य में विद्यार्थियों के सुरक्षित परीक्षा सुविधा के लिए सभी जिलों में बनेंगे बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
6: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, आधुनिक ITI और स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से युवाओं की क्षमता को नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है।
6: भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई दी। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा।
5: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है। पटना के अधिवेशन भवन में आज आयोजित 20वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 12 विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 275 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 93 नियुक्तियां आयकर विभाग में हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल नियुक्ति पत्र वितरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तक 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
7: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हैं, केवल रोजगार प्रदान नहीं कर रहे हैं, 12 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये केवल रोजगार नहीं, बल्कि जहां 2 साल लगता था, 18 महीना लगता था, वहां अब 3 महीना, 4 महीने में बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलता है।
5: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की सूरत और सीरत बदल रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी राज्य के बदले स्वरूप की महत्वपूर्ण तस्वीर है। श्री चौधरी ने आज बिहार राज्य महिला आयोग के 25वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार की समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग अपनी स्वर्ण जयंती तक महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकार तथा सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।
8: क्या देश में सबसे ज्यादा कहीं महिला पुलिस बल है, वो बिहार है, जहाँ सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल है। और आगे के दिनों में हम महिला आयोग से ये चाहते हैं, सुझाव से, क्योंकि आयोग का काम है शिकायत तो आप सुने, लेकिन सरकार को सुझाव दें कि महिला कर्मचारी के साथ कैसी व्यवस्था की जाए, जो जन प्रतिनिधि है इनका कैसा ट्रेनिंग हो, और आगे भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनाने का फैक्ट्री महिला आयोग बने, मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ।
5: समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। पटना के ज्ञान भवन में कल से बिहार सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। 29 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में बिहार समेत 15 राज्यों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियां अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरस मेले के माध्यम से जीविका दीदियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है।
9: सरस मेला 2026 का आयोजन ज्ञान भवन में किया जा रहा है और 20 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। राज्य भर के हमारे जो जीविका की दीदियां हैं, जो हुनरमंद है, जिनके हुनर से बने हुए जो सामान है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हम देने जा रहे हैं। जो हमारे पर्यटक स्थल है, बोधगया है, राजगीर है, नालंदा है, पावापुरी है, वैशाली है, केसरिया है, विक्रमशिला है, बक्सर है, जहाँ जहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पर बाजार बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान बनाने के लिए उनके सामान का बिक्री केंद्र भी खोलेंगे, प्रदर्शनी भी होगी।
5: मेले में कुल 135 स्टॉल होंगे, जहां हस्तशिल्प, लोक कला, कलाकृतियों और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। प्रदेश के सभी जिलों की महिला उद्यमी भी इसमें शामिल होंगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना 1 माह का वेतन 2,70,000 रुपए का चेक आज मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया। मुख्यमंत्री ने यह चेक लोक सेवक आवास स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री के सचिव को सौंपा। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी अपने 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सभी NDA नेताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग जमा करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
2: NDA के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने मिलकर CM रिलीफ फंड में सबने अपना वेतन, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबने दिया। सभी NDA के साथियों को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कई ऐसे महत्वपूर्ण साथी हैं जिन्होंने बिहार को सहयोग करने का काम किया है, मैं सबको बधाई। सर,
0: राज्य के 29 जिलों में 29 बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन बनाए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित परीक्षा सुविधा उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने में सुविधा होगी। इस परियोजना पर 330 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सरकार के अनुसार परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परीक्षा भवन में 24 घंटे CCTV निगरानी और रिकॉर्डिंग, फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हम सभी को मिलकर पूरा करना है। श्री चौधरी ने तारामंडल में आज नेशनल इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार की विकास यात्रा में सेवा, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की युवा शक्ति को विकास की ताकत बनाकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण विकास का महत्वपूर्ण आधार है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 357,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी की अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, भभुआ और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। सुपौल जिले की स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। औरंगाबाद जिले में टीबी मरीजों को पोषण सहयोग और अस्पताल में बेहतर प्रतीक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और BRBCL के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 275 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की सूरत और सीरत बदल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत NDA के विधायक और मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। और राज्य में विद्यार्थियों को सुरक्षित परीक्षा सुविधा के लिए सभी जिलों में बनेंगे बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

सिर्फ तुम ही हो हमारे दिल की अमानत, जिंदगी है हमारी तुम्हारी मोहब्बत।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: एक चीज दिखाओ
5: मेरे लिए।
4: हाँ, चालाका बंद कर। ए, मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
5: दूसरी?
4: हाँ,
5: पहली कौन सी?
4: मेरी बेबे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: टक टक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कुल सचिव एक पद, अधीक्षण अभियंता और तकनीकी अधिकारी भी एक एक पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए IIT गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय बाल भवन इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपनिदेशक कार्यक्रम समन्वयन और अनुसंधान, सहायक निदेशक विज्ञान तथा क्यूरेटर म्यूजियम। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए बाल भवन की वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज में प्रतिनियुक्ति आधार पर सीधी भर्ती द्वारा संस्थान के निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं हैं इतिहास सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री, इतिहास सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में किसी भी बड़े एशियाई देश से संबंधित उच्च योग्यता का प्रकाशित अनुसंधान कार्य, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का पढ़ाने और अनुसंधान का अनुभव। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सभी प्रतियां निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के पास रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 हफ्ते के भीतर पहुंच जाने चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपनिदेशक का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद और योग्यता की शर्तों, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.agriwelfare.gov.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हिंदी प्रशिक्षक का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जाना है। वेतन, अनिवार्य योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in/vacancies। रक्षा मंत्रालय में प्रधान सिविलियन स्टाफ अधिकारी स्टोर्स ग्रुप का राजपत्रित के 2 पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और अन्य जानकारियां उपलब्ध हैं इस वेबसाइट पर indianarmy.nic.in तथा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट mod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुनो दिल से
1: जय हिंद सर
2: एट इज हाँ मीट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष
10: विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT।
12: ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
13: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
12: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
13: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
12: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
13: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
12: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
14: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर कोलंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल मुंधेवाड़ी बाले सोलापुर होटगी जंक्शन होटगी एक कैबिन शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
12: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
15: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
12: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
16: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
18: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
17: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
19: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
17: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
12: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
20: I think close to 8 cargo planes have arrived.
21: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
20: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
12: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। दो दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
22: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
22: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
23: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
22: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
22: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
22: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
22: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
24: ठक ठक।
25: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
26: अच्छा मिला ही नहीं।
25: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
26: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
25: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
26: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
27: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
28: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन
0: सैमसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
22: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, 15 दिन में ही आवेदन का निष्पादन करने को जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। न्यायालय में ई फाइलिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों को भी दिया गया विशेष प्रशिक्षण और दुर्गा पूजा पर पुलिस अधीक्षक ने बनाई खास रणनीति। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर अलग अलग समीक्षा बैठक की गई। इसमें एनआईसी कक्ष में डीएम ग्रीवांस सेल की बैठक हुई, जिसमें आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों एवं विशेष रूप से भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित आवेदन एवं शिकायतों का निष्पादन अंचल स्तर पर ही सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदन पत्रों का अधिकतम 15 दिनों के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करते हुए समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान आम नागरिकों को भी बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा जमाबंदी के शुद्धिकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले के नागरिक अपनी जमाबंदी में दर्ज सभी विवरणों की जाँच कर सकते हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अंचल कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर उसका सुधार करा सकते हैं। इस विशेष अभियान

0: होगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दिन को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में अहिंसा, शांति, सद्भाव, सहिष्णुता और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। इस बार प्रशासन की ओर से अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है। गोपालगंज में न्यायालय प्रक्रिया को अत्याधुनिक रूप से संचालित करने के लिए अब सभी मुकदमों की ई फाइलिंग सुनिश्चित की जाएगी। जिले में प्रत्येक दिन होने वाले केस फाइल की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ता गणों को आज विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अधिवक्ता गणों को न्यायाधीश गणों ने बैठक करते हुए प्रत्येक केस को ऑनलाइन करने की जानकारी दी। इस दौरान एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के बहुत सारे अधिवक्ता गण उपस्थित रहे और इस कार्यशाला के माध्यम से ई फाइलिंग करने की जानकारी प्राप्त की गई। इसको लेकर अभिषेक कुमार नोडल पदाधिकारी गोपालगंज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
1: आज माननीय पटना हाई कोर्ट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज के माध्यम से यहां पर ADJ 1, ADJ 2, ADJ 3, ADJ 14, CGMM, ACGM 1 एवं नोडल पदाधिकारी के द्वारा पुस्तकालय बार एसोसिएशन के पुस्तकालय में सारे वकीलों के बीच ई फाइलिंग के जागरूकता के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ पे सारे वकीलों को सिस्टम असिस्टेंट गोपालगंज के द्वारा बतलाया गया कि कैसे वो लोग ई फाइलिंग कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ई फाइलिंग 100% रूप से गोपालगंज में क्रियान्वित हो सके। ई फाइलिंग की सहूलियत के लिए वकीलों के लिए रजिस्ट्रेशन ई सेवा केंद्र का भी गठन, यहाँ पे 4 ई सेवा केंद्र का गठन किया गया है, जहाँ पर वकील जाके अपना रजिस्ट्रेशन एवं ई फाइलिंग करा सकते हैं। और इसी प्रकार हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार 100% ई फाइलिंग कराने का इस गोपालगंज जिला का लक्ष्य, जो कि सफल रूप से हो सके।
0: आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का आयोजन एक निजी मैरिज हॉल में किया गया था। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान साइबर क्राइम और ट्रैफिक मामलों की केस स्टडी पर भी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केस के उद्वेदन और अनुसंधान के आधुनिक तरीकों की भी पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से मामलों के निष्पादन को लेकर प्रशिक्षित किया गया। मौके पर जिले के सभी SDPO, DSP, थाना सर्किल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरे दिन आज इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि अपराध को नियंत्रित करने, शराब तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों की धर पकड़ करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी पुलिसकर्मी टेक्नोलॉजी की जानकारी के साथ ही कानून की जानकारी को रखते हुए भी अपना कार्य करें। इसी को लेकर सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब आने वाले दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर पुलिस ने खास रणनीति के तहत लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग तो दिया ही है, साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा और दीपावली पर पुलिस की तैयारियों के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी देते हुए बताया।
2: तो चूंकि बहुत जल्द ही और शीघ्र ही दुर्गा पूजा आने वाली है, फिर दिवाली का भी टाइम आ रहा है, मार्केट में गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस क्रम में हम लोगों ने शहर के जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और भी जो शहर के अन्य प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सभी से बुला करके कई राउंड की मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद एक कई रूट निर्धारित करे गए, जहाँ देखा गया कि शहर में जो चूँकि मार्केट में गतिविधि बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण एरियाओं से भी और शहर के लोग भी बाहर निकलेंगे और शॉपिंग करने के लिए त्यौहार के समय में लोग आते हैं, तो ऐसे समय में लोगों को सुरक्षा का एहसास हो और किसी तरह की कोई आपराधिक घटना ना हो और पहले से हम लोगों की व्यवस्था रहे, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग शहर में गश्ती के रूट चिन्हित करके विशेष गश्ती दल जो है वो निकाला, स्पेशल पेट्रोलिंग फॉर दी फेस्टिव सीजन निकाली है, जो कि अगले 2 महीने तक संचालित रहेगी। इस पेट्रोलिंग का कार्य होगा कि जो व्यापारी लोग हैं उनकी दुकानों पर हम लोगों ने अटेंडेंस की व्यवस्था उनकी की है कि वो जाएंगे और उनकी दुकानों पर ही जाकर के अपनी अटेंडेंस भी बनाएंगे और व्यापारियों से बातचीत भी करेंगे कि कोई समस्या तो उनको नहीं आ रही है, और साथ ही वहाँ पर दुकानों पर हम लोग उनके अटेंडेंस के लिए QR कोड की भी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही QR कोड भी लगाया जाएगा, ताकि QR कोड के माध्यम से जो स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी है फॉर फेस्टिव सीजन, आप त्यौहार

0: व्यापार को देखते हुए अपराधी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और व्यापारी वर्ग में समाज जनरल कॉमन पब्लिक जो मार्केट में आ रहा है उसमें विश्वास पुलिस के प्रति और अपराधी घटनाओं से उसको संरक्षण महसूस हो, इसके लिए ये पेट्रोलिंग निकाली गई है और QR कोड भी इसमें लगाया जाएगा।
1: इधर थावे मेला में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली में सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के आधार पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेला ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
0: हम लोगों के संज्ञान में एक मामला आया था कि थावे मंदिर में, जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो उसकी जाँच करवाई गई SGPO सदर से, उन्होंने जाँच की। जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इसका जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में भी कुछ कमियां थी और साथ ही जो पार्किंग का ठेकेदार है उसकी टीम है वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर निकलकर होटल होटल के आसपास जाकर के और मुख्य रोड पर सड़क पर आकर भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। तत्काल इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है और एक अभियुक्त को जो कि इस वीडियो में दिख रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया और जो ठेकेदार है उस पर भी FIR दर्ज की गई है और साथ ही इस टेंडर में ही कुछ कमियां थी, उस कमियों के निराकरण के लिए भी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है। बहुत स्पष्ट पार्किंग जगह उन्होंने चिन्हित नहीं हो पाई उस टेंडर में और पार्किंग बनी भी नहीं है, इसलिए भी लोगों का आक्रोश रहता है। तो इन सब आक्रोश को लेकर के हम लोगों ने भी जिला प्राधिकारी को भी सूचित कर दिया है ताकि उस टेंडर में जो कमियां हैं उनका निराकरण हो और ये स्पष्ट पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि चाहे कोई सरकारी आदमी हो, चाहे कोई प्राइवेट हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, अगर वो अवैध वसूली एक रुपए की भी करेगा तो FIR करके जेल भेजा जाएगा। पब्लिक से, आम नागरिक से, मंदिर हो चाहे कोई और जगह हो, कहीं पर भी पार्किंग के नाम पर या अन्य किसी भी बात को सामने रखकर अवैध वसूली की जाएगी तो FIR दर्ज करके इसी तरह जेल भेजा जाएगा। इसमें भी जो ठेकेदार है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियाँ चल रही हैं, बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे मामले हम लोगों के संज्ञान में आए हैं और SDPO को इसमें जाँच दी गई थी, जाँच के बाद कार्रवाई की गई।
1: गोपालगंज सैनिक स्कूल में मेजर जनरल जितेंद्र सिंह विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग झारखंड और बिहार सब एरिया तथा अध्यक्ष लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा हुआ। उनके आगमन से विद्यालय परिसर में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। विद्यालय के कैडेट्स के द्वारा उन्हें भव्य गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने कैडेट्स को अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास एवं सशक्त नेतृत्व के मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कैडेट्स से राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का आह्वान किया। पोषण माह के तहत जिले में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को नजदीकी विद्यालयों का भ्रमण कराया जा रहा है ताकि बच्चों को विद्यालयी वातावरण से परिचित कराने के साथ ही प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए भी प्रेरित किया जा सके। इसी कड़ी में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रंजना कुमारी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आंगनबाड़ी केंद्र कोटवा नोनिया टोली केंद्र संख्या 51 के बच्चों को राजकीय मध्य विद्यालय कोटवा का भ्रमण कराया। श्रम विभाग ने आज छापेमारी करते हुए बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाकर 5 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। धावा दल ने कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। इस दौरान जादोपुर बाजार, बसडीला बाजार और जादोपुर मोड़ स्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की गई। धावा दल ने सूर्या स्वीट एवं चाट हाउस जादोपुर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इसके अलावा बिट्टू मछली दुकान बसडीला बाजार से और दीपक कुमार मछली दुकान बसडीला से भी एक एक बाल श्रमिक और बिरयानी कबाब हाउस जादोपुर मोड़ से भी बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। राज्य सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऐसे पात्र भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान बसेरा का संचालन किया जा रहा है। जिनके पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है, सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वास भूमिहीन परिवार वास भूमि के अधिकार से वंचित ना रहे। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें और अभियान का लाभ उठाएं। आज NIC में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी एवं मद्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े और सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि न्यायालय एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लंबित शराब मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं, जब्त शराब का विनिष्टीकरण करें, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से करें। साथ ही जिन मामलों में शराब की तस्करी या परिवहन के वाहनों का उपयोग हुआ है उन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार अधिग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र भेजें। कुछ समय के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने थानाध्यक्षों से शराब की बरामदगी, दर्ज कांड, जब्त शराब की मात्रा तथा वाहनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली और कहा कि केवल शराब बरामद कर कांड दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया को अंतिम स्तर तक पहुंचाना भी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। सदर अस्पताल में सोशल मीडिया पर अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को करते हुए कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। हाल ही के दिनों में सदर अस्पताल के कई वीडियो वायरल हुए जिसमें अस्पताल की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया। इसको लेकर साइबर थाने में सदर अस्पताल के तरफ से एक शिकायत दर्ज कराया गया है जिसमें जानकी ब्लॉग के नाम से अस्पताल से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर अस्पताल एवं प्रशासन के संबंध में आपत्तिजनक बातें कहने की बात सामने आ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इससे आम जन के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भ्रम एवं नकारात्मक धारणा उत्पन्न होने तथा संस्थान की छवि प्रभावित होने की आशंका है। अस्पताल के उपाधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित वीडियो एवं सोशल मीडिया तथ्यों के परीक्षण तथा नियमानुसार कार्रवाई का पुलिस से अनुरोध किया है। शिकायत की प्रतिलिपि सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। सिरीपुर के बलभद्र परसा गांव के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक के चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। यह साइकिल से जा रहे थे। इसी बीच सिरीपुर के मिसिर बतराहा पुल के पास हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। गोपालगंज शहर के राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 22 में मुन्ना चौधरी के खटाल से स्टेशन रोड तक बनी सड़क जिसमें नाला और सड़क निर्माण के लिए योजना बनाकर पैसा का उठाव किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां जो सीला पट लगा है उस पर नाला युक्त सड़क का निर्माण लिखा हुआ है परंतु धरातल पर सिर्फ सड़क बना है, नाला बना ही नहीं है। इस वजह से यहां हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। इस बारिश में यहां 1 से 2 फीट तक पानी लगा हुआ है। पानी कहीं नहीं निकलने से सड़ रहा है और आसपास के लोगों को महामारी का खतरा सता रहा है। सैकड़ों लोग इस सड़क का रोज इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में बलराम प्रसाद, देवेंद्रनाथ तिवारी, शरण जी सहित दर्जनों परिवार के लोग इस जल जमाव की स्थिति से त्राहिमाम हैं। वहां के लोगों से आज बातचीत की गई तो उसमें अधिवक्ता देवेंद्रनाथ तिवारी ने कहा,
2: मैं देवेंद्रनाथ तिवारी अधिवक्ता वार्ड नंबर 22। हमारे मोहल्ला में मुन्ना चौधरी के खटाल तर से और वहाँ रेलवे स्टेशन किरासन तेल डिपो तक रोड पर ठेहुन भर पानी जमा हुआ है और उस पानी का निकास नहीं है। आए 25 में वह बनाया गया और उसमें बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नाला युक्त, लेकिन नाला कहीं नहीं है, खाली PCC कर दिया गया है। वहाँ पानी का निकास नहीं है, रोड पर ठेहुन भर पानी जमा हुआ है। यात्री जो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं उसका मुख्य सड़क है और हम मोहल्लावासी तो उसमें मने भुगतिए रहे हैं। अब तो महामारी होने की संभावना है क्योंकि पानी जब नहीं निकलेगा और सड़क पर पानी है, हेल करके लोगों को जाना पड़ता है। देख करके उसका कोई निराकरण किया जाए, जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं सवाल सुन रहे हैं।
1: थावे पुलिस ने आज लछवार मेला में शंकर जी के मंदिर के पास छापेमारी करते हुए 110 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी भागवत भारती पिता प्रमानंद भारती लछवार का ही निवासी है। गांजा जैसे मादक पदार्थों को जब्त कर आरोपी पर पुलिस NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, 15 दिन में ही आवेदन का निष्पादन करने को जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। न्यायालय में ई फाइलिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों को भी दिया गया विशेष प्रशिक्षण और दुर्गा पूजा पर पुलिस अधीक्षक ने बनाई खास रणनीति। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
13: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
14: रियाज रेट्रो।
15: मार्च का महीना बोलते ही कैसे पेट में गुड़गुड़, सर में दर्द, नसों में खिंचाव होने लगता है ना? एग्जाम्स का महीना, पोलन से छींक आने का महीना, फाइनेंशियल ईयर एंड का महीना, एंड टैक्स फाइलिंग्स का महीना। ओ, जिस चीज को छोड़कर आप 2 पल राहत की सांस लेने आए थे यहाँ, मैंने वही बात छेड़ दी। ये तो गद्दारी हो गई, बाय गॉड, है ना? मैं आपके साथ रिया एंड माई सिंपथीज। कभी कभार सरकार को यही बोलने का मन करता है ना कि भाई इनकम तू रख ले, टैक्स मुझे दे दे, है ना? पर आज मैंने सोचा आपसे पूछ लूं एक और टैक्स के बारे में। इस बीते साल में आपने जाने अनजाने में एक और टैक्स भी भरा है जो आप हर साल भरते हैं। कभी एडवांस टैक्स भरते हैं तो कभी रेट्रोस्पेक्टिव। जीएसटी या वैट लगे ना लगे अपना बहुत कुछ लग जाता है, और रिटर्न्स आज तक सुने नहीं कि कभी कोई रिटर्न आया हो। हर साल तो क्या, हर पल हर लम्हा हम इमोशनल टैक्स पे करते हैं, और कई बार इसका हमें इल्म भी नहीं होता।

0: एक और लाजवाब केके, किशोर कुमार नहीं पर जब किशोर दा के इनिशियल्स लेकर संगीत की दुनिया में कदम रखोगे तो अपना शगुन तो साथ ही लेकर निकले हो फिर। बट जोक्स अपार्ट, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हिज टैलेंट, ये केके कहाँ खो गया है यार। क्या वॉइस थी, क्या रेंज है और क्या बेहतरीन म्यूजिकल पढ़ाई है गले में। यू नो, इस तालीम की खास कमी नजर आती है अक्सर आजकल। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। साथ डोमिनिक सरेजो, फिल्म हम दिल दे चुके सनम, संगीत इस्माइल दरबार, बोल महबूब।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9939365923।
0: रियाज रेट्रो। लुट गए इमोशनल टैक्स, वो भरपाई जो हम रूह से, जिगर से, खून से करते हैं अपने। जिंदगी जीने का टैक्स, जज्बात उभरने का टैक्स, महसूस करने का टैक्स, रिश्ते निभाने का टैक्स, सपने संजोने का टैक्स, भरोसा करने का टैक्स, दिल या फिर दिमाग के होने का टैक्स, कभी कभी लगता है मानो पैदा होने का टैक्स। मैं आपके साथ रिया, और आज उस एक्सेल शीट से नजर हटाकर, PNL शीट को बंद करके, अकाउंटिंग बुक्स को साइड हटाकर, CA के कॉल को इग्नोर करके, फोन को DND पे डालकर, दो पल ये भी सोच लीजिए बीते साल के बारे में कि कहां कहां कितना इमोशनल टैक्स भरा आपने, रिटर्न्स की कोई गुंजाइश, रिबेट की कोई उम्मीद, और कहीं टैक्स का अमाउंट मूल से ज्यादा तो नहीं निकला। हम सच में ट्रैक नहीं रख पाते अपने इमोशनल टैक्सेस का, और जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, जब बात अपने वेलबींग पर आ जाती है, जब इस टैक्स का असर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर दिखने लगता है, तब जाके हम हिसाब करने बैठते हैं। पर जिस चीज का कोई बही खाता रखा ही नहीं, उसका अब क्या हिसाब लगाना। अब तो तिजोरी खाली है और जितना संभाल के रखा था सारे खर्चों के बाद वो टैक्स में निकल गया है ना। नहीं समझे, एनालिजी सुनने में तो अच्छी लग रही है, मुस्कान भी आ गई चेहरे पर हल्की सी एक दो बार अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे सोच सोच कर, है ना। बट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। साथ में सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और टैक्स भरने के बाद, अब वो भी एक साथ भरेंगे ना तो चुभेगा कम।

फ्रेजाइल मेल वल्नरेबिलिटी जिसमें मुकेश जी एक्सेल करते थे। बाहरों ने मेरा चमन लूटकर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया? क्या लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत रोशन 1966 की फिल्म देवर। और देखिए कैसे 6-8 साल में ही माहौल पूरा बदल चुका था। हम शायद तब तक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तरफ पहला कदम रख चुके थे, क्योंकि देवर के गीत से पहले जो गीत सुनाया मैंने वो था अर्ली 70s के ब्लॉकबस्टर मेरे जीवन साथी से। दोनों गानों के थीम में बहुत सिमिलैरिटी, पर एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग। किशोरदा की आवाज में दीवाना लेके आया है दिल का तराना, आडी मजरू। रियाज रेट्रो। मैं रिया, ट्विटर हैंडल मेरा @ मिस रिया मुखर्जी, MSRIYA MUKHERJEE, जहां पर थैंक यू RR फैमिली को 5000 स्ट्रांग बनाने के लिए मेरी नजर इस पे पहली बार डाली अनुज ने ऑन ट्विटर। एंड थैंक यू अनुज, आप तो तब से जुड़े हैं ट्विटर पे जब मेरे कुछ शायद 100-200 फॉलोअर्स थे, तब से लेके यहाँ तक की जर्नी में आप साथ रहे हैं। और एक और दोस्त थे जो बिल्कुल शुरुआती दिनों में जुड़े थे, वो भी पता नहीं कहाँ खो गए आजकल, सुरेश कृष्णमूर्ति। सुरेश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो बताइए भाई कहाँ खो गए आप। वैसे मैंने रिसेंटली ट्वीट किया था कि काम की मसरूफियत की वजह से मैं ट्विटर पर कम मिलूंगी कुछ दिन, और आप तो गलत समझ बैठे कि शायद मैं यहाँ भी नहीं मिलूंगी। हालांकि मैंने ट्वीट में स्पेसिफाई किया था कि रियाज रेट्रो का एक भी एपिसोड स्किप ना हो, उसकी पूरी कोशिश रहेगी, बस सोशल मीडिया से गायब हो रही हूँ। आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मन ही नहीं लगता। बस ट्विटर को छोड़ रही हूँ कुछ दिन, रेट्रो को नहीं। तो टैक्स के महीने में हम निकल पड़े हैं इमोशनल टैक्स का हिसाब लगाने। सच बोलने का टैक्स, झूठ बोलने का टैक्स, दिल तोड़ने का टैक्स, दिल हारने का टैक्स, दूसरों को इस्तेमाल करने का टैक्स, खुद बिछ जाने का टैक्स, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने का टैक्स, खुद से बिल्कुल ना प्यार करने का टैक्स, गुस्से और कड़वे शब्दों का टैक्स, चुप रहने और सहने का टैक्स। मतलब समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल टैक्स की ही तरह ये पे आउट्स भी इनएस्केपेबल होते हैं, चाहे आप जिंदगी इस तरीके से जियो या उस तरीके से। इसीलिए मैं इन्हें इमोशनल टैक्सेस कहती हूँ, क्योंकि जिंदगी में चाहे कोई भी चॉइस हो, रवैया कुछ भी हो, प्रायोरिटीज कैसे भी, इट सीम्स ये भरपाई तो करनी ही पड़ती है नो मैटर वॉट। पर हाँ, कुछ जज्बाती टैक्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम खुशी खुशी भरते हैं, जिनको देने में इनफैक्ट मजा आता है। थैंक गुडनेस फॉर दोज़।

0: मत हमसे खुद से हम।
1: बाघों को तो पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने, दुनिया मरती मौत से लेकिन मारा हमको प्यार ने। अपना वो हाल है बीच सफर में जैसे कोई लुट जाए। कवि नीरज की लिखी इन लाइंस की वजह से शर्मिली का ये गाना आज के एपिसोड में शामिल है। आवाज किशोरदा, संगीत एसडी बर्मन। और उससे पहले वो इमोशनल टैक्स जो पे करने में कोई एतराज ना हो, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लता जी, मनहर उदास, एसडी मजरू, अभिमान ऑफ कोर्स।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो।
1: मैं आपके साथ रिया, और इस विषय पर सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि हम सब कितना इमोशनल टैक्स भरते हैं और किस श्रेणी में भरते हैं, वो तो इसी बात पर निर्भर है ना कि हमारी इमोशनल कमाई क्या है और कहाँ से है। अगर हमें फुलफिलमेंट मिलती है सिर्फ काम से, तो टैक्स हम ज्यादती रिश्तों का भरेंगे। अगर हमारी कमाई हमारे अहंकार से है, तो टैक्स भरना पड़ेगा ह्यूमिलिटी का। अगर इनकम हमारा शान, शौकत, नाम, रुतबे से है, तो शायद टैक्स अदा करना पड़ेगा उन क्वाइट इंटीमेट मोमेंट्स का जो खो जाते हैं कहीं। आफ्टर ऑल, ये तो जानी हुई बात है कि आमदनी कैसी भी हो, कितनी भी हो, कर तो चुकानी पड़ती ही है, और छुपाने की लाख कोशिश कर लो, इमोशनल टैक्स एक वो टैक्स डिपार्टमेंट है जो रेड कर ही देगा। कभी सफर की तन्हाई में, तो कभी रात के अकेलेपन में, कभी भागता दौड़ता इंसान बीमारी से निढाल होकर रुकने पर मजबूर हो जाए तब, तो कभी हंसता खेलता पार्टी एनिमल दिल के कोने में खुद का सामना करे तब। मेरे ख्याल से इमोशनल टैक्स वो टैक्स है जो जिंदगी के खामोश लम्हों में हमें दबोच लेता है, जब हम शोरगुल के बीच हो, मसरूफ हो, तब नहीं, बट इन द पॉजेज इन बिटवीन। क्या इसीलिए हम ठहरने से, सन्नाटे से इतना घबराते हैं कि कहीं इस टैक्स का हिसाब ना करना पड़ जाए? फोन पर लगे रहते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, ठहाके लगाते हैं, अकेले होटल रूम में पहुंचकर भी सबसे पहले उस खाली कमरे में टीवी ऑन कर देते हैं। पर ये वो टैक्स है जो पकड़ ही लेता है आखिर, और अपनी शिकस्त में करने के बाद पूछता है, क्यों भाई, कितना कमाया, कहां गवाया, हिसाब लगाया?

0: साहिर साहब के बोल, लक्ष्मी प्यारे का संगीत, उस फिल्म के लिए जिसके लिए मानो लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी रिवर्ब मशीन लेकर कुएं के अंदर कूद गए थे रिकॉर्डिंग करने। पूरे साउंड ट्रैक में इतना ज्यादा रिवर्ब है, उफ। आवाज लता जी, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। वैसे उन सालों में आरडी भी पीछे नहीं थे, आपकी कसम साउंड ट्रैक में भी रिवर्ब की कोई कमी नहीं। उसी फिल्म से आपने सुना द पेथोस रिडन, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। किशोरदा की आवाज, बोल आनंद बख्शी, सच मच इमोशनल ट्रैक्स।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।
3: रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो।
0: तो कैसे, किस टाइप के होते हैं ये इमोशनल टैक्सेस? शायद झूठ बोलने का टैक्स ये हो कि धीरे धीरे वो दिन आएगा जब कोई भी पूरी तरह से हम पर भरोसा ना करे। लेकिन हमेशा सच बोलने का ये टैक्स होता है कि लोग हमें खास पसंद नहीं करते। फिर झल्ला कर पलट कर जवाब देना जब कोई बुरा करे या बुरा बोले, इसका टैक्स ये होगा कि सब हमसे दामन बचाकर चले डर के मारे। पर सबकी कही सुनी खरी खोटी झेलने का ये नतीजा है कि लोग हमको कालीन समझकर हमारे ऊपर से निकल जाएं। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो किसी के दुख दर्द में खास मौजूद नहीं होती। जेन्युइनली आई मीन शी इज नॉट वन ऑफ दोज जो ये सुनकर कि आपका कोई अपना अस्पताल में है ये कहेगी कि कुछ जरूरत हो तो बताना, वो ऐसा नहीं कहेगी। और कभी अगर आपने मदद मांग भी ली उससे तो वो क्लियरली बता देती है कि वो क्या कहां तक कर पाएगी और ज्यादातर मना ही कर देती है। वेट बिफोर यू जज हर, शी इज नॉट अ बैड पर्सन, रियली इज नॉट अ बैड पर्सन, पर उसके इमोशनल रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं दूसरों के लिए। और कमाल की बात बताऊं, जब जब उसे कोई परेशानी या तकलीफ हुई है उसने खुद अकेले ही संभाला है, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने उससे पूछा भी था एक बार, तू हमेशा क्राइसिस खत्म हो जाने के बाद बताती है, कभी पहले नहीं कि कोई कुछ मदद कर पाए। पता है उसने क्या कहा? वो मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है ना मैं दूसरों के लिए कितना करती हूँ, तो कोई और मेरे लिए क्यों करेगा। यू नो ऑल सेड एंड डन, आई मे नॉट अग्री विद हर वे ऑफ लाइफ बट आई डू लव द क्लैरिटी। मैं रिया और मैंने भी आप ही की तरह किस्म किस्म के इमोशनल टैक्सेस भरे तो हैं ओवर द इयर्स, और बात इतनी तो समझ में आ गई है कि ये एक टैक्स है जिससे कोई नहीं बच पाता। बस कम बेसी का हिसाब रखा जा सकता है और रखना जरूरी भी है, नहीं तो पता चला आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और टैक्स 2 रुपया, ये तो बिल्कुल ही घाटे का सौदा हो जाएगा। और ये सौदा करने के बाद अकल आए उसका तो कोई फायदा नहीं।

0: सुनाएं।
1: दिल को झंझोड़ देने वाले दो गीत सुनाए मैंने आपको, पर मुझे लगता नहीं इनसे आपको कोई शिकायत होगी। बेहतरीन गीत सुनने का टैक्स यही होता है, डीप पेन, बट इट्स अ पेन वी लव टू फील। फिल्म प्यासा से रफी साहब की आवाज, एसडी बर्मन का मिनिमलिस्टिक संगीत एंड सबलाइन साहिर के बोल, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, यानी कि जाओ सब कुछ ले जाओ टैक्स में, हमें परवाह नहीं। और उससे पहले तलत महमूद की आवाज, फिल्म का नाम एक साल, संगीत रवि जी, बोल प्रेम धवन, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। इमोशनल टैक्स भरने के बाद अगर अकल ठिकाने आई तो की फायदा पापा जी। अब देखो टैक्स आता भी तो अपने काम में ही है, हमारी अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है उससे, हमारा ही ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, इट्स नॉट सच अ बैड थिंग एक्चुअली। बस साथ में एक सीए की तरह एक ईए, इमोशन अकाउंटेंट हो तो बढ़िया, वो कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है या रोमांटिक पार्टनर या दोस्त या पेरेंट, जो हमारे इमोशनल अकाउंट्स को हेल्दी रखे और इतना कर सके कि टैक्स कम से कम भरना पड़े, बाकी तो बढ़िया ही है। चलो बहुत हो गई भारी भरकम बातें, टैक्स वर्ड से ही जहां डिप्रेशन हो जाता है वहां ये क्या छेड़ दिया मैंने 31 मार्च से पहले, वो भी इससे पहले कि अब आपसे मार पड़े, मैं रिया भाग जाती हूँ यहाँ से। जाते जाते वादा रहा कि इस लास्ट गाने से आपके माथे की शिकन को मिटाकर चेहरे पे मुस्कान ही छोड़ के जाऊंगी। आपके टैक्स फाइलिंग के नाम ये गाना अ ट्रू लेजेंड ऑफ ओल्ड हिंदी सिनेमा, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna-Ukai-Songarh section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Dr. Wagle said this while addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolences over the deaths in a road mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured would be given an amount of 50,000 rupees. 8 people, including 3 children, died after a car carrying devotees was swept away by a rain-swollen stream near Nalkheda. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad

0: Spirit. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात।
2: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं, सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: कौन था बोलो, कौन था, कौन था, कौन था बोलो, कौन था।

0: कल जब मैं कॉलेज से आ रहा था तब मैंने तुझको देखा।
1: क्या?
0: किसी और के बाइक पे बैठी थी, बाहों में उसे लपेटी थी, साथ उसके रेस्टोरेंट गई, उस पे तू प्यार लुटा रही थी, जिसके हाथों से होटल में तू पिज्जा बर्गर खा रही थी।
1: हाँ तो?
0: जो लड़का तुझे खिला रहा था बोल कौन था? कौन था? सोनू था?
1: नहीं।
0: मोनू था?
1: नहीं।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था? कौन था?
1: मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ भाई था।

0: प्यार नहीं है करती तू मुझसे प्यार नहीं है, खाके कसम तू बोल जरा क्या वो तेरा यार नहीं है।
1: कसम से नहीं है।
0: नहीं है?
1: नहीं।
0: शॉट के सेल्फी ले रही थी, मेरा गिफ्ट किया ही फोन था, आईफोन था, बोल कौन था? सोनू था।
1: कौन सोनू?
0: मोनू था।
1: मैंने जानती।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था, कौन था?
1: अरे मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ।
0: चल झूठी चल झूठी चल झूठी चल झूठी।
1: विश्वास नहीं है?

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: धन्यवाद। आज 2 मिनट लेट हो गया मैं, इतना 3 मिनट।
1: हाँ, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया,
2: बात करते हुए 2 मिनट लेट हो गया हमको भी।
1: अच्छा जी,
2: चलिए पता लग गया।
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया, मतलब बताइए। ऐसी हुई की एक नंबर में लग गया मेरा और भारत से बात हो गया।
1: एक नंबर में लगाते तो है लेकिन कॉल आपका,
2: ये शिकायत हम करने वाले थे लेकिन अभी आप ही बता दी।
1: पीछे चला जाता है वो कंप्यूटर में एडिट करने के लिए जब डालते हैं उनको।
2: लेकिन मैम हम आपको एक बार बता दें कि एक दिन मनोरमा मैम कोशिश करके बजाई थी एक नंबर में। हम आप बोले थे उस दिन भी कि मैम कोशिश कीजिएगा, इतना खुशी मिलता है, जितना खुशी मिलता है ना, आप एक बार श्रोता बनकर मतलब कॉल कीजिएगा तो पता चलेगा मिलता है जब एक नंबर में बजता है।
1: बहुत खुशी मिलता है, ये तो बात है। श्रोता बन के कॉल या मैसेज करें तो इसके लिए तो मुझे सोनू जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही हम आप लोगों के बीच जुड़ पाएंगे।
2: जी मैम, उनका तो रात में शो चलता है ना। एस एस शर्मा जो मतलब फेसबुक है रेडियो रंजन का, उसका ये शो का उसे नहीं लिखा है।
1: एस एस शर्मा इसका नहीं लिखा है?
2: नो, उसका लिखा है, हेलो माय चॉइस का नहीं लिखा है।
1: हाँ, हेलो माय चॉइस का नंबर नहीं लिखा है,
2: नंबर या कुछ भी नहीं लिखा है, उसे टाइमिंग कुछ भी नहीं लिखा है।
1: ठीक है, इसको देख के ध्यान से ठीक कर दिया जाएगा,
2: क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं तो जानते हैं कब का कौन शो है। हमको रेडियो सुनते हुए 6 साल हो गया,
1: बढ़िया,
2: और जुड़ते हुए यही 2-3 साल हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, ना इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम बोलते हैं जो इसे लगाव है
1: वो कहीं नहीं।
2: हाँ, और इसमें सुनने का मजा ही कुछ और है।
1: ये तो है,
2: नेट के द्वारा तो 1 मिनट में सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग मंगा करके।
1: जी, वो तो
2: रेडियो को सुनने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैम आज हमें एक प्यारा सा गाना सुनाइए और कोशिश कीजिएगा 1 नंबर बजे, और कोशिश कीजिएगा कि मेरा खुशी दुगुना हो जाए।
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार मेरा कॉल जो है ये कल बजेगा।
2: हाँ, वो तो हमको मालूम है, मनोरमा जी का कॉल बाकी है। जी मैम, तो कोशिश कीजिएगा फुल।
1: जी
2: नहीं तो फिर से शिकायत रहेगी सोमवार को आपसे।
1: जी बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि आपकी फर्स्ट कॉल ही बजे।
2: जी मैम, तो आज मुझे कहरा सा गाना जिगर मूवी सुनाइए।
1: ओके, गाने की बोल बता दीजिए।
2: जी, गाने का बोल है, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया।
1: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सुनवाने वाली तो थी लेकिन अभी है नहीं, तो सभी दोस्तों को सुनाएंगे और आपको सभी आरजे को।
1: चलिए बढ़िया,
2: और कोई भी सॉन्ग है इसमें दिल को मतलब दिल पे लेके नहीं सुनते हैं, बस एंजॉय के लिए सुनते हैं।
1: जी, आपके द्वारा गाना फरमाइश किया जो रहता है वो काफी अच्छा आता है।
2: हमको बहुत ज्यादा मतलब मूवी से ज्यादा गाना से लगाव है, और रेडियो रिंगटोन का सभी शो मतलब सुनते हैं।
1: बढ़िया,
2: इतना लगाव है, उतना किसी को इंसान तो नहीं होगा उतना तो रेडियो से लगाव है। चलिए कोशिश कीजिएगा मैम, इसके लिए एडवांस धन्यवाद।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
2: ओके मैम, बाय बाय
1: बाय।

0: नमस्कार कल्पना रानी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी हम तो रानी पर जैसे लगावत लगावत जाके अब समझी की सारे बड़े सारे के सारे जगह
1: हम कौन
0: है। हाँ अब बात वहाँ ही से छोड़े थे।

0: तो लास्ट कॉल चला था जी।
1: हाँ हाँ लास्ट कॉल चला था।
0: और क्या हाल चल रहा
1: जी? मैंने
0: खाना पीना बढ़िया से कॉफी हाल नहीं बने।
1: हाँ खाना पीना तो खा पी के आवे एकदम।
0: हेदराबाद का प्रोग्राम पड़े थे वही तो प्रोग्राम ऐसे लेट हो जाते थी ना।
1: हाँ ऐसे लेट हो जाता।
0: मनोरमा जी नीचे लिखा है
1: वहाँ के बानी
0: तो घर परिवार को चलिए वो गाना बारे मेरा प्यार वो है मर के भी तुमको बाहों से जुदा हो न देंगे
1: जी। और गाना
0: सबसे पहले तो अपने के मनोरमा जी के सोनू भाई बारन सजीर भाई बरन कमरान भाई बरन जाटा भाई बरन सुमित राजन कुशवाहा जी बनी
1: चलिए फिर ठीक बात। अब और गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक बात है तो नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार।
1: रेडियो रिमझिम में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम का पूछिए ना कोई नहीं।
1: दिलीप
0: जी दिलीप राम
1: जी
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, इतना गुजारिश है तुमसे, सोने से पहले मुझे याद रखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा हूँ। बोला की आज लगाऊँ कॉल, अजीम रिकॉर्डिंग होगा, जल्दी लग गया।
3: जी जी,
2: हो गया।
3: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं।
2: हाँ, मैं नाश्ता तो कर जाना ही पड़ेगा। मेरा भी नाश्ता तो हो गया है, छत पे आए हैं, धूप है, हल्का हल्का हवा चल रहा है। अच्छा,
3: हाँ वैसे ही मौसम है।
2: हाँ, उधर बारिश वरिश तो नहीं हो रहा था, बोला था घर से फोन किया था, बोला बारिश नहीं हो रहा था। देखो समझिए, अक्टूबर का कुछ गर्मी पड़ेगा।
3: अभी तो शीत जैसा मौसम बन रहा है, शीत वगैरह सुबह में होता है।
2: जी जी जी, समझिए कि नवंबर से तो ठंडा चालू हो जाता है, आधा अक्टूबर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। अब तो आप लोग त्योहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ।
3: जी जी, अब तो दुर्गा पूजा होगा, उसके बाद दिवाली, छठ सब ये लगातार आने ही वाले हैं।
2: जी जी, एकदम लगातार है त्योहार। दिवाली में तो बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाली में सामान खरीदने जाए, छुट्टी मिलता है।
3: ये तो है,
2: धनतेरस में सबसे बड़ी

0: और इंसान अगर काम करने लगा तो बस टाइम का बहुत मायने रखता है। बड़ी बात है कि टाइम मिला तो कहीं कोई जाएगा कुछ करेगा, और ऐसे और कोई काम नहीं करो टाइम में टाइम है तो कोई बात ही नहीं है। और सब सुनाइए, बढ़िया है
1: जी? और सब बढ़िया है,
0: घर परिवार
1: जी? सब घर परिवार में भी सही है।
0: तो ये बताइए, ये जो चॉइस जो चल रहा है स्कूल, उसमें कॉल वाला सिस्टम नहीं रखे हैं क्या? हटा दिए लोग क्या?
1: नहीं है, कॉल तो कॉल आ रहा था।
0: मैंने कॉल किया था तो रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत कॉल किया, हमको लगा सर हट गया था कॉल वाला,
1: तो
0: ये हो रहा था
1: नहीं।
0: ये अंताक्षरी शुरू करिए ना, तो आप आइए नहीं हेलो, दो आइए हेलो, आपका सोचना है संडे से।
1: इसके लिए तो हम लोग नहीं कर सकते, वो सर
0: बोलना पड़ेगा। अच्छा, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है ना?
1: हाँ, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है 2 बजे से 5 बजे तक।
0: हाँ हाँ, मैं वही ना सोचा, बताइए कितना लंबा देखिए अपने काम, 12 बजे से लेकर ये टाइम बढ़ गया ना,
1: मतलब
0: 3 तक बताइए से 4 का।
1: हाँ, इसका टाइमिंग है 12 से 4।
0: 4 हो गया ना। बताइए इतना लंबा डिप्टी न्यूज चलता है, तो आप लोग खाना वाना खाते होंगे?
1: हाँ।
0: तो अच्छा लगा आपसे बात करके, गाना हमको सुना दीजिए। गाना नहीं, आज कवाली सुना।
1: कवाली बता दीजिए कौन सा?
0: अपने ही रंग में रंग में शादी कवाली है।
1: जी जी, और कवाली सुनवाना भी है?
0: जी जी जी, सबसे पहले आपको और आयशा अब्दुल सिद्दीकी, सदीना सब्बा सिद्दीकी, अख्तरी अहमद अली, दुर्गा परमी, अलीमा साजिया, आयशा अफरी, भास्कर वर्जी, ईश्वर सोनी, मुकेश, उमर शंकर, दिवेंदर, दिलीप राम, शाहजहां, रुखसार, सजदा अंसारी, रोशनी कुमारी, निशा सुखनवा, निशा भारती, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा, फिर मंडे को मिलेंगे।
1: नमस्कार। नमस्कार, रेडियो रिमिशन में कॉल किए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बोलिए क्या हुआ
0: जी? अभी तो बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
1: बोल रही हूँ, गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
0: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है
1: आपको और रेडियो रंजन सुनने वाली श्रोता को? मैम आप मनोरमा मैम बोल रही हैं?
0: नहीं,
1: तो सोमवार को रिकॉर्डिंग मनोरमा मैम की थी? नहीं,
0: इसी सोमवार को।
1: हाँ, इसी पिछले बार सोमवार को।
0: हाँ, मनोरमा जी रिकॉर्ड की थी।
1: तो मेरी भतीजी कॉल की थी और छोटी वाली तो बोल रही थी कि मेरा गाना मैम नहीं बजाई है, तो पढ़ने चली गई है। बोल रही थी कि कमेंट कर दीजिएगा बुआ।
0: अच्छा जी, सोमवार को जो गाना उनका रिकॉर्ड की थी कॉल, वो वैसे जो बाकी कॉल है वो आज बजेगा, तो हो सकता है उसी में हो।
1: वही बोल रही थी, हम लोग उससे रिगा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा गाना मैम नहीं बजाई है, तो रो रही थी। तो बोल रही थी कि हम गोपालगंज जाएंगे ना तो मैम को मारेंगे, दाऊंगा तुम चिंती हो। बोल रही थी
0: नहीं, वो कॉल है उसमें बच जाएगा, सोमवार का जो कॉल है कुछ इनके पास बचा हुआ है।
1: ठीक है, खाना खा लिए हैं?
0: हाँ, हम तो खाना ही खा लिए हैं।
1: ठीक है, बजा दीजिएगा गाना।
0: बिल्कुल, तो गाना सही करते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4। हाँ जी,
7: बालवीर सुंदर को।
6: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
7: ठीक है, आप बताइए।
6: जी हम सब तो ठीक है।
7: कल भोजपुरी लगाई वाला
6: दूसरा बता दीजिए।
7: बता दिया पवन सिंह की आवाज में।
6: और गाने की बोल
7: अपना पसंद से बजा दिया पवन सिंह की आवाज में।
6: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
7: और
6: प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसा बात।
0: ठीक बनी बता
1: जी, सबका हाल चल रहा।
0: ठीक बात सुनाइए।
1: हमें भी ठीक बात।
0: रिकॉर्ड लेट चल बोले कर
1: ना, तो एकदम टाइमली चालू कहीं है।
0: अच्छा, तो हम जब से लगा तो लागत का है ना जी।
1: लागत ऐसे नहीं है कि कॉल एकदम लगातार आज बिल्कुल आ रहा हुआ है, अभी तक टाइम से ऊपर जाता हुए।
0: हाँ, हम कहने कहीं लेट से चालू हो जाए, आप चढ़ाई कोई लागत ही ना तो लाग गए।
1: अबे बंद करे यात्रा नहीं है रिकॉर्डिंग, चले भाग्य भरोसे उस वेला
0: लिखर लग मैंने बात हो
1: जाए
0: ना। जल्दी से उठा ना मैडम।
1: ना जल्दी से बता दी कौन सा गाना प्ले करे।
0: गाना है बजा दी, प्यार के लिए चप्पल कम नहीं है।
1: गाना क्योंकि सुनवाऊ के बाद
0: और अवरा सुने सबके सुनी जितना ऑलरेडी सुनता।
1: चलिए और गाना प्ले कर, सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM। जी क्या हाल चाल है आपका?
6: बहुत बढ़िया मैम, वो गाना चाहिए मैं, मेरा महबूब आया है, बाहर फूल बरसाओ।
5: हाँ हाँ ओके, तो आपका ले सकते हैं।

0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: सड़क पिक्चर का।
1: हेलो
0: जी सर,
1: कौन सा गाना सुनना है उसमें का? सड़क मूवी का बता दे।
0: जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
1: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
0: सबसे पहले आप और जिन्हें सुनने वाले हैं।
1: ओके जी, तो आपका ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो।
0: ठीक, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be watched the head to get it.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। हेलो,
6: हाँ क्रिसमस बोलता हूँ।
5: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है बाबू।
5: अच्छा, ठीक बना?
6: हाँ, कह रहे हैं घर तो ठीक बनो।
5: हाँ हाँ, हमने के सबके ठीक बानी
6: ठीक बानी ठीक बानी।
5: बता दी कौन सा
6: कव्वाली सुना?
5: कव्वाली कौन सा कव्वाली? शादी
6: निकाह फिल्म सुना दी।
5: अच्छा, निकाह मूवी के गाना क्यों के सुना हो के बाद?
6: सब सुनते
5: जी जी, तो चले फिर ठीक बात और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
6: खुश रहो।

0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। बिल्कुल बता दीजिए कौन सा सॉन्ग। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सभी दोस्तों को।
1: वैसे आपका नाम?
0: राजू कुमार मधु सर।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते,
5: विकास कुमार बोलता हूँ हिमकापुर से।
6: क्या हाल चल रहा?
5: बढ़िया।
6: क्या होता अभी?
5: आप कैसन बनी मैडम?
6: हम तो ठीक बनी, रहुआ बताए रहुआ कैसन बनी?
5: हमने को बढ़िया बनी सर।
6: तब भोजपुरी बोले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
5: नहीं दिक्कत नहीं के, हमनी के आदत हटे जा हिंदी बोले के, घर पर भी जाए ले तो कबू काल हिंदी बोल दीजिए। तो घर के गाँव का लड़को फेको हुआ सन तो कहे सन की चले तू हिंदी बोल रहा है, दिल्ली रहता है तो।
6: तब नाश्ता पानी हो गई?
5: हाँ नाश्ता पानी हो गया मैडम।
6: हाथ कैसे बा? हाथ में चोट लगा रहे ना?
5: हाँ सही हो मैडम।
6: चली बढ़िया,
5: विश्वकर्मा जी के कृपा से सही हो गई बढ़िया। और बताइए मैडम।
6: और सब तो ठीक बा?
5: और वो मोनार्मा जी
6: ठीक बानी?
5: अच्छा चलिए बढ़िया है, काम बटे।
6: तो बता दे आज कौन सा गाना सुने?
5: आज गाना सुनेंगे वो निरहुआ का नहीं है, सिनुरमा कैसे जाई बने, वो ऐसे कुछ गाना है वो, लेकिन याद नहीं है ना मैडम। वो जो बम्बई वाली एक नहीं रहती है, वो घर जाती है, वो उसके लिए उसके ट्रैक्टर पर बैठा करके निरहुआ वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा करके ले जाता है उसको छोड़ने के लिए।
6: देखना तो पड़ेगा, याद मुझे भी नहीं आ रहा है।
5: याद नहीं आ रहा है?
6: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: ये आपको सुनवाना है और जितना रेडियो रेमजिम सुनने वाले हैं सबको, ये भोजपुरी वाले तो आप लोग को भी सुनवाएंगे और जितना रेडियो रेमजिम सुनने वाले हैं सबको और सोनी मैडम को भी सुनवाएंगे और सब मैडम। आपके घर में मम्मी पापा आपके सब सही है ना?
6: जी मेरे घर में तो सब सही है।
5: अच्छा सब कोई है अभी
6: मेरे घर में?
5: दादी उदी दादा उदा सब है?
6: हाँ सब कोई है।
5: चलिए बढ़िया है, सब कोई सही है ना?
6: हाँ सब कोई सही है।
5: चलिए सही है, सही होना चाहिए। भगवान करे बढ़िया से रहे, एकदम बढ़िया तरक्की करे, एकदम आप लोग का प्रोग्राम चलते रहे ऐसे ही, हम लोग बात भी करते रहे, इससे अच्छा और क्या है।
6: हाँ ये बात सही है।
5: दुनिया से क्या ले जाना है मैडम
6: जी?
5: बस थोड़ी सी बात हो जाता है, एंजॉय हो जाता है, गाना वाना भी फरमाइश कर लेते हैं। तो मेरे घर में जानते रेडियो का जगह पर वो होम थिएटर है, बड़ी वाली 6-7 हजार का है वो होम थिएटर।
6: बढ़िया।
5: जब मैं घर गया था रक्षाबंधन में तो मेरे पापा जी नहीं रहते थे, तो हम जब बजाते थे जब पापा जी घर में आ जाते थे तो नहीं बजाते थे।
6: पापा जी से डर लगता है?
5: वो गुस्सा कर लेते थे, बोलते थे कि बहुत पिटाई होगा ये सब बजाओगे तो हम बोले कि चलिए ठीक है नहीं बजाएंगे। अब बोलते हैं तो नहीं बजाएंगे। जब कहीं चले जाते थे तो थोड़ा बेवफाई सॉन्ग वोंग लगा करके सुनते थे।
6: अच्छा
5: चलिए बढ़िया है। तो कल विश्वकर्मा पूजा था जानते हैं?
6: हाँ विश्वकर्मा पूजा था, सबके यहाँ पूजा हुआ।
5: कल पूजा हो जाए, कल पूजा हो जाए करवाए, मंदिर है अपने कंपनी में, केला वोला से वो लाए थे, लड्डू वड्डू वही पूजा पाठ सुबह में करवाए थे, पूजा वूजा करवा करके उसके बाद फिर अपने ड्यूटी में लग गए। घर में भी मेरा आटा वाला मोटर वाली मशीन है, आटा वाटा पीसते हैं पापा जी
6: है।
5: और वो पानी चलाने वाला मशीन भी है, सब बड़ी बाड़ी भी है। हाँ सब ये सब आप लोग का कृपा से भगवान भगवान का कृपा से।
6: जी सब भगवान की कृपा है।
5: तमाम आकर के हम भी कर दिया है कुछ।
6: ये सब होना चाहिए, ये सामान बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है। अपना काम अपना भी काम हो जाता है खुद।
5: हाँ, दो पैसा आ भी जाएगा। 800-900 रुपया डेली का आटा पीस करके आ जाता है।
6: तब तो अच्छा पापा जी खासा चल रहा है।
5: हाँ, पापा जी पीते हैं डेली का डेली, कभी कभी 700 कभी 800 इससे करके आ जाता है।
6: बढ़िया है
5: ये, और सब बढ़िया है ना मैडम?
6: जी जी और सब बढ़िया है
5: जी।
6: तो फिर चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: जी नमस्ते मैम।
6: नमस्ते।

0: है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, नाम बता
1: दीजिए। और भाषी जी बोल रहे हैं, वहाँ मौसम कैसा है आपका?
0: मेरे यहाँ का तो मौसम हल्का हल्का, बस बादल छाया हुआ है और हल्का धूप है।
1: अच्छा, हम तो पहला बार कॉल लगा है मेरा, आपका नया है हम।
0: जी, आपका नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम प्राणनाथ दुबे, तोरा से बोल रहे हैं, हमारा सानी गांव है।
0: तो क्या हाल चाल?
1: बस हम आपका रेगुलर सुनने वाला है, रेगुलर सुनते हैं आपका। एक्चुअली में हम रहते हैं कलकत्ता में, हम कलकत्ता में ही आपको प्रोग्राम सुनते हैं दिन रात। जब मौका मिलता है तब आपका हम रेडियो इंजिन सुनते हैं।
0: जी, अच्छा तो बढ़िया है।
1: और यहाँ मौसम है बारिश मौसम है, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो बता।
0: आपके वहाँ बारिश हो रही है अभी?
1: हाँ, यहाँ पर कलकत्ता में भी बारिश हो रही है।
0: अभी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अभी हमको वही सुना दीजिए, इसी बरसा पानी बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो उस हिसाब से गाना। और हमारे जितने श्रोता है उनको हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे। और मेरे घर के मेरे बड़े लोग है, रिश्ता है, मैं है, मेरी मम्मी है, सबको सुनाना चाहेंगे, मेरी बहन लोग है। उनको
0: आपको गाना देखना है।
1: ओके मैडम, ओके, थैंक यू।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसे मिचा?
5: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हमारे भी ठीक है। खाना खा लिए?
5: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए।
6: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
5: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
6: हाँ, जुमा है।
5: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
6: गाना अपना पसंद से सुनना है।
5: अपने से कोई भी?
6: हिंदी गाना।
5: हिंदी गाना आज आप नहीं बताइएगा?
6: अपना पसंद से सुना दीजिए।
5: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
6: हाँ, मेरा भाई बता रहा है
5: तो बता दीजिए।
7: दिल जले का गाना।
5: और दिल जले का कौन सा गाना?
7: शाम है दूंगा।
5: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
7: आपको और बहन हेलो सभी को।
5: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
7: ठीक है।
5: वैसे आपका नाम?
7: अरमान आलम।
5: जी, तो
7: कब तक सुनाइएगा मैम?
5: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
7: ठीक।
5: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते।
1: कैसी हैं मैम?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है?
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: मनीषा कुमारी प्रयाग सुंदर से।
0: अच्छा जी, हाँ क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: अभी तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: सुनती है, नहीं बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की बोझा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी
1: मैम गाना मालूम चल गया ना?
0: है। हाँ, चुप हो जा, हुआ तो हुआ।
1: जी मैम,
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आधा आप बता दीजिए, हम
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: एक लाइन में आधा आधा गा दे रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा लिया ना?
0: हम खा के आते हैं।
1: चलिए तभी है, आप
0: ओके, तो गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनवाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दोस्तों को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 9.4 FM में।
5: नमस्कार दीदी।
6: नमस्कार।
5: दिन भी मेरा गला रिकॉर्ड हुआ है, नहीं सुनाई गए दीदी।
6: जी जी, आपका एक कॉल बचा हुआ है, उसको सुना दिया जाएगा।
5: जी जी जी, तो सुना दीजिएगा। आज दिल वाले फिल्म का जीता था, जिसके लिए उसके लिए मरता था।
6: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
5: हाँ, हिलेश कुमार, रितिराज कुमार, पंकज कुमार, रेणु देवी, सपना कुमारी।
6: ओके, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो मैडम,
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मन्ना बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो ठीक है, पर मेरा गाना आप ही नहीं बजा है।
0: आपका गाना बजा है?
1: बजा है
0: हाँ, कल ही तो बजा।
1: कल बजा है मेरा गाना? नहीं बजा है।
0: कल भी बजा है?
1: परसों दिन भी सुने, कल भी सुने, आज भी,
0: कल ही,
1: आज भी सुन रहे थे, तो उसमें कोई गाना ही नहीं आपको मिला ही।
0: आपका कॉल मैं कल ही बना के बजा दी हूँ।
1: बजा दिए हैं? तो ठीक है, तो बजा दिए तो हो सकता है कि हमको ख्याल में बिसर गए हो इधर उधर।
0: जी जी, मैं
1: यही होगा,
0: बजाएगी हूँ और मेरे रिकॉर्ड में भी है।
1: चलिए, आप तो अब आ रहे हैं तो आपका बात को हमको आना ही पड़ेगा। या हमसे कोई मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हो दूसरी जगह, या रेडियो ऑफ हो गया हो, या जो भी हो, प्रॉब्लम कोई आया हो, बात बच गया तो मैडम तो कोई बात ही नहीं। आज भी कोई गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तो बता दीजिए आज कौन सा सुनना है? आज कौन सा?
1: संडे का मौसम आ रहा है, ठंडा वाला ठंडे का मौसम वाला कौन सा गाना रहेगा?
0: ठंडी के मौसम वाला गाना?
1: ये तो आप गाना बहुत बजाती हैं।
0: कोशिश तो करते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने को बजाओ।
1: हाँ, ठंडा ठंडा का मौसम आ रहा है तो उसमें कौन गाना बजना चाहिए बताइए, हम सोच के बताते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। महेंद्र कपूर का गाना है।
0: एक और है शायद गाना, मीठी मीठी सर्दी है, ऐसे करके कुछ गाना है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है शायद।
1: बताइए ना, वही तो, ये तो गाना तो बहुत बार सुने आपका संचार। वही गाना बजाइए मैडम, आपका चॉइस का मतलब ठंडे वाला तो हो तो अच्छा रहेगा ना। अब देख रहा है कि बहुत शीत गिर रहा है सुबह में,
0: मीठी मीठी सर्दी आ रही है और ये गाना भी वही सेम।
1: हाँ बजाइए मैडम, आप ही का चॉइस रहेगा तो उसी गानों को आप बजा दीजिए, हम भी उसी में खुश हैं। हम तो वो तो हमको गाना नहीं मिल रहा था तो वो हमको याद आ गया महेंद्र कपूर का, वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
0: आपको ये आपको कल और परसों ये दोनों के भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज मनोरमा जी का जो कॉल बचा हुआ है वो बजेगा।
1: हाँ जी, आप बोल दिए तो हमको संतोष हो गया, और बचा हुआ कॉल में वो भी सुनेंगे हम, मेरा गाना वो आया है या नहीं आया है।
0: बिल्कुल सुन लीजिएगा।
1: आज सुनेंगे, आज तो वो दिल थाम कर सुनेंगे कि मनोरमा जी बजाई है या ना बजाई। सबूत तो खड़ा हो जाएगा ना, तो जब भी मनोरमा जी से बात होगा तो उनको हम बोलेंगे।
0: ओके जी,
1: लेकिन आप भी ख्याल रखती हैं, हर कंज्यूमर का बात को ख्याल रखती हैं भाभी जी।
0: नहीं बजा है तो कोशिश तो करनी ही है, बजानी ही है।
1: हाँ लेकिन मैं देख रहे हैं ना, एक आदमी पूछ रहा था आपसे कि आप हमको पहचानती हैं, तो आप बताए कि हाँ हम पहचान रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं
0: जी,
1: है ना। तो हाँ, तो इससे हमको पता ये चला कि आप हर कंज्यूमर जो भी कॉल करता है उसको आप पहचानती है कि फलाने जगह का है, फलाने जगह रहता है ना, तो ये आवाज से आप पहचानती हूँ, इतना तो सही है ना कि आप पहचान जाती हैं। हम कहाँ कराने वाले हैं मैडम?
0: मुजफ्फरपुरा से।
1: अरे वाह, याद कर लिए आप। चलिए मैडम, तो अच्छी बात है, आप बताइए वो गाना।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ओके, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल यहाँ,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।